नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य विनोबा भावे का कथन है, ज्ञानी वो है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 326। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला विविध भारती के खजाने से। इसके अंतर्गत गायक हफीज अहमद खान से बातचीत सुनिएगा प्रस्तुति छाया गांगुली की।

सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से आप सुनाएंगे त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर दीपा माहेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक और सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता महमूद पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा सुनिएगा। इसके अंतर्गत PCOD और IVF इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत सुनवाएंगे, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से रंग तरंग यादों की महफिल सुनेंगे दिन में 12:05 से सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आपको सुनाएंगे दोपहर 1 बजे से। दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी, सदाबहार नगमे,

शाम 6:30 से झरोखा, शाम 6:35 से सुनेगा संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे से। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनेगा पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत झलकी सुनिएगा प्रश्न तो यही है, लेखन वृंदा मंजीत का, निर्देशन अजीमुद्दीन का। चित्रलोक रात 8:15 से आपके लिए सुनवाएंगे रात 9 बजे से।

सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात, रात 10:30 से सुनिएगा, और रंग तरंग रात 11 बजे से। आपको याद दिला दें, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर, जिसे आप सुन सकते हैं 9:30 से और 9:30 से। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 326।

रावण के मुख से सीता हरण तथा युद्ध का वृत्तांत सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत दुखी हो गया। वह रावण को धिक्कारता है जो जगजननी का अपहरण करके अब अपना कल्याण चाहता है। कहता है, अब भी यदि अभिमान त्याग कर वह श्री राम की शरण जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नारद मुनि से मिला ज्ञान वह रावण को दे देता, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अतः वह भाई से गले मिलकर युद्ध में जाने को तैयार हो जाता है, जहां उसे समस्त पापों का हरण करने वाले कमल नयन श्री राम के दर्शन होंगे। असंख्य घड़े मदिरापान और भैंसों का भोजन करके वज्र गर्जना करता कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ पहुंचा। वहां विभीषण उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपने अपमान और निष्कासन की कथा कह सुनाई। कुंभकर्ण ने छोटे भाई विभीषण का साधुवाद किया, फिर बोला, रावण पर काल सवार है, अब भला वह सदुपदेश क्या सुनेगा। धन्य है तू जो अपने सत्कर्म से राक्षस कुल का भूषण हो गया, किंतु अब मैं भी काल के वश में हूं। मुझे अब अपना पराया कुछ नहीं दिख रहा, अतः तू प्रभु के पास वापस लौट जा।

0: संगीत सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, विविध भारती के खजाने से आज हम लाए हैं सहसवान घराने के गायक हाफिज अहमद खान से राम सिंह पवार की बातचीत।
2: खान साहब नमस्कार।
3: नमस्कार पवार साहब।
2: खान साहब आज आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हो रही है और
3: मुझे भी ऐसे ही मसरत हो रही है।
2: एक संगीत चर्चा हम लोग करेंगे।
3: जरूर
2: खान साहब, जैसा कि ज्ञात है जिला बदायूं यूपी के सहसवान कस्बे के नाम से इस घराने का नाम सहसवान घराना पड़ा।
3: जी हाँ।
2: तो इस घराने को सहसवान रामपुर घराना भी कहते हैं।
3: जी हाँ।
2: इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे।
3: जी हाँ। ऐसा है कि इस कस्बे में यानी कि सहसवान में
2: जी
3: बहुत अच्छे अच्छे गायक हुए हैं और इसी वजह से इसका नाम सहसवान घराना है, लेकिन चूंकि ये सारे कलाकार रामपुर दरबार में थे तो इस वास्ते इसका नाम सहसवान रामपुर घराना पड़ गया। क्योंकि जहां तक आपको तो मालूम है कि राजा और नवाब ये जितने भी गुजरे हैं ज्यादातर उन्होंने कलाकारों की बड़ी सरपरस्ती की है
2: जी।
3: और उनके आश्रय में रहकर हमारे कलाकारों ने यानी बहुत ही तरक्की जो है वो पाई है। तो इस लिहाज से ये सहसवान रामपुर घराना जो है ये कहलाता है
2: जी। खास साहब, जैसा कि अनुमान या ख्याल है कि प्रारंभिक दिनों में इस घराने में ध्रुपद धमार गाया जाता था
3: जी,
2: और शायद 17वीं-18वीं शताब्दी में ख्याल गायन की शुरुआत हुई।
3: जी हाँ, 17वीं शताब्दी में। और जहां तक के सहसवान घराने का ताल्लुक है, इसमें आला से आला ध्रुपद धमार के गायक भी पैदा हुए हैं और बीनकार भी पैदा हुए हैं। यानी ये सोचिए कि हमारे खानदान के मतलब जो स्तंभ थे या इस घराने के स्तंभ थे वो थे उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब और उनके नाना थे साहिबुद्दौला
2: जी
3: और कुतुबुद्दौला साहब। बहुत ऊंचे कलाकार थे और दोनों ही सितार में दक्ष थे और उन्होंने इस कला की बड़ी खिदमत की और नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में काफी अरसे रहे और फिर वापस रामपुर आ गए।
2: सितार वादन के साथ साथ बीन वादन भी काफी
3: जी
2: प्रचलित हुआ है।
3: बीन वादन भी
2: जी,
3: क्योंकि उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के
2: जी
3: जो दो भाई थे, दो छोटे भाई उस्ताद मोहम्मद हुसैन खान साहब और उस्ताद अली हुसैन खान साहब, अपने जमाने के उच्च कोटि के यानी वीणा वादक थे।
2: वीणा वादक थे। तो खास जैसे तो ये ध्रुपद धमार से शुरुआत हुई
3: जी
2: और ख्याल गायकी के क्षेत्र में भी बहुत महान कलाकार इस घराने में हुए हैं
3: जी।
2: तो रबाब सुरसिंगार भी काफी वादियों का भी
3: जी। ऐसा है कि जहां तक रामपुर का बुनियादी जो घराना है उसमें सुरसिंगार और रबाब भी काफी मशहूर हुआ और उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब जो थे रामपुर के, वो बहुत बड़े रबाब वादक थे
2: जी।
3: जी, तो इस तरह से इन साजों पर भी उनको बड़ा उबूर हासिल था।
2: तो वादन का गायन पर प्रभाव पड़ा अथवा गायन का भी वादन के साथ कुछ संबंध रहा है, इस बारे में
3: देखिए। ऐसा है कि गायन और वादन
2: जी
3: इन दोनों का चोली और दामन का साथ है, लेकिन असली बात तो ये है कि ये जो खुदा ने इंसान को एक साज दिया है जिसको हम गले का साज कहते हैं, तो समझिए कि गाना पहले आया और उसके बाद में वाद्यों का आविष्कार बाद में हुआ और इस तरह से गाने की छाया साजों पर पड़ती रही। लेकिन एक ऐसी मंजिल भी आई कि वाद्यों की छाया जो थी वो गायन पर पड़ने लगी।
2: पूछना चाहता
3: हूं, अभी जो आपने एक हवाला दिया है ना बीन का
2: जी,
3: तो हमारे घराने में चूंकि बीनकार भी हुए हैं तो बीन के बहुत ही खूबसूरत अंग जो हैं वो हमारे यहाँ की गायकी में सम्मिलित हैं।
2: तो बीन के जो अंग की जो खूबसूरती है
3: जी हाँ,
2: मेरे ख्याल आपका मतलब मींड से
3: मींड है। मींड तो समझिए उसकी रूह है और मींड एक ऐसी चीज है कि जैसे हमारे ज्योमेट्री में होता है ना रेखा गणित में स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, तो अब जैसे हम सुर दो कहेंगे सा गमा पा गमा गरे सा, ये अलग अलग नोट्स हैं या स्वर हैं, लेकिन अगर इनको हम मींड से कहेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत लहर आपके सामने उठेगी और उसका आप जैसे कि आवाज का चित्र बना सकते हैं।
2: अच्छा।
3: रे ना रे

0: ख्याल गायकी में बीन का जो ये अंग है यानी मींड
1: जी
0: हमारे यहाँ की गायकी में साफ झलकता है।
1: जी हाँ, तो इससे गायन के सौंदर्य में वृद्धि हुई है।
0: जी हाँ,
1: ऐसा है,
0: यानी ऐसा यानी मनहरण लगता है सुनने को, यानी जो हमारे यहाँ एक एस्थेटिक्स है,
1: जी
0: सौंदर्य,
1: जी
0: जिसको हम उर्दू में जमालियाती पहलू कहते हैं,
1: जी
0: तो एक तो इसका असर जो है, इस मीन का असर आपका दिल जो है वो मुतासिर होगा, लेकिन और जो सरगम वगैरह का सारी चीजें जो है
1: जी
0: उससे वो आपका दिमाग जो है वो प्रभावित होगा या उससे वो उसका रसास्वादन करेगा।
1: खास साहब, इस गायन शैली की और भी तो कई विशेषताएं हैं।
0: जी हाँ,
1: जैसे गमक बहलावा।
0: जी हाँ, बहलावा भी खास है क्योंकि विलंबित और तान के दरमियान
1: जी
0: एक तरह से ये एक पुल समझिए, सेतु समझिए।
1: अच्छा,
0: और वो ऐसा है कि बहलावा का मतलब ये है कि बहलाना, जैसे बच्चों को बहलाया जाता है
1: जी,
0: तो सुरों को बहलाया जाता है, और इस तरह से बहलावा अगर आप सुन लें तो आप तैयार हो जाइए कि थोड़ी देर के बाद में तानों का सिलसिला जो है वो शुरू
1: शुरू
0: होगा।
1: होने वाला है।
0: अच्छा, आपका

0: इसमें खास इस बहलावे में आपने देखा होगा कि जिस वक्त एक सुर से दूसरे सुर पे हम जाते हैं तो एक चीज का इस्तेमाल होता है जिसको हम समझिए हिक्का कहते हैं।
1: जी
0: हिक्का यानी सॉफ्ट
1: अच्छा
0: जर्क, ये हिक्का है।
1: जी
0: तो इस तरह से मींड, बहलावा,
1: वाह
0: हिक्का।
1: जी
0: और इसके अलावा इस घराने की एक विशेषता ये भी है, क्योंकि इस घराने में टप्पा भी बहुत ही खूबसूरती से गाया गया है।
1: अच्छा
0: उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब ने बहुत
1: जी
0: अच्छा टप्पा गाया, मुश्ताक हुसैन खान साहब ने,
1: जी
0: उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब ने,
1: जी
0: और आज के युग में जो हमारे यानी घराने के सबसे मशहूर और यानी उम्र रसीदा कलाकार हैं
1: जी
0: उस्ताद निसार हुसैन खान साहब,
1: हाँ
0: तो उसमें खास तौर से मतलब उनकी गायकी में भी टप्पा

0: अब ये आपने देखा टप्पांग हो गया। खान साहब, अभी आपने उस्ताद निसार हुसैन खान साहब का नाम लिया, उनका भी गायन के साथ साथ तराना गायन में बहुत
1: जी हाँ,
0: बड़ा
1: मैं तो ये कहूंगा कि योगदान रहा है।
0: जी हाँ, कि सही तराना गायकी के वो एकमात्र कलाकार
1: प्रतिनिधि
0: हैं। जी हाँ, प्रतिनिधि हैं, क्योंकि उसके जो कुछ बोल हैं दृढ़तम, तो वो सफाई से निकलना चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो तराने का मजा नहीं आएगा। तोम दोम दाना, तो ये एक तराने की एक मुख्तसर से हम मैंने आपके सामने पेश किया। तो ये भी एक मुख्य अंग जो है। एक मैं और बताना चाहता था, सरगम का भी एक अंदाज बहुत ही निराला अंदाज है, क्योंकि आवाज तानों में तो जाती तीनों सप्तकों में, तीनों सप्तकों में सरगम का भी जो है प्रेजेंटेशन, वो भी बड़ा खूबसूरत रहा है। और उसको हम छूट की सरगम कहते हैं।
1: जी हाँ जी हाँ
0: गामा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा नी नी नी नी नी दा पा मा गा रे सा सा गा रे सा गा रे सा नी दा पा मा गा रे सा नी सा रे सा नी दा पा मा गा रे सा। तरतीब और एक बेतरतीब, सा रे सा नी दा पा मा गा रे सा नी सा गामा पा गामा गा रे सा नी दा पा मा गा रे सा पा पा गामा गा रे सा नी दा दा दा दा दा पा मा गा रे सा नी सा गा रे मा गा पा मा दा पा दा मा पा गामा गा पा मा पा गामा गा दा पा मा गामा पा गामा गा रे सा नी दा पा पा पा मा गा रे सा नी दा पा मा गा मा पा रे सा।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खान साहब, आपने सहसवान गायन शैली की खूबसूरतियों, विशेषताओं को बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों को समझाया, और हमारे श्रोताओं को निश्चित ही पसंद आएगा। एक प्रश्न और खान साहब आपसे करना
0: जी
1: चाहेंगे,
0: फरमाइए।
1: कि ट्रेडिशनल जो हमारे राग हैं,
0: यह है पारंपरिक।
1: पारंपरिक जो राग हैं, कामोद, काफी और बिहाग
0: जी
1: आदि
0: हाँ
1: अन्य
0: जी
1: राग, तो जब उन्हें पारंपरिक ढंग से गाया जाता है तो उसकी तस्वीर हमें स्पष्ट नजर आती है
0: जी
1: समझ
0: हाँ
1: में।
0: जी
1: और आजकल बहुत से कलाकार नए रागों को भी रच रहे हैं,
0: जी हाँ
1: तो आपका क्या ख्याल है कि उससे हमारी संगीत में क्या कुछ नवीनता आ रही,
0: जी हाँ
1: और हमारे जो आजकल के जो कलाकार हैं,
0: जी
1: सीखने वाले विद्यार्थी
0: जी
1: जो, उन पर इस प्रयोग का अथवा इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है, आपके क्या ख्याल
0: जी
1: हैं?
0: हाँ पवार साहब, ऐसा है कि आज जो राग प्रचलित हैं वो किसी जमाने में कुछ लोगों ने उनका आविष्कार किया होगा, और धीरे धीरे वो प्रचलित हुए और अति लोकप्रिय भी हो गए। अच्छा, तो असल में बात यह है कि कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं, जिसके जिसकी रोशनी में रागों का निर्माण होता है। अगर वो नियम सामने रखकर नए रागों का आविष्कार किया जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें हमारे यहाँ जो रागों की सूची है उसमें वृद्धि होगी। लेकिन कम से कम मैं ये देख रहा हूँ कि जो नए राग आज जो लोग यानी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं वो इन उसूलों पर पूरे नहीं उतरते। कुछ भी नाम रख दिया और कुछ भी यानी जो स्वर समूह है उसको तैयार कर दिया, तो जो ज्यादातर जो नए नए रागों का जो प्रयोग किया जा रहा है, मेरी निगाह में वो संगीत को उससे हानि पहुंच रही है।
1: खैर, तो खास साहब आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई। हम आपका आभार प्रदर्शित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत बहुत
1: नमस्कार।
0: शुक्रिया। और मैं अपने श्रोताओं को जो मेरे यानी छोटे मोटे विचार हैं उनको भी प्रकट करने का मैंने प्रयास किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।
2: सहसवान घराने के गायक हफीज अहमद खान से राम सिंह पवार की बातचीत आप सुन रहे थे। संगीत सरिता के लिए यह कार्यक्रम वर्ष 1985 में विजय शंकर चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब सुनते हैं हफीज अहमद खान का गाया राग बिहाग में तराना।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं छोटी बहन फिल्म के गाने के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुवीर सेन की। हसरत जयपुरी के बोल और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अनवर का लिखा हुआ और उषा खन्ना का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम शबनम।

0: शीघ्रम्।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
2: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
1: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
3: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
1: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
4: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक।
4: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
4: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
5: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए शैलेंद्र का लिखा और आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम छोटे नवाब।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ससुराल फिल्म का गाना। हसरत जयपुरी है, गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अगला गाना हमने लिया है गोदान फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, लिखा है अनजान ने और धुन बनाई है पंडित रविशंकर ने।
1: पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा कि हियारा में उठे तहिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
6: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
5: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें।
7: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
5: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजों में जिद्दी फिल्म से हजरत जयपुरी हैं। गीतकार और संगीतकार हैं SD बर्मन।

इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में दर्पण फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: अरे जल गई जल

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में धरती फिल्म का गाना। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: आइए अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत। फिल्म का गाना आनंद बख्शी है गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम गंवार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में रूठा ना करो इस फिल्म से। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

का चेहरा माशाल्लाह।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में रूठा ना करो फिल्म का गाना। इस गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नीतिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से इतना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
4: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गाँव में रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
5: नाम है चुन्ना हल्दा। इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उल दा रहा है। उससे हम लोग गाँव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
2: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय

0: संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
2: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है कि किशोरियों से गैंगरेप पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्य ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विथ्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष सीबीएसई की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। एक खूबसूरत सा शब्द है हृदय। छोटा सा शब्द है लेकिन इसमें हमारी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी है। दिल खुश होता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, दिल उदास होता है तो आंखें नम हो जाती हैं। किसी अपने की एक छोटी सी बात भी दिल को छू जाती है। लेकिन यह दिल केवल भावनाओं का केंद्र नहीं है। हमारे शरीर में मौजूद हृदय हर पल हर क्षण हमारे लिए काम करता है। हम जाग रहे हों या सो रहे हों, खुश हों या परेशान, दिल अपनी धड़कनों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। इसी अनमोल दिल की सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो आज बातें उसी दिल की, जो कभी किसी की खूबसूरती देखता है, कभी किसी के प्यार में धड़कता है और कभी किसी की याद में टूट जाता है। और जब बात दिल की हो तो चेहरे से ज्यादा दिल को देखना ही शायद सबसे जरूरी है।

चेहरा तो वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन दिल की अच्छाई लंबे समय तक याद रहती है। कुछ ऐसा ही हमारे स्वास्थ्य के साथ भी है। हम बाहर से अपने आप को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त देखते हैं, लेकिन अंदर हमारा दिल किस हालत में है, इसका पता लगाना भी उतना ही जरूरी है। आज की जीवन शैली में हर काम की भागदौड़ में अपने खाने पीने, नींद, व्यायाम और मानसिक सुकून को अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। तनाव को सामान्य मान लेते हैं और शरीर के संकेतों को टालते रहते हैं। दिल की देखभाल के लिए बहुत बड़े बदलाव हमेशा जरूरी नहीं होते। रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी शारीरिक सक्रियता, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, तनाव को कम करने की कोशिश और अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात, दिल का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी है। कभी कभी हम मन में इतनी सारी बातें दबा लेते हैं जैसे दिल के अंदर भी एक गिरह पड़ जाती है। किसी से बात कर लेना, अपने मन की बात कह देना, थोड़ा गुनगुना लेना, मुस्कुरा लेना, मन शायद ऐसी ही कितनी गिरहें खोल देता है।

खूबसूरत बात है, दिल की गिरह खोलने के लिए एक गीत भी काफी हो सकता है। संगीत हमारे मन के बहुत करीब होता है, कभी खुशी में साथ देता है, कभी अकेलेपन में साथी बन जाता है, और कभी हमारे उन एहसासों को आवाज देता है जिन्हें हम शब्दों में नहीं कह पाते। और दिल की बात हो तो रिश्तों का जिक्र भी होना ही है, क्योंकि किसी का प्यार दिल को सुकून देता है तो किसी की बेरुखी वही दिल तोड़ भी देती है। दिल टूटने का दर्द शायद हर इंसान ने कभी न कभी महसूस किया होगा, लेकिन जिंदगी की खूबसूरती यही है कि दिल टूटने के बाद भी धड़कता रहता है और हमें फिर से जीना सिखाता है। इसलिए अपने दिल को सिर्फ दुखों की यादों में मत भरिए। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी चीजें चुनते हैं, उसी तरह मन के लिए भी प्यार, दोस्ती, हंसी और सकारात्मकता चुनिए। और अगर कभी कोई दिल तोड़ भी दे तो उस टूटे हुए दिल को हमें संभालना भी सीखना होगा, क्योंकि जिंदगी किसी एक रिश्ते या दुख पर नहीं रुकती।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं आर्यभट्ट का जीरो। इस फिल्म के गाने के साथ आवाजें हैं सचिन टंडन और परंपरा टंडन की। गीतकार और संगीतकार हैं मनन भारद्वाज।

अगला गाना हमने लिया है बटवारा 1947। सुनते जावेद अली, आनंद जोशी और रब्बानी मुस्तफा खान की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के बोल और ए आर रहमान की है तर्ज़।

हमारी अगली पेशकश नाना पाटेकर शान और साथियों की आवाजों में वनवास फिल्म से गीतकार हैं सुनील सरवैया और संगीतकार हैं मोंटी शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे नाना पाटेकर, शान और साथियों की आवाजों में वनवास फिल्म का गाना। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्वेता पंडित की आवाज में एंजल फिल्म का गाना। शब्बीर अहमद है गीतकार और संगीतकार हैं अमजद नदीम।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
4: कन्नाजी का ये सबके मन बहलावा रे भैया।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए विशाल मिश्रा, नकश अजीज, अंतरा मित्रा की आवाजों में भूत बंगला फिल्म का गाना। कुमार के है बोल और प्रीतम की है तर्ज़।

0: श्रोताओं, आज है विश्व हृदय दिवस। हृदय मानव शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ये निरंतर रक्त का संचार करके शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाता है। आधुनिक जीवन शैली, असंतुलित खान पान, तनाव, शारीरिक निष्क्रियता, धूम्रपान और बढ़ते प्रदूषण के कारण हृदय संबंधी रोग आज विश्वभर में गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन चुके हैं। हृदय के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। समय पर स्वास्थ्य की जांच और उचित जीवन शैली अपनाकर हृदय रोगों के अनेक जोखिमों को कम किया जा सकता है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। साथ ही नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और तनाव का उचित प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इनसे बचकर रहें। और तो अपने दोस्तों, अपने शरीर का भी ध्यान रखें और साथ में हृदय का भी ध्यान रखें। और तनाव मुक्त रहने के लिए देश की सुरी धड़कन विविध भारती को सुनते रहें। तो चलिए आपको एक संदेश सुनवा देते हैं।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
4: सबके मन बहलावा रे भैया।
5: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
6: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
5: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
7: अगर तुम मिल जाओ।
5: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
8: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम जारी रहेगा छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए मीत ब्रदर्स अरिजीत सिंह और साथियों की आवाजों में बागी फिल्म का गाना कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स की है तर्ज।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओ, अभी संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिर फिल्म का गाना। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए करण शेम्बी की आवाज में लुका छिपी फिल्म का गाना। निर्माण है गीतकार और संगीतकार हैं तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, अर्थात खाद्य की हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों फसलों की कटाई से लेकर भंडारण तक खाद्य पदार्थों की हानि होती है, साथ ही बड़ी मात्रा में तैयार किए गए भोजन की भी बर्बादी होती है, जबकि पूरे विश्व में करोड़ों लोगों को भूखे सोना पड़ता है। अतः ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम प्रत्येक स्तर पर खाद्य पदार्थ की बर्बादी को रोकें। इस वर्ष की थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं खूबसूरत फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: एक विलक्षण गायक।
5: अरे ओरे हे।
4: संगीत के साधक।
5: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
4: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
5: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
4: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
6: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
4: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
7: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें।
8: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
4: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 से विविध भारती।
9: सनिनाची गाए सबके मन बहलावा रे भैया।
10: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सुविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में ओ रोमियो फिल्म के गाने के साथ। गुलजार के हैं बोल और विशाल भारद्वाज की है तर्ज

0: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
1: आए हाय सुल्तान इब्न सुल्तान इब्न सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। आए हाय हाय हाय हाय,
2: मां भाग रही तू मैं काले से डर गए क्या?
3: हमें काले हैं।

0: ऐ तेरे ख्याल तंदाना, ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये सोला साला तंदाना, ऐ तेरे ख्याल तंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। ये फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
1: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फलटन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम,
4: बोल दो बापू।
3: बोल दे बेटा।
4: बाप

पैसा लूट के मेरा, उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है। रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है।

ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी, और जिसके नायक होते थे महमूद।

0: ஆஷா பத்கம் பத்கம்மா
1: எங்கண்ணா எங்கண்ணா
0: பத்கம்மா பத்கம்மா
2: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
3: वनकम जी,
1: ओ पहुंच जाइए ना।
3: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना।
1: क्या है?
3: खिड़की बंद करना जी।
1: क्यों?
3: ये वो बड़ा बड़ा आपको कॉल कर देखता ना।
1: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
3: आइयो यो पहला बोलना ऐसा बात डाय बोला तुम आना गाना गाना आना।

0: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
1: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, या हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहे गाना गाना।
2: चल चल
1: देवी, तुम बदाना बदाना।
3: दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
4: यह कच्चा तुर्रा।

ಚತುರ ನಾರ ನಮ್ಮ ಜೋಡಗಳ

0: है कि ही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सत्या, देखो बिटिया।
1: क्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रो

0: रोते भी वाह वाह कर उठे।
1: नहीं साहब नहीं, बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो।
2: ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना।

दोस्तों, हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। मैं हूं साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

0: हर्रा सुहाना होगा।
1: अच्छा
0: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।
0: हमसे हारेगी दुनिया, होगी ना अपनी हार सनम। हम तुम सच्चे हैं दोनों, सच्चा हमारा प्यार।

0: तो ये था आज का, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे पीसीओडी और आईवीएफ। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, तो आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
1: सेहतनामा में

0: आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं डॉक्टर ज्योति शाह, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम उनसे बातचीत करेंगे स्त्रियों से संबंधित बीमारियों को लेकर। तो डॉक्टर साहिबा, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू विविध भारती मुझे इनवाइट करने के लिए।
0: जी, तो आज डॉक्टर साहिबा, हम आपसे महिलाओं की रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्या, जैसे अगर हम बात करें पीसीओडी है, पीसीओएस है
1: जी,
0: पीरियड्स को लेकर, मेनोपॉज को लेकर जो बदलाव हो रहे हैं, हार्मोनल बदलाव जो हम महसूस करते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और एक और खास विषय है IVF
1: जी,
0: ये क्या है इसको लेकर भी हम विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे।
1: जरूर।
0: तो सबसे पहले महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनका सामना महिलाएं अक्सर करती हैं, लेकिन उन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज भी कर देती हैं।
1: तो ये जो क्वेश्चन है मंदाकिनी जी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किशोर अवस्था से लेके रिप्रोडक्टिव एज से लेके मेनोपॉज तक, यानी पीरियड बंद हो जाना वो एज तक। तो जो एक यंग लड़की जो है, जिसको पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, वो आज मैं देख रही हूँ, एक्चुअली मैं गए 28 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने जो चेंज देखा है लास्ट 10-15 साल में ये है कि जो पीरियड आना जो नॉर्मली 11 से 15 की एज में आता है, आजकल काफी यंग लड़कियों को, जैसे 7-8 साल की बच्चियों को भी पीरियड आने लगता है।
0: अच्छा।
1: यस, सो ये एक चेंज मैंने देखा है। दूसरा कि जब ये पीरियड आता है तो थोड़े से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम करके एक एंटिटी है, कि पीरियड आने से पहले बहुत इरिटेबल होना, चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा बिहेवियरल डिफरेंस, ये सब हो सकता है, विच इज नॉर्मल। तो मदर्स को डरना नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो बदलाव आ रहा है वो ये है कि गर्ल्स अभी शादी जो है वो या टाइम पे करती हैं लेकिन बच्चा लेट करती हैं, या लेट करती हैं और फिर नेचुरली बच्चा भी लेट होता है। तो अभी जो बदलाव मैं देखती हूँ जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यानी जैसे 20 साल से लेके 30-35 साल की एज में, तो पीसीओडी जो है या पीसीओएस या अभी पीएमओएस हम जो बोलते हैं, वो काफी बढ़ चुका है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है, ये एक काफी एक बर्निंग समस्या है, बहुत है। पीसीओडी में ये है कि अंडे बहुत होते हैं, टू मेनी एग्स, पॉलीसिस्टिक बोलते हैं। तो एक साइड पे वो प्रॉब्लम है, दूसरी साइड पे जो मैं अभी देख रही हूँ ये भी गए 10 साल में ज्यादा, कि यंग लड़कियां, मतलब 25 साल 26 साल की लड़की है लेकिन उसके अंडे ही नहीं है या बहुत कम है।
0: अच्छा,
1: ये पहले नहीं था। हाँ। तो ये भी अभी मतलब जो
0: बहुत बड़ी समस्या
1: है। तो जो लड़कियां जो बच्चा प्लानिंग कर रही हैं, जो औरतें हैं, तो ये भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि शायद से अंडे कम हो या पीसीओडी, तो अंडे तो बहुत ज्यादा है, तो ये प्रॉब्लम उनको अपने गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। और थर्ड स्टेज जो मैंने बोला मेनोपॉज में, तो मेनोपॉज में अगर जब पीरियड बंद होने लगता है या पीरियड बंद हो जाता है, तो वुमेन काफी हद तक बहुत सारे चेंजेस महसूस करती है, जैसे मूड स्विंग्स हैं, हॉट फ्लशेस हैं। तो ये मतलब अगर वो एक्सपीरियंस कर रही है और अगर वो बॉदर कर रहा है, तो शी शुड टेक हेल्प। एंड ऑल्सो जैसे मेनोपॉज के टाइम पे कैंसर्स की रिस्क भी बढ़ते हैं, तो जिसके बारे में शायद से हम बाद में बात करने वाले हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर कुछ भी अलग अदर देन रूटीन ये फेज में भी अगर है, तो उनको कंसल्ट करना चाहिए।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। और हम ये जानना चाहते हैं कि अक्सर महिलाओं में थकान है, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं, नींद की परेशानी है, या चिड़चिड़ापन जैसा आपने कहा, तो क्या ये केवल जीवन शैली से जुड़ी बातें हैं, या कभी कभी इनके पीछे कोई स्त्री रोग या जो हार्मोनल कारण विशेष हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और हम अपनी जिंदगी को यूं कहें कि घसीटते चले जाते हैं।
1: जी, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हार्मोनल चेंजेस हर एक फेज में जो हो रहे हैं, तो वो तो हार्मोन्स के कारण वो चेंजेस तो आते भी हैं काफी लेडीज में। और सेकेंडली जो थकावट है, ये इसके कारण भी हो सकती है कि अगर जो औरत है, अगर उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में, अगर उनको माहवारी बहुत ज्यादा हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत दिन तक ब्लीडिंग चालू है, तो उससे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है उनका। अनीमिया एक इंडिया का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये, और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयरन टैबलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस चीज के लिए। तो थकावट अनीमिया के कारण हो सकती है,

0: बिकॉज ऑफ द करंट जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ जो हम जी रहे हैं, हमारा खान पान, हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज नहीं, ये सब के कारण जो स्ट्रेस बढ़ता है उसके कारण भी हार्मोनल चेंजेस जैसे थायराइड हो जाना, तो थायराइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि काफी थकावट महसूस हो रही हो, मूड चेंजेस हो रहे हो, वजन बढ़ना, ये सब, तो थायराइड भी चेक करना चाहिए, हीमोग्लोबिन भी चेक करना चाहिए. और इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस भी एक बर्निंग इश्यू है, तो अगर वेट लॉस हो रहा है, उसके बाद थकन हो रही है, सांस फूल रही है, तो ट्यूबरक्लोसिस की भी जांच
1: संभावना हो सकती है. तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहिबा कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमें मिलते हैं या ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए,
0: जरूर
1: डॉक्टर की परामर्श से हमें अपना इलाज करवाना चाहिए.
0: डेफिनेटली
1: इसे केवल बुरा व्यवहार समझकर नहीं छोड़ देना
0: नहीं,
1: है,
0: बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको हमको एड्रेस करना है कि ये क्यों हो रहा है.
1: जी जी.
0: और अगर वो ट्रीटेबल है तो डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए.
1: बिल्कुल. और एनीमिया के बारे में आपने बताया, ये बहुत बड़ी समस्या है और लगभग हर स्त्री को इसका सामना करना पड़ता है. यूं कहें कि पढ़ी लिखी स्त्रियां भी कई बार इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती हैं और इसी में अपना जीवन निकाल देती हैं. जो वर्किंग वीमेंस हैं उनके सामने और ज्यादा इस तरह की तकलीफें आती हैं. तो आपसे लंबी बातचीत हम करने वाले हैं, पहले आपकी पसंद का गीत सुन ले.
0: जी, तो कोई भी मोहम्मद रफी का गीत, आई एम ओके विद दैट.
1: अरे वाह, कौन सा सुनाई बताए.
0: तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है.
1: फिल्म चिराग का गीत हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में.

0: क्या है।
1: डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा कि पीसीओडी की समस्या भी आजकल बहुत सुनने में आती है
2: जी।
1: तो हमारी वो महिलाएं जो नहीं जानती हैं कि पीसीओडी क्या है और इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं
2: जी,
1: उन्हें आप बताइए कि क्या है पीसीओडी।
2: ओके, तो पीसीओडी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक प्रॉब्लम शुरू होती है और उसमें लक्षण ये होते हैं कि लेडीज जो औरतें हैं जिनकी महावारी रेगुलर होनी चाहिए 28 या 30 दिन में, उसके बदले में महावारी डिले हो जाना, जैसे 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या उससे भी ज्यादा, यानी पीरियड्स लेट होना, या पीरियड जब आता है तो नॉर्मली जो 5 दिन 8 दिन रहता है उसके बदले में 15 दिन 20 दिन कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है
1: जी।
2: तो ये भी एक उसका लक्षण है। अच्छा, पीसीओडी में एक्सेसिव वेट गेन भी हो सकता है, एक्ने यानी पिंपल्स, मुंह पे पिंपल्स आना, ये हो निकल पिंपल्स निकलना, बाल झड़ना, अच्छा दाढ़ी आना। मेरे दो पेशेंट्स हैं जो इनको रोज शेविंग करनी पड़ती है।
1: अच्छा,
2: यस, तो सीवियर पीसीओ पेशेंट्स में सर के बाल निकल जाते हैं लेकिन दाढ़ी के बाल उगने लगते हैं, तो वो एक
1: लक्षण है
2: जी। तो अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है या पीरियड्स इरेगुलर हैं तो मे भी आपको पीसीओ हो सकता है।
1: हो सकता है, तो इस पीसीओडी की समस्या को नियंत्रित कैसे रखा जाए?
2: तो उसके लिए एक्चुअली ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है पीसीओडी। तो पीसीओडी जो है वो लास्ट 10-15 साल में एक एपिडेमिक जो हो चुका है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर गर्ल उसको पीसीओ है। बहुत कॉमन है, अगर आप 10 लड़कियों को एक रूम में रखेंगे तो शायद से 5 लड़कियों या 6 लड़कियों को तो पीसी होगा, इतना अभी कॉमन हो गया है ये पीसीओ। तो ये द एग्जैक्ट कॉज वी कैनॉट पिन पॉइंट, बट जेनेटिक एक कॉज हो सकता है कि अगर मदर को पीसीओ है तो डॉटर को हो सकता है। बट अभी की जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अपना जो खान पान जो है, जो रेडी फूड, जो घर का खाना नहीं खाते हैं और बाहर का पैकेट खोल के खाना, ये जो रिफाइंड ऑयल वगैरह ज्यादा उसका सेवन करना, होल ग्रेन्स नहीं खा के मैदा और ये सब ज्यादा खाना, ब्रेड है ये, और स्ट्रेस, अभी सब लड़कियां पढ़ रही हैं तो वो स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज,
1: बिल्कुल,
2: एंड सोशलाइजेशन बहुत कम हो गया है, तो आपका स्ट्रेस, आप मतलब आप किसी से बांट नहीं सकते हो, तो सोशल आइसोलेशन हो गया है थैंक्स टू द मोबाइल। तो ये सब के कारण से ये जो पीसीओ का प्रॉब्लम काफी बढ़ चुका है
1: जी। तो इसके लिए जाहिर है कि हमें डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और इस समस्या का निराकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके फिर साइड इफेक्ट्स हमारे सामने
2: जी। और ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगी कि पीसीओ पेशेंट्स जो लड़कियां हैं, जरूरी नहीं कि उनका वजन ज्यादा हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थिन लीन पीसीओ, यानी वो बहुत पतली है बट फिर भी वो पीसीओ है। तो पीसीओ का क्राइटेरिया, बेसिकली मेन क्राइटेरिया ये है कि एक तो पीरियड की इरेगुलरिटी होना, सेकेंड क्राइटेरिया है कि मेल हॉर्मोन्स जो ज्यादा होते हैं तो जिसके कारण मैंने बताया कि बॉल्डिंग होना, दाढ़ी उगना, पिंपल आना ये, एंड थर्ड सोनोग्राफी पे ओवरीज में बहुत सारे अंडे दिखना, ये एक मतलब क्राइटेरिया है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि पीसीओ में जो हर महीने अंडा फूटना चाहिए वो उनका फूटता नहीं है, यानी अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर थोड़ा टाइम के बाद दूसरा अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर वैसे करके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद जब फूटता है एक कोई अंडा गया तो फिर तभी पीरियड आता है, लेकिन वो पीरियड बहुत लंबे समय तक चालू रहता है तो ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण पेशेंट अनीमिक भी हो जाती है, क्योंकि ये इंप्रेशन है लोगों को कि पीरियड में वो जो ब्लड है वो निकलना चाहिए, वो खराब ब्लड है। तो ये मैं एक्चुअली बताना चाहूंगी सबको कि ये वो खराब ब्लड नहीं है, वही ब्लड आपके हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में है, तो जो नॉर्मल जाना चाहिए वो ठीक है, बट उससे ज्यादा अगर जा रहा है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही
1: जरूरी है। बिल्कुल, एक आम धारणा है या ग्रामीण तबकों में तो खास तौर से कि गंदा खून है जो बाहर निकल रहा है।
2: जी,
1: बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये गंदा खून नहीं है।

0: जी
1: ये हमारे पूरे शरीर में है
0: yes.
1: और एक उचित मात्रा में निकलना चाहिए
0: yes.
1: महावारी के दौरान
0: जी.
1: लेकिन उससे ज्यादा निकलते ही दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं. डॉक्टर साहिब, आप पीसीओडी के साथ अक्सर हम पीसीओएस की भी चर्चा आजकल कर रहे हैं, तो क्या पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों एक ही है या दोनों में कोई बेसिक अंतर है?
0: एक ही है एक्चुअली. अभी जो नया टर्मिनोलॉजी आया है, अभी पीसीओडी या पीसीओएस नहीं बोलते हैं, हम पीएमओएस बोलते हैं.
1: अच्छा.
0: हाँ, तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी ये जो लड़कियां जिनको पीरियड इरेगुलर आ रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं या स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं या वजन बढ़ रहा है या इनफर्टिलिटी है उसके कारण या जो भी सिम्टम है पीसीओडी का, उसके साथ साथ उनको डायबिटीज के होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी हार्ट अटैक्स होने के, उनका लिपिड प्रोफाइल जो है, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ट्राइग्लिसराइड्स, वो चेंज होता है और कार्डियक रिस्क उनका बढ़ जाता है. तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसमें पीसीओडी में कैंसर्स के भी रिस्क बढ़ जाते हैं. तो ये सिर्फ पीरियड रिलेटेड या स्किन रिलेटेड नहीं है एक्चुअली, इसके बहुत सारे और भी मल्टी डायमेंशंस हैं जो हमको देखने चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि ये भी मुझे हो सकता है.
1: बिल्कुल, यानी कि एक समस्या के चलते कितनी सारी समस्याओं से महिला को
0: रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड,
1: उससे रिलेटेड समस्याएं हैं जिसका अंदाजा हमें लगता नहीं
0: जी,
1: है
0: जी.
1: और समय हो जाने पर या बीत जाने पर फिर उसके दूसरे परिणाम हमारे सामने आते
0: सकते
1: हैं. आपने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि पीसीओडी की समस्या जब है तो ये नहीं है कि वो महिला या लड़की बहुत फैटी होगी, दुबली पतली लड़की को भी ये समस्या हो सकती है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है. तो क्या हम ऐसा माने डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि पीसीओडी पीसीओएस, इसका अर्थ ये माने कि महिला मां नहीं बन सकती? ऐसी कोई धारणा?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो बेसिकली पीसीओ में जो मैंने जो बताया कि अंडे नहीं फूटते हैं रेगुलरली, जो 28 या 30 दिन में एक अंडा नॉर्मली फूटता है, जब वो नहीं फूटता है, जिसको हम ओवुलेटरी डिसफंक्शन बोलते हैं, तो वो हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं मेडिसिन से. इनफैक्ट एक्चुअली इवन बिफोर मेडिसिन हम उनको बोलते हैं आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करो.
1: हाँ.
0: यानी आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट पे ध्यान रखो, योग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, होल ग्रेन्स इंक्लूड करो, फ्रूट्स एंड नट्स इंक्लूड करो अपनी डाइट में. तो थोड़ा भी इवन 5% ऑफ वेट लॉस अगर होता है एक पीसीओ पेशेंट जो, मतलब जिसका वेट ज्यादा है, तो वो जो अंडा जो रेगुलरली नहीं फूटता है वो फूटने लगता है. यानी सिंपल लाइफस्टाइल चेंज से भी काफी हद तक पीसीओडी या पीएमओएस के हम सिम्टम्स रिवर्स कर सकते हैं. ये परमानेंट नहीं है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और ये डाइट एक्सरसाइज को
1: बदलते हैं.
0: यस, तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना. अभी आजकल जो मैं सुनती हूँ, लड़कियां 1, 2, 3 बजे के पहले सोती नहीं है, 8, 9, 10 बजे के पहले उठती नहीं है. तो ये चेंज होना बहुत जरूरी है. बिकॉज मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जब सोते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसके कारण हम गहरी नींद सोते हैं, जो हार्मोन है मेलाटोनिन.
1: बिल्कुल.
0: और मेलाटोनिन ये हार्मोन का पीक राइज इज अराउंड 9, 9:30, 10.
1: अच्छा
0: जी.
1: उस वक्त तो हम लोग खाना खाना पसंद करते हैं या टीवी देखना पसंद करते हैं.
0: तो जब ये उसका पीक निकल जाता है
1: हाँ.
0: तो नींद आती है लेकिन इतनी गहरी या क्वालिटी स्लीप नहीं रहती
1: नहीं
0: है. और दूसरी बात ये है कि जब आप लेट सोते हो, जैसे 12, 1, तो जब बॉडी जग रही है तो ब्रेन ये इंटरप्रेट कर रही है कि ये कुछ स्ट्रेस है. तो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो सिक्रीट होने लगता है, जिसके कारण स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी वजन बढ़ना, नींद, क्वालिटी नींद नहीं आना, स्पेशली अराउंड द बेली कॉर्टिसोल के कारण वेट पुट ऑन होता है. तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन. तो ये सब पीसीओ के सिम्टम्स और भी खराब कर देता है.
1: अच्छा.
0: इसलिए टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, उसके लिए टाइम पे डिनर लेना, यानी अर्ली डिनर, जैसे 7, 7:30, 8 o'clock, यानी सोने से 2 घंटे पहले डिनर लेना बहुत जरूरी है. और अगर मैं बोलती हूँ कि आपको 10, 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए, बिकॉज मेलाटोनिन पीक तभी होता है और तभी आपको इतनी गहरी नींद आती है कि क्वालिटी स्लीप, कि जहां पे बॉडी प्रोसेसेस सब हीलिंग होने लगता है, बॉडी का प्रोसेसेस सब स्लो डाउन हो जाते हैं और टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं. तो लेकिन जब आप वो टाइम पे नहीं सोते हैं तो फिर वो जो डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए प्रोसेस वो नहीं होता,
1: नहीं होता है,
0: इन्फ्लेमेशन बढ़ता है. तो ये चेंज भी लाना बहुत जरूरी है. और जल्दी उठते हैं जब आप नेचर के साथ रहते हैं, आप जल्दी उठते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं.
1: बिल्कुल. बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर साहिबा, कि हम किस तरह से खुद को हमने बीमार कर रखा है,
0: जी,
1: देर रात तक जगना, सुबह लेट तक उठना,
0: जी, जी,
1: और
0: जी,
1: कभी भी खाना खा लेना,
0: जी,
1: जब भूख लगेगी खा लेंगे,
0: जी,
1: इस तरह की अनियमित जो दिनचर्या हमारी है वही बहुत बड़ा कारण है इन बीमारियों का,
0: एब्सोल्युटली,
1: है ना। और अगर हम इनमें थोड़ा सा भी बदलाव ले आते हैं तो हम धीरे धीरे सुधार महसूस कर सकते हैं।
0: 100%
1: डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है, सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
0: आज फिर जीने की तमन्ना।

0: डॉक्टर साहब, किस समय एक महिला को या किशोरी को सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना आपने कहा 7:30 to 8 o'clock तक खा लेना चाहिए, तो
1: जी.
0: सुबह का और दिन का भी किस तरह का होना चाहिए टाइम, आप थोड़ा सा बताइए.
1: ऐसा है कि उठने के बाद एक तो आई रेकमेंड कि आप वार्म वाटर लें उठने के बाद. उसमें आप लेमन डाल के, नींबू डाल के ले सकें तो एक बॉडी एनर्जाइज, मतलब उसको हाइड्रेशन चाहिए क्योंकि पूरी रात हाइड्रेशन नहीं मिला
0: मिला
1: है.
0: नहीं है
1: यस,
0: बिल्कुल.
1: तो बॉडी की जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है. मे बी थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट लेके या कोई नट्स लेके आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, योग
0: अच्छा.
1: करें, मेडिटेशन करें, एम्प्टी स्टमक करें तो भी चले. और उसके बाद आप जो आपका ब्रेकफास्ट है वो होलसम ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी और चावल, ये इसमें ज़्यादा कार्ब्स रहते हैं उस टाइप का, यानी हम जो पराठे खा लेते हैं वो कम खा के, जैसे प्रोटीन्स उसमें इंक्लूड करें. आप खा सकते हैं जो इंडियन ब्रेकफास्ट है उसमें पोहा है, उपमा है, पराठे हैं. तो अब हमको ये सोचना है मदर्स को या विमेन को कि मैं इसमें प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाऊं.
0: ठीक है.
1: तो जब आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, कार्ब्स कम, तो फिर वो इंसुलिन स्पाइक जो होता है वो कम होता है. प्रोटीन्स प्रिवेंट इंसुलिन स्पाइक, जो मैंने बोला ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जब स्पाइक होता है उससे वेट गेन होता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण या इंसुलिन स्पाइक के कारण वेट गेन होता है. तो जब हम प्योर ओनली कार्ब्स जब हम खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक ज्यादा होती है. तो हमको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा करनी चाहिए. जो हम पहले जो खाते थे, जो हमारे जो पूर्वज थे वो खेती बाड़ी करते थे, उनके फिजिकल लेबर कितना था, अभी हम वो तो करते नहीं है. वी कैन नॉट हैव दैट सेम फूड. उनकी जो क्वांटिटी है वो भी उतनी हम यूज नहीं कर पाएंगे. और जो कार्ब्स उनको एनर्जी के लिए चाहिए, वो फिजिकल वर्क के लिए, वो भी हम यूज नहीं करते. तो ये थोड़ा चेंज लाना चाहिए. तो ब्रेकफास्ट में भी कोई हाई प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट, जैसे आप पनीर ले लो या टोफू ले लो सोयाबीन्स का, बॉइल्ड एग या स्प्राउट्स, वैसे ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए.
0: ठीक है.
1: मिड मॉर्निंग कोई फ्रूट ले लिया अलॉन्ग विथ नट्स एंड सीड्स, वैसे कर सकते हैं. लंच में सैलेड, यानी फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइबर ऑल्सो प्रिवेंट्स इंसुलिन स्पाइक. तो प्रोटीन्स, फाइबर्स, ये आपके डाइट में, हर डाइट में होने चाहिए, ताकि जो इंसुलिन स्पाइक, जो मेन क्रिमिनल, मतलब जो प्रॉब्लम का कारण है, वो ना हो. तो उसके लिए लंच में आप सैलेड के साथ प्रोटीन और जो कार्ब्स की मात्रा है वो कम करें. सिमिलरली मिड आफ्टरनून या मिड इवनिंग आप ग्रीन टी ले सकते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए. और इवनिंग में सूप जिसमें फाइबर मिले अलोंग विद सम प्रोटीन, जैसे मूंग दाल चीला ले लिया या उस टाइप का, मतलब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए इंसुलिन स्पाइक को
0: नहीं
1: होने के लिए.
0: डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी कि किस तरह से एक स्त्री को, एक औरत को, महिला को अपना भोजन या अपनी दिनचर्या फिक्स करनी चाहिए. लेकिन हम उन औरतों को भी ध्यान में रखना चाहते हैं जो श्रमिक वर्ग की हैं, बहुत मेहनत करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, गांवों में रहती हैं. उन्हें नहीं पता होता किस तरह से ग्रीन टी पी जाए या किस तरह से प्रोटीन खाया जाए. उनके लिए आप किस तरह की डाइट का सुझाव देंगी?
1: जैसे इनफैक्ट अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है उनको पीसीओ होगा भी. बट अगर होता है तो फिर दालचीनी पानी, दालचीनी इज एन इंसुलिन सेंसिटाइजर है, मेथी इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जीरा इंसुलिन सेंसिटाइजर है. तो मेथी, जीरा, दालचीनी पानी, ये सब इसका सेवन, ये दिन में एक बार, दो बार ऐसे, और सोते समय भी दालचीनी का पानी लेके सोए, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया.
0: अच्छा, यानी दालचीनी को पानी में भिगो देना है.
1: यस,
0: और छान के
1: यस, बॉइल करके उसको छान के ले सकते हैं.
0: अच्छा,
1: तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है आपकी. कोई भी टाइम पे खा लेना. चलो, कभी कभी वो हम स्ट्रेस में खा लेते हैं, हमको भूख नहीं लगी होती है लेकिन हम खा लेते हैं, तो वो कम कर देता है. और प्रोटीन्स जो जब आप ज्यादा लेते हो, जैसे आपने खिचड़ी ले ली, खिचड़ी में आपने दाल की मात्रा ज्यादा ले ली, तो प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं. कोई भी प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेते हो ना, तो आपका जो सटाइटी, यानी आपको लगता है कि नहीं अब पेट भर गया है, अब भूख नहीं है, तो वो भूख कम लगेगी, वो भी है. तो आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो खाना आप खाते हो, कैलोरीज लेते हो, वो कम हो जाए,
0: नहीं खाएंगे. जी, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इस तरह से अगर हम अपना डाइट प्लान करते हैं तो बहुत हद तक बहुत सी समस्याओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं.
1: डेफिनेटली, मतलब. और उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी. मतलब आज कल जो हम डिप्रेशन वगैरह इतना सब सुनते हैं, इतना स्ट्रेस के कारण, तो वो भी विद एक्सरसाइज काफी हद तक कम हो जाता है.
0: और गीत संगीत सुनने से भी काफी हद तक हमें
1: 100%
0: तो एक गीत हो जाए आपकी पसंद का.
1: मैं सुनना चाहूंगी जूली फिल्म का माय हार्ट इज बीटिंग।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना है। प्रीति सागर की आवाज में हम
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: डॉक्टर साहब, हमारा सवाल यह है कि एक सामान्य जो मासिक चक्र है वो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए?
1: ओके तो जो पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मली हर 28 से 30 दिन में पीरियड्स आते हैं, जिसको हम माहवारी बोलते हैं। तो ये एक अंदर जो हॉर्मोन्स के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसके कारण नॉर्मली हर महीने एक अंडा बढ़ता है, जो पीरियड के सेकेंड थर्ड डे से मतलब बढ़ने लगता है, और फिर वो लगभग पीरियड के मे बी 11वें 12वें 14वें दिन फूटता है अंडा, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं।
0: ठीक है।
1: जब अंडा फूटने के बाद अगर वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो उनका जो यूट्रस का जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो शेड ऑफ हो जाता है। वो लाइनिंग जो है वो तैयारी मतलब गादी होती है कि प्रेगनेंसी अगर रुकती है तो उसकी गादी मतलब वो तैयार होती है, और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है, तो जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो जब रेगुलर ओवुलेशन यानी हर महीने जब अंडा फूटता है और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और जो पीरियड आता है, दैट इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन।
0: यानी 28 से लेकर 30 दिन का ये चक्र होता है।
1: यस, कई गर्ल्स में 21 दिन में भी पीरियड आता है, दैट इज आल्सो नॉर्मल, वो उनका साइकिल है। कई बार 35 डेज साइकिल हो सकता है। सो इट्स
0: अलग अलग शरीर में अलग,
1: ऑन एन एवरेज 28 to 30 days
0: 30 होना चाहिए। अभी आप शुरू में बता रही थी कि इसका जो पहले रेशो था 12 से 15 वर्ष तक था कि वहां से पीरियड शुरू हो जाते थे, लेकिन अब आपने देखा है कि 7-8 साल की लड़कियों को भी पीरियड होने लगी है। क्या इसका कारण है? जल्दी उम्र में जब बच्चा समझ ही नहीं पाता कुछ भी।
1: जी, तो ये एग्जैक्ट

0: रीजन तो शायद डिफिकल्ट है बताना, बट सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अभी आजकल के बच्चों को जो सोशल मीडिया एक्सपोजर है तो उनका जो मेच्योरिटी है
1: जल्दी
0: जल्दी
1: होगी।
0: होने लगता है, तो जो हार्मोन्स का जो नॉर्मल जो चेंजेस आने चाहिए जो टाइम पे, वो शायद अब जल्दी होने लगे हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है।
1: तो ऐसी खास बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए जिन बच्चियों की 7 या 8 साल की उम्र में माहवारी शुरू हो गई है तो?
0: तो बच्चियां बहुत छोटी हैं, सो इसलिए थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना, कि वो तो डर जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, तो एक तो कि ये नॉर्मल है, नथिंग टू वरी, एंड उनको अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी पैड यूज कर रहे हैं या जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो एरिया को साफ रखना, या अगर कपड़ा यूज कर रहे हैं तो कपड़ा अच्छा साफ धुला हुआ होना चाहिए, सनलाइट में सुखाया हुआ होना चाहिए, वो सब बच्चियों को समझाना। एंड सेकेंडली कि लड़कियां इस चीज को लेके बहुत ही डरी हुई रहती हैं, मतलब कंप्लीटली वो उनको बोल देना कि ये टोटली नॉर्मल है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको ये भी बताना, ऑफकोर्स दे आर वेरी स्मॉल बट आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट भी हैं, कि प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, जब पीरियड शुरू हो रहा है दैट मीन्स अभी अंडा फूटने लगा है, तो दैट मीन्स देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये भी मतलब सेक्सुअल एजुकेशन भी
1: बहुत
0: ये
1: जरूरी
0: बहुत
1: है
0: जरूरी
1: देना,
0: है, ये सोच के कि बच्ची है तो इसको क्या अभी बताएं,
1: बताना।
0: लेकिन अभी जो एनवायरमेंट है तो उनको गुड टच बैड टच ये तो हम
1: बताते ही
0: बताते
1: हैं।
0: ही हैं, लेकिन अभी उसमें ये भी ऐड करें कि अब प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है उनको
1: मतलब
0: बताना।
1: एक इतनी छोटी बच्ची को ये एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है माँ की तरफ से।
0: यस हाँ, और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जनरली फर्स्ट 1 ईयर यस 2 ईयर्स जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उनका जो ओवुलेशन, जो मैंने बताया कि अंडा फूटना, कि वो प्रक्रिया जो रेगुलर नहीं होती है उनकी, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां का पीरियड जैसे आया फिर मे बी 5-6 महीने नहीं आया, या 2-3 महीने कंटिन्यूअसली ब्लीड हो रही है, तो अगर ऐसा हो रहा है उनको डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज यू कैन नॉट अलाउ कि वो बच्ची 15 दिन 20 दिन 25 दिन बस उसका ब्लीडिंग चालू है, बिकॉज वो डेफिनेटली अनिमिक हो जाएगी उसकी, और अगर लेट आया है पीरियड तो नॉट टू वरी कि फर्स्ट 1-2 साल ऐसे इरेगुलर ओवुलेशन होता
1: होता
0: है,
1: है।
0: तो
1: अच्छा
0: या
1: हाँ, ये भी चिंता का विषय
0: जी
1: हो जाता
0: यस
1: है
0: काफी
1: कि
0: बार
1: जब
0: मदर्स आती
1: हाँ
0: हैं
1: कि क्या बात है, अगले
0: जी
1: महीने इसको
0: जी
1: समय पर पीरियड्स नहीं आए
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: हाँ
0: जी
1: हाँ ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 1 साल 2 साल तक ये समस्या आ सकती
0: जी
1: है कि पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रही है महावारी तो उसके लिए पेरेंट्स को चिंता करनी
0: यस,
1: होगी,
0: उनको डॉक्टर के पास
1: ले
0: डेफिनेटली
1: जाना
0: लेके
1: ही है।
0: जाना है, और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, एक मेरी पेशेंट आई थी जो बच्ची का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम हो गया था, क्योंकि वो 20 दिन कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग विद क्लॉट्स था उसको,
1: ओहो
0: एंड उनको लगा कि ठीक है बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा, लेकिन शी ऑलमोस्ट एक फेंट हो गई थी स्कूल में,
1: और
0: ऐसा
1: बच्चे
0: नहीं
1: के अंदर कितना डर बैठ जाता होगा
0: जी
1: ना
0: जी
1: एक छोटी
0: जी
1: बच्ची को
0: जी जी
1: कि
0: जी
1: क्या हो रहा है मेरे
0: बिल्कुल
1: साथ, और फिर
0: बिल्कुल
1: उसको ता उम्र से फेस करना है, तो
0: जी
1: उसके लिए उसको मेंटली बहुत मैच्योर करना होगा एक माँ
0: डेफिनेटली
1: को। तो डॉक्टर साहिबा, जब आपने कहा कि पीरियड्स रेगुलर भी होते हैं इरेगुलर्स भी हो सकते हैं, इस दौरान आपने देखा है बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत
0: जी
1: ज्यादा ऐंठन आती है,
0: जी
1: बच्चे तो खैर लड़कियां तो
0: जी
1: रोने भी लग जाती है कई
0: जी
1: बार,
0: जी
1: महिलाएं भी बहुत ज्यादा इस
0: जी
1: ब्लीडिंग से परेशान हो जाती
0: जी
1: हैं, और कई कई महीनों तक पीरियड्स नहीं भी आता है, ऐसी
0: जी
1: समस्याओं से भी हम दो चार होते
0: जी
1: हैं। तो इनमें से किन स्थितियों को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए, और कितना सावधान रहना चाहिए, और इसको किस तरह से फेस करना चाहिए?
0: तो जो लड़की जिसका पीरियड रिसेंटली स्टार्ट होता है और एक्सपीरियंस करती है बहुत पेन, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, तो इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, कई लड़कियों को बहुत ज्यादा पेन होता है, कईयों को बिल्कुल नहीं होता है, कईयों को थोड़ा मीडियम होता है, तो अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप पेन किलर कोई भी पैरासिटामोल टाइप दे सकते हैं बच्चे को, ताकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि सबका पेन थ्रेशोल्ड जो है यानी पेन सहन करने की शक्ति भी अलग
1: अलग अलग होती
0: है,
1: है।
0: तो उसके लिए हाँ बिल्कुल मेडिसिन ले सकती है बच्ची, बट ज्यादा पेन किलर्स नहीं खाने, ये मुझे स्ट्रेस करना है, क्योंकि ज्यादा लेने से उनका सेवन करने से कई बार किडनी पे असर आ सकता है, स्पेशली ड्रग लाइक डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर्स में काफी टाइम होता है, तो आपके डॉक्टर डॉक्टर को मिल के ही पेन किलर लें, अगर पैरासिटामोल काफ़ी सेफ है तो वो ले सकते हैं। जो 15-20 साल के बाद की एज के जो पहले पेन नहीं था और अभी बहुत सिवियर होने लगा है, तो डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। तो फाइब्रॉइड्स एक रीजन हो सकता है, और दूसरा एक अभी जो एंडोमेट्रियोसिस एक एंटिटी है, एटलीस्ट हमारे सिटीज में तो

0: काफी बढ़ गई है।
1: तो डॉक्टर साहिबा, इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक गीत सुन लें आपकी पसंद का।
0: जी
1: बताइए।
0: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
1: आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कई बार क्या होता है, लड़कियां या महिलाएं पीरियड्स के दर्द को वर्षों तक एक सामान्य मानकर सहती रहती हैं, जैसा आपने कहा पैरासिटामोल खाई या वर्किंग वीमेन से चली गई जॉब में, लेकिन कब ये दर्द किसी बीमारी की ओर बढ़ जाएगा? तो आजकल जो एंड्रोमेट्रियोसिस जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ये भी इस तरह की बीमारी भी देखने में आ रही है, तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए।
1: तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक साइंस अच्छी तरह से पता नहीं कर पाया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो इसके कारण भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, मतलब एक कोई एक रीजन नहीं बताया कि मे भी ये हो सकता है, मे भी ये हो सकता है वैसे। तो उसमें से एक कारण शायद सब लोग समझ पाए, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यूट्रस के साइड पे दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो ओवरीज में से जो अंडा निकलता है वो फेलोपियन ट्यूब्स पिकअप कर लेती हैं। तो जब वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो वजाइना से बाहर आता है, वैसे ही थोड़ा बहुत ब्लड थ्रू द ट्यूब्स एब्डोमिन में चला जाता है, यानी ओवरी पे एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो एंडोमेट्रियम जो बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियल टिश्यू अगर ओवरी में है या यूट्रस के सरफेस पे है, तो ये जब हर महीने वो एंडोमेट्रियल टिश्यू ड्यूरिंग पीरियड्स वो ब्लीड होता है, तो फिर वो गांठ हो सकती है ओवरीज पे, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, या यूट्रस के सरफेस पे वो गांठ हो सकती है, यानी पीरियड्स में वो ब्लड जमा होने लगता है, जिसके कारण वो सिवियर पेन हो सकता है पेशेंट को, और उसके कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ सोनोग्राफी, समटाइम्स इवन अ MRI, मतलब बहुत अगर पेन है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करके एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट
0: जरूरी है। इसे केवल एक साधारण दर्द समझकर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इसके साथ ही डॉक्टर साहिबा, महिलाओं से जुड़ी एक और समस्या आती है, ल्यूकोमिया, जिसे हम सफेद पानी है ना सामान्य भाषा में कहते हैं, या खुजली है उस स्थान पर, जलन होना, या असामान्य स्राव, ज्यादा रक्त स्राव होता है, ऐसी समस्याओं को लेकर भी हमें डॉक्टर के पास जाकर बताने में बहुत झिझक महसूस होती है, और हम इसे दबाते चले जाते हैं या इसको झेलते चले जाते हैं, तो कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है?
1: तो इसके लिए पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो वाइट डिस्चार्ज जो ल्यूकोरिया बोलते हैं, टू सम सर्टेन एक्सटेंट ये नॉर्मल है पीरियड के पहले।
0: अच्छा।
1: और ओवुलेशन के टाइम पे, जो मैंने बोला ना कि पीरियड के 14वें दिन या 15वें दिन जब अंडा फूटता है, उसके पहले थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज जाना, ये दोनों टाइम में नॉर्मल है। तो अगर वाइट डिस्चार्ज में अगर स्मेल नहीं है, इचिंग नहीं है, तो वो वरीसम नहीं है, स्पेशली अगर पीरियड के पहले या मिड पीरियड, मतलब मिड साइकिल में है। बट अगर बहुत बहुत बास आ रही है, या बहुत यस बदबू आना, या बहुत इचिंग होना, यानी बहुत खुजली जैसा वहां पे आना, अगर ये हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
0: तो ये जो समस्या हम जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं, किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है?
1: जी, डेफिनेटली हो सकती है, कोई भी एज में, यंग एज से लेके मिडिल एज से लेके इवन पोस्ट मेनोपॉज हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: उसमें एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर।
0: अच्छा। जो एक आम समस्या है।
1: यस, इंडिया में ऑलमोस्ट 200 वुमेन आर डाइंग ऑफ दिस कैंसर एवरी डे। मतलब ये सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है, खास करके विलेजेस में।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, स्पेशली मिक्स्ड विद ब्लड अगर,
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी,
1: तो इमिजिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, और वो कोई भी एज में, मतलब सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद अगर ये समस्या आ रही है, तो ये 100% आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर ये मिक्स्ड विद ब्लड है।
0: जिस तरह की झिझक या समस्या को लेकर हम बैठ जाते हैं, ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होता।
1: जी, बिल्कुल।
0: एक गीत आपसे सुनेंगे, लेकिन चूंकि बात बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चल रही है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था फाइब्रॉइड का, कि महिलाओं के गर्भाशय में एक गांठ है जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, ये भी एक आम समस्या की,
1: ये बहुत ही आम
0: समस्या है। तो ये एक सामान्य है, या हमें सचेत हो जाना चाहिए, या कई बार ऐसा मानते हैं कि पीरियड्स में जो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से ये फाइब्रॉइड की समस्या सामने आती है?
1: नहीं, फाइब्रॉइड बेसिकली जो यूट्रस का जो मसल है, इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर ग्रोथ, ये एक नॉन कैंसरस, यानी ये कैंसर नहीं है, ये ग्रोथ है, एक गांठ है, लेकिन जो बहुत रेयर है कैंसर होना, यानी 1,00,000 फाइब्रॉइड में एक कैंसर मतलब हो सकता है, तो मतलब प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम उसको नॉन कैंसरस बोलते हैं फाइब्रॉइड्स। तो जो मसल में जब ये जो गांठ बनने लगती है, तो डिपेंडिंग ऑन जो गांठ कहाँ पे है, अगर यूट्राइन कैविटी के अंदर है, यानी जहाँ एंडोमेट्रियम है जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, मसल के अंदर है तो उसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, यूट्रस के बाहर है तो सबसीरोसल फाइब्रॉइड बोलते हैं,

0: तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के. तो फाइब्रॉइड्स के कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव पेन होना, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज और बैक एक. अगर ये सिम्टम्स हैं तो फाइब्रॉइड हो सकता है पेशेंट को. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड लोकेशन, कई बार बड़े फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बाहर हैं तो इतना तकलीफ नहीं देते हैं.
1: अच्छा.
0: कई बार बहुत छोटे फाइब्रॉइड्स हैं लेकिन यूट्रस के अंदर के साइड पे हैं, बहुत छोटे, मे बी इवन 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, वो बहुत तकलीफ दे सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड्स हैं तो उसको निकालना ही चाहिए. ये भी मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं कि फाइब्रॉइड है तो मुझे थैली निकालने को बोला है. नो, आपके सिम्टम्स क्या है, आपकी साइज क्या है फाइब्रॉइड्स की,
1: कहाँ में है,
0: कहाँ पे, लोकेशन कहाँ है, वो सब देख के फिर डिसीजन लिया जाता है कि गांठ निकालनी जरूरी है या यूट्रस निकालना जरूरी है.
1: तो कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहिबा कि ऐसी स्थिति में बच्चा पैदा नहीं हो सकता है या स्त्री जो है गर्भधारण नहीं कर पाती है, ये समस्या भी आती है.
0: मैंने जो बोला यूट्रस की लाइनिंग के अंदर जब होता है तो इट कैन एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी. जैसे हम कॉपर्टी, जब बच्चा नहीं चाहिए तो कॉपर्टी डालते हैं, कॉपर्टी एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी और बच्चे को इम्प्लांट, मतलब एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने से प्रिवेंट करती है, यानी गर्भ निरोधक होता है. वैसे ही अगर फाइब्रॉइड जो है, अगर यूट्रस के कैविटी के अंदर है, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं या सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो उसके कारण बच्चा नहीं होने का कारण हो सकता है या रिकरेंट अबॉर्शन भी हो सकते हैं.
1: तो इसलिए सचेत हो जाना चाहिए और जैसे ही हमें लक्षण मिलते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज हमें.
0: ये अबॉर्शन का भी कारण बन सकता है, यानी गर्भ नहीं रुकना या घड़ी घड़ी, यू नो, 1.5 महीना 2 महीने में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, ये भी कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का.
1: जी, तो एक गंभीर समस्या बन सकती
0: बन सकती है, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कैंसर नहीं है
1: नहीं.
0: तो डरना नहीं है.
1: इलाज संभव है इसका.
0: यस, इलाज संभव है और जरूरी नहीं है कि सब फाइब्रॉइड्स को हमको ट्रीट ही करना है, हम बस उन पे नजर रखें, ऐसा भी कर सकते हैं.
1: जी, तो चलिए गीत सुन लेते हैं.
0: जी
1: बताइए.
0: आपकी नजरों ने समझा
1: प्यार के काबिल मुझे, बहुत सुंदर गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अनपढ़.

सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पीसीओडी और आईवीएफ। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: वादा,
3: हाँ जी वादा।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसार

0: करण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार प्रियांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं

0: जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

0: ये आवाज़ें थी उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की, शायर नसीम रिफत, संगीत ललित का और एल्बम आगोश।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आंखों में तेरा ही चेहरा, ये एल्बम का नाम है। आवाज और गीत जय वालिया का, संगीत ललित का।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी आशा, इस एल्बम का गाना आशा भोसले की आवाज में, बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के।

0: तरंग।
1: पिनाज मसानी की आवाज है, शायर है गालिब, संगीत मधुरानी का एल्बम आपकी बज्म में।

रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाजों में। कुणाल वर्मा का लिखा हुआ गाना, पायल देव का संगीत, एल्बम का नाम है दिल लौटा दो।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में यह गीत आपने सुना, दिल झूम झूम नाचे, इस एल्बम का गाना, गीत और संगीत ललित सेन का। इसी के साथ आज का रंग तरंग ये कार्यक्रम संपन्न होता है। रंग

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।
1: PERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने।
2: लिखते हैं, शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है।
0: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने लिखा है। अजीत जी, विमलेश जी, सादर नमस्कार।
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस, संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया। इतनी कम उम्र में देश की आजादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है। ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का।
0: और वो लिखते हैं, प्रिय उद्घोषक जी, मन ला राम राम जय जोहर पहुँचे। उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगा थे। शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहें, ये सब बात बताते। हमरा बहुत सुंदर लगत। एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे।
2: हमें दिनांक 28 अगस्त 2026 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया, जिसमें आपने कहानी सुनाई। वो कहानी थी बुद्धिमान किसान। हमें बेहद अच्छी लगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये सुनवाने के लिए मैं NCERT उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है
2: जी।
0: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, भारत के बहादुर बच्चे।
2: जी हाँ श्रोताओं, इस श्रृंखला के दो एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के दो ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
0: तो आज सुनिए श्रोताओं, एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया।
2: श्रोता, उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था।
0: मित्रों, ये घटना है 12 मई 1997 की। मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलांग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई।
2: ओ, क्या हुआ था?
0: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। किशन तैरना नहीं जानता था, वो पानी में डूबने लगा।
2: श्रोताओं, मेघराज तैरना जानता था। उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था किशन तैर नहीं सकता है। मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया।
0: लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में
2: जी,
0: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा?
2: अजीत जी, स्वाभाविक तो है, थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना।
0: तो विमलेश जी, क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया?
2: जी, वो बचा पाया। पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। किशन की जान बच गई।
0: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा?
2: नहीं अजीत जी, यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है। मेघराज ने किशन को तो बचा लिया, लेकिन बचाते समय मेघराज का पैर चट्टानों के बीच में फंस गया।
0: ओह,
2: वो स्वयं पानी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
0: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी जान दे दी।
2: एक 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया
2: जी।
0: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने उनकी माता को ये पुरस्कार प्रदान किया।
2: जी
0: आइए श्रोताओं, अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश या सीख मिलती है।
2: जी, तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है। कहावत है ना, सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है।
0: श्रोताओं, मेघराज की कहानी केवल बहादुरी की नहीं बल्कि मित्रता और जिम्मेदारी की कहानी भी है।
2: बिल्कुल सही कहा जीत जी, बालक मेघराज ने हमें दिखाया कि किसी दूसरे के जीवन को बचाने की भावना कितनी महान हो सकती है।
0: जी, कुछ जीवन लंबे नहीं होते लेकिन उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। बालक मेघराज केवल 13 वर्ष जिया लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसा काम किया जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी साहसी बालक मेघराज के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: आज का प्रश्न है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किन के द्वारा और किसे दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किन के द्वारा और किसे दिया गया?
0: तो 8800044559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: जी,
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी।
3: अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था,
4: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। हाँ।
3: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
4: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा।
3: वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के

0: ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा,
1: है? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
0: उसने नम्रता से उत्तर दिया,
2: महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा।
0: बादशाह ने कहा,
3: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
0: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले,
3: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
0: जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा,
1: बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है।
0: बीरबल ने उत्तर दिया,
1: हुजूर, अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
0: अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
5: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है, और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थी जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थी।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: रामसिंह,
3: हाँ
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?

0: मुझे लगता है कुछ कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
1: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
2: जी सर।
1: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
2: जी सर।
1: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
2: जी सर।
1: जय हिंद।
2: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रही। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग ला की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चा बंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया।

0: और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
1: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो, तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर! फायर! कालिका माता की
2: जय!
1: भारत माता की
2: जय!
1: फायर!
3: आगे बढ़ो।
4: साहब, वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
5: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
4: जी सर।
0: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
6: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
0: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया।
1: पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और पक्षा लाके देता हूँ। फायर! हुकुम सिंह
4: जी सर,
1: एलएमजी सवाल फायर कर, राइट साइड पे फायर कर।
6: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
0: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
4: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं। कितना खून बह रहा है। आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
5: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ। मशीन गन लाओ।
4: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
1: अच्छा।
5: सर, तेरी मशीन गन। हुकुम सिंह, एक काम करो
4: जी,
5: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
4: जी सर।
5: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को, जल्दी करो।
4: जी सर।
5: बांध दिया सर, ठीक से बांध गई रस्सी ट्रिगर के साथ। इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो, जल्दी टाइट खींच कर, खींच के इस तरफ ले। हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
4: जी सर।
5: भारत माता की जय! भारत माता की जय!
6: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
4: संभल कर, संभल कर।
5: सब यहां सर टिका लीजिए।
2: कालिका माता की जय।
0: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगे। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
2: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस। फायर, फायर।
0: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया।
2: साथियों, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यही छोड़ दो।
5: साहब,
2: तुम लोग आगे निकलो।
4: साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
2: नहीं, बात को समझो। अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
4: नहीं साहब।
2: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
4: नहीं साहब, नहीं।
2: यहां देख, इट्स एन ऑर्डर
4: सर।
2: जाओ, अलविदा। अलविदा दोस्तों, अलविदा भारत माता की।
6: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांगला घाटी से गुजर रहा था तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
0: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
3: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
0: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
6: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजान ला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक

0: के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूँ।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांग ला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,
3: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे।

0: प्रभात, बहुत
1: बड़ी तालियां उनके लिए।
2: आकाश दीप फिल्म का गाना लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है चित्रगुप्त का।

शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया ये गाना, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम आन।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की

दिलाया मैं बचा के पंजाब से, कितना प्यार देखो मुझको जनाब।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए अलबेला फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और इसकी धुन बनाई श्री रामचंद्र ने।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अब आपको सुनवाते हैं तलत महमूद की आवाज में आरजू फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई अनिल बिस्वास ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख

0: छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया, उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आस का पंछी, इस फिल्म से सुबीर सेन की आवाज, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूं मैं मंजू द्विवेदी। आज सबसे पहले आपको जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो पढ़ के सुना देते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने तो पढ़ ली है और पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें लिख भेजी है। पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं। कहते हैं कि हंसने हंसाने से हमारी और हमारे दिल की सेहत अच्छी रहती है। हंसता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है। किसी को हंसाना ये बड़ा कठिन काम है, पर कुछ लोगों को इसमें महारत हासिल होती है। जी हाँ, कुछ लोगों को इसमें महारत हासिल होती है। जीवन में अगर हंसी का खजाना ना हो तो जीवन खाली डिब्बे की तरह होता है। जो दिल वाले होते हैं, हमारे चाहने वाले होते हैं, उनके लिए रुपया सबसे बड़ा नहीं होता, बल्कि उनके लिए तो किसी की सादगी, किसी का बांकपन दिल पर तीर चला देता है। कोई चतुर जब हंस की चाल चलता है तो भी माहौल ठहाकों वाला हो जाता है। कभी कुछ अटपटे और चटपटे शब्द जब घोड़ा गाड़ी या रिक्शा निराली पर लिखे हों तो भी हंसी आ जाती है ना। तो बताइए, किसने चुराई है आपकी निंदिया? ये है आज की इबारत या टेक्स्ट, जिसमें बहुत सारे शब्द छुपे हैं, जिसमें बहुत सारे गाने छुपे हैं। और विषय की अगर बात करें तो आज अभिनेता महमूद को हम याद कर रहे हैं। और आज विश्व हृदय दिवस भी है। हृदय यानी कि दिल, दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो हम सुन भी रहे हैं कि दिल ने धोखा दे दिया, या दिल हमारे वश में नहीं रहा, दिल पर काबू नहीं रहा, दिल ने अचानक ये कर दिया, वो कर दिया। तो बहुत सारी बातें हैं दिल को लेकर, हृदय को लेकर। तो अपने हृदय का, अपने दिल का ख्याल रखिए। और भी बहुत सारे सवाल हमारे होंगे आगे, लेकिन एक साथी की ये बात आपको पढ़ के सबसे पहले सुना देते हैं कि हंसना और हंसाना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्मा का उल्लास है। बिना हंसी या मुस्कुराहट के जीवन को नीरस, रसहीन

0: या मूर्छित कहा गया है। हंसी के बिना मानव पाषाण हृदय के स्वरूप हो जाता है, जिसमें संवेदनाओं और भावनाओं के अंकुर नहीं फूटते। जैसे वर्षों से कोई भूमि बंजर पड़ी हो, श्रृंगार रस में मुस्कान लिए हुए चेहरे की सुंदरता के लिए अनेकों उपमाएं हैं। कहीं पर खिलते हुए कमल या दामिनी से चपलता, कहीं चांद सा रोशन चेहरा जैसे शब्द गढ़े गए हैं। मुस्कान हंसी आंतरिक सौंदर्य का बाह्य प्रकटीकरण है। दूसरों को हंसाना बहुत कठिन होता है, ये उत्कृष्ट कला और साधना है। जी हाँ, ये कला है जो बहुत कम लोगों में होती है। तो हो सके तो आप भी किसी के चेहरे पर हंसी लाइए, मुस्कराहट लाइए, किसी के हंसने की वजह बनिए और फिर देखिए आपके चेहरे पर अपने आप हंसी या मुस्कराहट आ जाएगी और उससे आपके दिल की सेहत भी तो अच्छी रहेगी ना। चलिए गीत सुनते हैं। नीलकमल फिल्म का ये गाना सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे। मन्ना डे की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत।
1: खाली डब्बा, खाली बोतल।

एक साथी की बात है कि आज तो सुरीला सफर हम सब हंसते हंसाते तय करने वाले हैं। आज कॉमेडी किंग महमूद जी की याद का दिन है, उनको मेरा शत शत नमन। हंसना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितनी कि श्वास लेना। हंसने से तनाव दूर होता है, पॉजिटिविटी आती है और मानसिक शांति एवं ऊर्जा का संचार होता है। यदि हम किसी रोते हुए को हंसा देते हैं तो दिल को बेहद सुकून और खुशी मिलती है। हंसते गाते कट जाए ये दिन। और एक साथी लिख रहे हैं कि हास्य अभिनेता महमूद जितने बेहतरीन कॉमेडियन थे उतने ही गहरे भावुक अभिनेता थे। फिल्म कुंवारा बाप में एक दिव्यांग बच्चे के गरीब पिता के रूप में उनके मार्मिक अभिनय ने हर दर्शक की आंखें नम कर दी थी। महमूद सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक संपूर्ण कलाकार थे। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो दिल की और हंसने हंसाने की बात ही होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले धर्म पत्नी पास बैठकर बोली कि सगाई के बाद और शादी के शुरू के दिनों में आप दिल से मेरी कितनी तारीफ करते थे। मैंने कहा कि वो तो अभी भी मैं कहता हूँ। फिर धर्म पत्नी ने कहा कि पहले ज्यादा तारीफ करते थे, तो मैंने कहा देखो जब हम नया मोबाइल लाते हैं शुरू करते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। चलिए आज हंसने हंसाने की बातें भी हैं और दिल की सेहत की बातें भी है। तो आज हम आपसे विश्व हृदय दिवस पर ये पूछना चाहते हैं कि आजकल लोगों के हृदय की जो सेहत है वो गिरती चली जा रही है, तो आपको क्या कारण नजर आते हैं और किस तरह से हृदय की सेहत को हम पहले की तरह अब भी ठीक रख सकते हैं, इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो आप हमें बताइए। और चलिए अगला गाना आपको सुनवाते हैं, जौहर महमूद इन गोवा, इस फिल्म का ये गाना है। मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि मैं अपनी योग क्लास में रोज हास्यासन करवाती हूँ, पहले नकली हंसी लेकिन बाद में वो असली हंसी में परिवर्तित हो जाती है। दिल को दुरुस्त रखने वाले आसन भी हम लोग डेली करते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। और आज सुरीला सफ़र की प्रस्तुति जो है उसमें इस तरह के गीतों की इन्होंने बात की है। और लिखा है कि आज सुबह मैं 8 बजे जो उठा हूँ दिन के, तो उसके बाद मैं अब हंस सका हूँ, अच्छा लग रहा है। अध्यापक को भी वर्ग में थोड़ा बहुत बच्चों के साथ हास्य और विनोद करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सच खाली में ही तो समूचा विश्व ही अवस्थित है। और ये खालीपन तो सभी के हृदय में पाया ही जाता है, सोचिए अगर ये खालीपन नहीं रहता तो फिर हम कहाँ रहते। जी, आपकी ये बात है। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि हंसना सेहत के लिए और ख़ास करके हृदय के लिए बहुत लाभदायक है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर हंसते रहते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हंसते नहीं। उनको पूछना पड़ता है कि तेरी हंसी की कीमत क्या है बता दे तू। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, महमूद जी अपना मेहनताना मुख्य अभिनेता से केवल 1 रुपये कम लेते थे। उनका किसी भी फिल्म में किरदार जो भी रहे, पूरी फिल्म की जान रहते थे। और फिल्म में कॉमेडी तो को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी किया है। जी हाँ, धन्यवाद आपको। चलिए अब सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। महमूद और साथियों की आवाज़ें हैं और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। संगीत किसका है अगर आपको पता है तो हमें बताइए।

मीटिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप।

रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। The whole thing is that के भैया सबसे

हॉकी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन, आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सत्य।

सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत बासु मनोहारी का। अब आपको तय करना है कि सबसे बड़ा क्या है आपके जीवन में, रुपया, पैसा, सेहत, हंसी या खुशी, या आपने सगे संबंधी। चलिए, महमूद विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज हमारे खान पान में शुद्धता की कमी है और लोग अक्सर खाद्य पदार्थों के पैकेट पर दी गई जरूरी जानकारी को अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल के बारे में, जिससे दिल के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आजकल के रहन सहन का तरीका बहुत तनावपूर्ण रहता है, खान पान भी ठीक नहीं होता है, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, मनोरंजन में कमी मिलकर तनावपूर्ण जीवन बनाते हैं, फिर दिल के डायबिटीज आदि रोग भी हो जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ मानव प्राणी ही ऐसा है जो हंस सकता है, और पड़ोसन एक चतुर नारी है जो हमें हंसाती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे शरीर में जो कोई सबसे ज्यादा प्रामाणिक अवयव है वो हृदय है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हमारी रक्षा करता है। विमान में 4 इंजन लगाए जाते हैं, लेकिन भगवान ने हृदय में 6 गुना ज्यादा ताकतवर बनाया है। एक साथी लिख रही है कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं, सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लाफ्टर क्लब की जरूरत पड़े उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लीजिए। जी हाँ, हंस लीजिए। हम आज अभिनेता महमूद को याद कर रहे हैं, उनके द्वारा जो एक हास्य कलाकार के रूप में उन्हें ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन उन्होंने और भी मतलब अभिनय के क्षेत्र में जो है उन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि दूसरी तरह की जो भूमिका है उन्हें भी उन्होंने बहुत संजीदगी से पूरा किया है या निभाया है। चलिए, शबनम फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, जावेद अनवर के बोल हैं, संगीत है उषा खन्ना का।

बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि सबसे बड़ा धन तो अपना स्वास्थ्य होता है, हेल्थ इज वेल्थ। सेहत अच्छा है तो आप धन कमा सकते हैं, पर धन से आप सेहत नहीं खरीद सकते। ये बात हमारे एक साथी ने लिखी है जो हमने आपको पढ़ के सुनाए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सुबह सुबह गैस सिलेंडर खत्म हो गया। जब मैं सिलेंडर बदलने के लिए नया सिलेंडर लेने लगी तो पतिदेव ने पूछा कि क्या गैस खत्म हो गया है, तो मैंने कहा नहीं, इस वाले सिलेंडर को घुमाने ले जा रही हूँ। फिर दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े और दिन बन गया। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अनिद्रा सबसे बड़ा कारण है दिल के लिए। जब भी रात को नींद ना आए तो लंबी लंबी सांस ले और श्वासासन में थोड़ी देर लेटे और मोबाइल से तो दूरी ही बना ले तो आपको लाभ अवश्य होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आज जो आपने टॉपिक लिया है बड़ा अच्छा है, हंसना मुस्कुराना और अपने दिल का ख्याल रखना, ये जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत हो गई है। सबसे बड़ा रुपया, इस गाने पर मुझे याद आ गया कि कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हम लोगों ने, चार पांच लड़कियों ने मिलकर इस गाने पर डांस किया था। वो फोटो आज भी देखती हूँ तो अपने आप चेहरे पर हंसी आ जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अब हृदय को पहले की तरह स्वस्थ नहीं रख सकते हृदय, क्योंकि हृदय ही क्यों बल्कि पूरे शरीर को ही नहीं रख सकते, क्योंकि अब वो चूल्हे की रोटी नहीं खा सकते। अब तो गैस आ गई है जिससे पेट में गैस बनना शुरू हो गई, और पहले की तरह फिट रहना एक सपना है। यदि व्यक्ति गैस की पकी रोटियां खाना बंद कर दे तो स्वास्थ्य पुनः लौट आएगा, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि आजकल कोई कुछ करना नहीं चाहता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल की दुनिया में हंसी और चाहत का अपना ही रंग है। किसी की मुस्कुराहट दिल को सुकून देती है, किसी की सादगी मन को छू जाती है, और किसी का माकपन दिल पर तीर सा असर कर जाता है। अपनों के साथ हंसी के ठहाके जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं। कभी अटपटे चटपटे पल भी चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। इसी के साथ एक सवाल और मैं आपके हवाले करती हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात बात पर बहुत हंसता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी मुस्कुराता नहीं है? चाहे कितनी ही हंसी की बात हो, वो न कभी हंसते हैं न मुस्कुराते हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में, बताइएगा। चलिए अगला गाना गुमनाम फिल्म से, मोहम्मद रफी और महमूद की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, महमूद और हेलन पर फिल्माया गया ये गाना।

काले हैं तो

आतई चंदाना क्यों पास न आतई चंदाना जा मारिए बाता चंदाना दिल तोड़िए घाता चंदाना तो मैं किधर को जाता चंदाना क्यों पास न आतई चंदाना जा मारिए बाता चंदाना दिल तोड़िए घाता

0: पाका नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी
1: गुमनाम फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जो बिल्कुल हंसते नहीं, ऐसे लोग तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हमारे परिवार में हम सब हंसते हंसाते रहते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि परिवार में है तो मैं रिश्ते की बात नहीं करूंगी, शायद रेडियो पर सुन ले तो संबंध खराब हो जाएगा, पर 40-42 सालों से मैंने कभी उन्हें ठहा के लगाकर हंसते हुए नहीं सुना। अगर वो कभी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो सोचती हूँ कि आज निश्चित कुछ अजीब होने वाला है। परिवार के लोग उनके इस एटीट्यूड से वाकिफ है और पीछे से जो है उनके बारे में ये बात भी होती है। तो आज कुछ अच्छी बात हो तो 1-1.5 इंच वो मुस्कराएंगे जरूर। एक साथी ये लिख रहे हैं कि अक्सर बहुत से कॉमेडियन की असली जीवन जो है वो बहुत तनावपूर्ण रहता है, दूसरों को हंसाकर खुद अंदर से वो दुखी रह होते हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गुजराती मुहावरा है कि हंसे तेनु घर वसे, मतलब जो सदा हंसता मुस्कुराता रहता है उसका घर आसानी से बस जाता है। वैसे अच्छी तंदुरुस्ती यानी सेहत के लिए हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है, भले ही वो अपने मित्र सगे संबंधी हो या कोई और हो। एक साथी ने ये बात लिखी कि महमूद अपने पूरे शरीर से अभिनय करते थे। एक समय ऐसा था कि वे पर्दे पर आते और हंसी का जो दौर दर्शकों के मन में चलता वो खत्म ही न होता। एक जमाना तो ऐसा था महमूद अकेले अपने दम पर पर्दे तक दर्शकों को खींच कर ले आते थे। वैसे तो फिल्मी दुनिया के पिटारे में अनेक हास्य कलाकार आए और गए, मगर महमूद एक रत्न थे। वे उस अनमोल मोती की तरह थे जो हर फिल्म निर्माता अपनी अंगुली में पहनना चाहता था। ऐसे रत्न सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आरती फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें मजरू।

गीत सुनते सुनते और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं ये पढ़ते पढ़ते गीत कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और बहुत सारे कमेंट्स हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बिहार में कहते हैं कि हंसे तो फंसे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हंसिए मत। किसी की नाकामियों पर, शारीरिक दुर्बलता पर मजाक उड़ाते हुए मत हंसी, ऐसी हंसी किस काम की। जी हाँ, किसी के ऊपर हंसने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी की कमियों पर हंसे, हंसे हंसने वाली बातों पर हंसे, या अपनी ही किसी गलती पर हंसे, या कोई मूर्खतापूर्ण कार्य जब हम स्वयं कर लेते हैं तो हमें अपने आप पर हंसी आ जाती, हम उस हंसी की बात कर रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने का हंसने के अलावा एक और बहुत ही दिल के लिए लाभदायक बात है, वो है अपने हृदय में कोई भी बात दबाना नहीं चाहिए, कह डालना चाहिए। हृदय हल्का भी होगा और स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, साथ में विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम का आनंद भी हम ले सकते हैं।

और एक साथी की ये बात है कि खुशी से खिला हुआ चेहरा सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि दिल दिमाग और शरीर का हर अंग खिल जाता है। पता नहीं हम हंसने में भी कंजूसी क्यों कर देते हैं, पहले हम खुद मुस्कुराएं तभी तो हम दूसरों के होठों पर मुस्कान ला पाएंगे। एक साथी ये लिख रहे हैं कि एक वाक्य याद आ गया जो विविध भारती पर किसी प्रोग्राम में सुना था कि महमूद साहब के घर पर कोई पार्टी हो रही थी जिसमें जूनियर महमूद साहब को नहीं बुलाया, उन्हें पार्टी में जूनियर महमूद साहब बिना बुलाए पहुंच गए वैसी टी शर्ट और ड्रेस पहन कर जैसी महमूद साहब ने पहन रखी थी इस गीत में, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, इस गीत में जो पहन रखी और ये गीत गाने लगे बस फिर क्या था, महमूद साहब ने जूनियर महमूद को अपने गले से लगा लिया। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि हंसना केवल होठों का व्यापार नहीं आत्मा की औषधि है, जो व्यक्ति हंसना जानता है वो दुखों में भी रास्ता निकाल लेता है और जो हंसाना जानता है वो दूसरों के जीवन में दिया जला देता है। तनाव बीमारी अकेलेपन से भरी इस भागदौड़ भरे जीवन में एक सच्ची हंसी दिल हल्का कर देती है और रिश्तों में जमी धूल को साफ कर देती है। हंसने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता और हंसाने वाला व्यक्ति कभी भुलाया नहीं जाता, इसलिए हंसिए ताकि आपका मन स्वस्थ रहे और हंसाइए ताकि आपका होना दूसरों के लिए उत्सव बन जाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बचपन में जब छोटे थे तो कक्षा 8वीं में था तो मेरे क्लास टीचर बहुत ही अच्छे थे, उनके चेहरे पर हमेशा हंसी ही दिखाई देती थी, चाहे वो हमें मारते भी थे लेकिन उस मार के पीछे भी एक हंसी छुपी रहती थी, और हमारे प्राचार्य थे उनको कभी भी हमने हंसते हुए नहीं देखा था। तो ये बातें हमारे साथियों की है और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा गीत हम सुनने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, जितनी भी बार ये गीत सुनो चेहरे पर हंसी आए बिना नहीं रहती। सुनिए ये गाना।

एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम, हंसत जात अरे।

पड़ोसन फिल्म का ये गाना अभी हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि हृदय प्रसन्न कर दिया आपने चतुर नार, ये गाना सुनवा के, जो कि पड़ोसन फिल्म से हमने सुना। और एक साथी लिख रहे हैं कि मैं तो हंसता हूँ अपने हालातों पर, क्योंकि लोग कहते हैं कि हंसने वाले लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, एक पड़ोसी थे जो किसी को हंसते हंसाते या बच्चों को खेलते हुए देख करके बहुत भड़क जाते थे। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मेरे जो पति हैं बहुत कम ठहाका लगाकर हंसते हैं, बहुत सीरियस वो रहते हैं। और एक ये भी लिखा है साथी ने कि पड़ोस में बहुत पहले एक परिवार आया था, उसमें उनकी जो श्रीमती जी बहुत हंसमुख थी, और जब भी मिलती थी तो ऐसा लगता था कि वो अभी हंस देंगी या जो है एक स्माइल एक दे देंगी, इस तरह की बात इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हंसना हंसाना एक कला है, किसी किसी को ये इसमें महारत हासिल होती है। कई कलाकार हैं जो दूसरों को आसानी से हंसा देते हैं, महमूद जी भी उनमें से एक हैं जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। हंसना सेहत के लिए ज़रूरी है, जिसमें शरीर में उत्पन्न तनाव को वो दूर करता है, आंतरिक खुशी मिलती है। और कुछ गानों का जिक्र उन्होंने किया है। चलिए अगला गाना बेटी बेटे इस फिल्म से।

एक साथी ने ये बात लिखी कि दिल में खुशी और सुकून हो तो चेहरे की मुस्कान और भी खूबसूरत हो जाती है, और बस यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए, आपके मुस्कान किसी के दिल में उजाला कर सकती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ हुई भारी बरसात से बिजली आपूर्ति 5 दिन से बाधित है, किसी तरह मोबाइल चार्ज कराकर विविध भारती के कार्यक्रमों को हम सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपका ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है विविध भारती से, बस ये मोहब्बत हमारे दिल में घर कर जाती है, दिल तक पहुंचती है कि चाहे हालात कुछ भी हो, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम किसी तरह विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकें। धन्यवाद आपका इस प्रयास के लिए। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि मेरा ये जो अभी गाना हमने सुना ना पड़ोसन फिल्म का, एक चतुर नार बड़ी होशियार, इस गाने के बारे में उन्होंने लिखा है कि मेरा खुद का नाम चतुर है और इस गाने में गाने की वजह से मेरे दोस्त जो हैं वो हमेशा ये हम फरमाइश करते थे कि चतुर नार करके सिंगार ये गाना आप गुनगुना कर सुनाइए, और मैं उन्हें गुनगुना कर सुनाता हूँ, गाकर सुनाता हूँ और मन ही मन बहुत खुश भी होता हूँ। चलिए, आपकी खुशी हमारे लिए बहुत अनमोल है। और अब हम आपको दो फूल इस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आशा भोंसले और महमूद की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: एक साथी की ये बात है कि हृदय के स्पंदन को हृदयंगम कर हृदय हेतु हंसिए और हंसाइए। हृदय की अदला बदली सिर्फ प्रेम और साहित्य में होती है, भौतिकी नहीं। विश्व हृदय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिल आपके पास ही रहेगा, कोई और नहीं ले सकता, अतः उसकी सुरक्षा संरक्षण आपके ही हाथों में है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अपने दिल का ख्याल रखना, अपने दिलों को जोड़ना, इसका ध्यान रखिए। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, कुंवारा बाप इस फिल्म का गाना।
1: Oh, yeah.

हंसते हंसाते रहिए और अपने हृदय के अपने दिल की सेहत का ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। एक खूबसूरत सा शब्द है हृदय। छोटा सा शब्द है लेकिन इसमें हमारी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी है। दिल खुश होता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, दिल उदास होता है तो आंखें नम हो जाती हैं। किसी अपने की एक छोटी सी बात भी दिल को छू जाती है। लेकिन यह दिल केवल भावनाओं का केंद्र नहीं है। हमारे शरीर में मौजूद हृदय हर पल हर क्षण हमारे लिए काम करता है। हम जाग रहे हों या सो रहे हों, खुश हों या परेशान, दिल अपनी धड़कनों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। इसी अनमोल दिल की सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो आज बातें उसी दिल की, जो कभी किसी की खूबसूरती देखता है, कभी किसी के प्यार में धड़कता है और कभी किसी की याद में टूट जाता है। और जब बात दिल की हो तो चेहरे से ज्यादा दिल को देखना ही शायद सबसे जरूरी है। दिल को

चेहरा तो वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन दिल की अच्छाई लंबे समय तक याद रहती है। कुछ ऐसा ही हमारे स्वास्थ्य के साथ भी है। हम बाहर से अपने आप को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त देखते हैं, लेकिन अंदर हमारा दिल किस हालत में है, इसका पता लगाना भी उतना ही जरूरी है। आज की जीवन शैली में हर काम की भागदौड़ में अपने खाने पीने, नींद, व्यायाम और मानसिक सुकून को अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। तनाव को सामान्य मान लेते हैं और शरीर के संकेतों को टालते रहते हैं। दिल की देखभाल के लिए बहुत बड़े बदलाव हमेशा जरूरी नहीं होते। रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी शारीरिक सक्रियता, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, तनाव को कम करने की कोशिश और अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात, दिल का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी है। कभी कभी हम मन में इतनी सारी बातें दबा लेते हैं जैसे दिल के अंदर भी एक गिरह पड़ जाती है। किसी से बात कर लेना, अपनी मन की बात कह देना, थोड़ा गुनगुना लेना, मुस्कुरा लेना, मन शायद ऐसी ही कितनी गिरहें खोल देता है।

खूबसूरत बात है, दिल की गिरह खोलने के लिए एक गीत भी काफी हो सकता है। संगीत हमारे मन के बहुत करीब होता है, कभी खुशी में साथ देता है, कभी अकेलेपन में साथी बन जाता है, और कभी हमारे उन एहसासों को आवाज देता है जिन्हें हम शब्दों में नहीं कह पाते। और दिल की बात हो तो रिश्तों का जिक्र भी होना ही है, क्योंकि किसी का प्यार दिल को सुकून देता है तो किसी की बेरुखी वही दिल तोड़ भी देती है। दिल टूटने का दर्द शायद हर इंसान ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, लेकिन जिंदगी की खूबसूरती यही है कि दिल टूटने के बाद भी धड़कता रहता है और हमें फिर से जीना सिखाता है। इसलिए अपने दिल को सिर्फ दुखों की यादों में मत भरिए। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी चीजें चुनते हैं, उसी तरह मन के लिए भी प्यार, दोस्ती, हंसी और सकारात्मकता चुनिए। और अगर कभी कोई दिल तोड़ भी दे तो उस टूटे हुए दिल को हमें संभालना भी सीखना होगा, क्योंकि जिंदगी किसी एक रिश्ते या दुख पर नहीं रुकती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है, देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू

0: ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सर। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वाकप संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है महिला लोगों के लिए। एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वाकअप बोर्ड और वाकअप काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वाकअप बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वाकअप काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कुल्लन लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
4: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
5: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
0: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
6: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना आंचल फिल्म से है। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें, प्रदीप का लिखा हुआ गाना, श्री रामचंद्र का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना है अनार बाला। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और सुबीर सेन की आवाजें, आरसी पंड्या का लिखा हुआ गाना, बुलो सिरानी का संगीत।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब सुनते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, कैफिया आजमी के बोल हैं, संगीत है SD बर्मन का।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा फिल्म का गाना, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, शैलेंद्र ने लिखा है और रविशंकर का संगीत है।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: ये है बाबर फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और संगीत है रोशन का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, इकबाल कुरैशी का संगीतबद्ध किया ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम बिंदिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं कमर जलाल आबादी का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम छलिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में छलिया फिल्म का ये गाना आपने सुना और अब सदाबहार नगरी में कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। बम्बई का बाबू इस फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सखी सहेली कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंजू द्विवेदी
2: और मंजरी वर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर आपके साथ वक्त मिला है कुछ बातें करने का, कुछ विषयों पर चर्चा करने का। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि समय कितना गुजर जाता है जब हमारा मिलना वैसे तो होता है, लेकिन हाँ इस मंच की देखिए अलग ही बात होती है ना। तो हमारे साथी भी इंतजार कर रहे होंगे कि आज तो भाई मंजू जी भी हैं और मंजरी भी और ये लोग क्या दिल की बातें करते हैं ना।
1: बिल्कुल। और देखिए दिल की बातों की आपने बात की तो जब भी मिलते जुलते हैं तो दिल की बातें करते हैं और कर ही लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: कहते हैं कि दिल की बातें कर लेने से मन जो है हल्का हो जाता है और हमें थोड़ा सुकून भी मिलता है कि हमारी सखी ने, हमारे साथी ने, हमारे दोस्त ने, हमारे मित्र ने हमारे दिल की बात सुन ली। हो सकता है वो कोई उस चीज का कोई सोल्यूशन दे सके, कोई उसका निर्णय निकल सके।
2: बिल्कुल।
1: और एक मन को तो सुकून मिलता ही है, साथ ही साथ हृदय की जो या दिल की जो सेहत है वो भी दुरुस्त रहती है।
2: बिल्कुल दुरुस्त रहती है और बातों का कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाता है।
1: सही बात है। और तो आज फिर विषयों की बात कर लें हम सबसे पहले।
2: हमने तो बातों में आपने दिल की बात करी, उसमें अभी विषय आपने निकाल दिया, तो मैंने कहा भाई मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे दिल से तो कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाएगा।
1: तो तुमने भी विषय की बात
2: कर दी मुहावरों की दुनिया में, है ना।
1: बिल्कुल। तो आज का हमारे जो विषयों में सबसे पहला विषय होगा स्वस्थ दिल लंबा जीवन। चूंकि आज विश्व हृदय दिवस है तो हम दिल की या हृदय की बात करेंगे। और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे महिला उद्यमी अदिति बलबीर की।
2: जी। और इसके साथ हल्की फुल्की बातें में होगा कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाने दे। यानी ये जो सारी चीजें है ना आज की, दिल की बात है, फिर अन्न की बात है और राई के पहाड़ बनाने की बात है, तो ये सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। क्योंकि दिल से हम अगर खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे तो हम पूरा ठीक से खाएंगे, और दिल से नहीं खाएंगे तो हम थोड़ा थाली में छोड़ देंगे, है ना।
1: बिल्कुल
2: जी। तो इस तरह की
1: अन्न को व्यर्थ ना होने दे, जितना जरूरत हो उतना ही बनाए, और अगर बच जाए और किसी तरह आप अगले दिन उसका उपयोग कर सके तो अच्छी बात है। या जैसे किसी समारोह में अगर बच जाता है तो आपको किस तरह से दूसरों को वो दे देना चाहिए ताकि उसका उपयोग हो सके, इस के अंतर्गत हम यही बातें जो है करने वाले हैं। इसके अलावा मुहावरों की दुनिया में जैसा तुमने बता ही दिया है कि राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके बता देना, जितनी बड़ी वो है भी नहीं बात।
2: बिल्कुल। तो, और मंजू जी राई को अगर हम चाहें भी कि एक पहाड़ की जैसे खड़े करने की सोचे, कल्पना भी करें तो राई
1: नहीं
2: रुकेगी नहीं, वो भरभरा के गिरी जाएगी।
1: हाँ। तो इसी तरह से जब छोटी सी बात को कोई बहुत बड़ा बना देता है तो जैसे राई भरभरा के गिर जाती
2: वैसे
1: है, उसी तरह वो बातें भी कभी न कभी सामने आकर के गिर जाती है।
2: बिल्कुल सही।
1: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो स्वस्थ दिल लंबा जीवन, दिल की बातें हम करते हैं तो दिल हमारे शरीर का इंजन है और जब इंजन सही चलेगा तभी जिंदगी की गाड़ी लंबी और सुहानी चलेगी। तो प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे हम मनाते हैं ताकि हम सब इसकी अपनी इस धड़कन की कद्र करना सीखे।
2: बिल्कुल। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, खराब खान पान और लगातार बढ़ते तनाव का जो सबसे बड़ा असर होता है वो हमारे दिल पर ही पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है मंजू जी कि अपने दिल को मजबूत और सेहतमंद रखना

0: कोई मुश्किल काम नहीं है। रोजमर्रा की जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने दिल को भी संभाल सकते हैं।
1: बिल्कुल, और दिल को सेहतमंद रखने के कई सारे ऐसे तरीके हैं जो आसान भी है और कारगर भी है। इस बारे में हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें हमें लिख करके भेजी है, तो उन आसान तरीकों के बारे में हम बताएंगे और श्रोताओं के कमेंट्स की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल को सही रखने का एक और तरीका है, संगीत कितना दिल को है ना खुशी से भर देता है, मन को खुशी से भर देता है, उससे भी तो हमारी सेहत अच्छी होती है।
0: बिल्कुल, आपका इशारा हम समझ गए।
1: चलिए सुनते गाना।

0: मंजर, ये गाना हमने सुना दिल मेरा बस में नहीं, लेकिन दिल को बस में रखना पड़ता है,
1: बिल्कुल रखना
0: कई बार हालांकि हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं, नहीं रख पाते हैं, लेकिन दिल को बस में रखना या वश में रखना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, वो भी एक कला है मंजू जी।
0: हाँ,
1: कि हम अपने हर परिस्थिति में, चाहे वो खुशी के दिन हो, चाहे गम के दिन हो, दुखी वाले दिन हो, हर समय हमें अपने दिल को बहुत मजबूती से रखना पड़ता है, कि तभी हम सामने जो भी हमारी समस्याएं होती, चाहे खुशियों के दिन, उनका सामना हम कर पाते हैं।

0: बिल्कुल।
1: और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल केवल हमारे शरीर का एक अंग नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। स्वस्थ दिल हो तो जीवन में ऊर्जा, उत्साह और खुशियों की रौनक बनी रहती है। इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अतः संतुलित भोजन, नियमित हल्की फुल्की कसरत, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करना, ये छोटी छोटी आदतें दिल को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन दिल की सेहत के साथ मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। खुलकर हंसिए, अपनों के साथ समय बिताइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और मन में प्यार व सकारात्मकता बनाए रखिए, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहता है तो जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होती बल्कि वो अधिक सुंदर और खुशहाल बनती है। कितनी प्यारी बातें और सटीक बातें इन्होंने लिखी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारे साथी ने छोटी सी बात लिखी है कि दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसिए, ऑपरेशन थिएटर में दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: बहुत सही बात लिखी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो यही हमने कहा था ना कि जब हम सखियां मिलती है तो दिल की बात करती है, तो बस ऐसे ही अपने दोस्तों मित्रों से
1: गागर में सागर भरने वाली बात है ना। और एक साथी और लिखते हैं कि कोई माने या ना माने, पहले कभी हृदय को बीमार होते हुए सुना था, कभी ब्लड प्रेशर की कोई बात सुनी थी, कभी शुगर की कोई बीमारी सुनी थी, कभी किडनी की कोई इतनी बीमारी सुनी थी। इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है, हजारों सवालों का एक जवाब, जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए मौसम का अनियंत्रित वातावरण हो रहा है। ईश्वर ने तो हमें, ये प्रकृति ने तो हमें 4 महीने का हर मौसम दिया था, मगर हमने अपनी स्वार्थ और कायरता से उस मौसम को बिल्कुल बदल दिया। ना गर्मी आएगी तो 7-8 महीने गर्मी पड़ेगी, ठंड जाए 4 महीने पड़नी थी, वहां 4-5 दिन में चली जाती। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है कि समस्याएं होती जा रही है इंसान की जिंदगी में, चाहे वो भागा दौड़ी की हो कि कमाने धमाने की चिंता है या घर परिवार को पालने की चिंता है, तो और मौसम का भी उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें अब जल्दी ज्यादा सुनाई देने पड़ गई कि तनाव की वजह से हो जाता है लोगों को, तो इस तरह की बीमारियां सुनाई देने लग गई हैं।
0: हाँ, इन्होंने ये लिखा कि पहले के जमाने में इन बीमारियों के बारे में हमने सुना ही नहीं था, लेकिन अब ये बहुत आम हो चुकी है। हाँ, ये तो सही बात है कि मौसम का बहुत असर हुआ है, हमारे खान पान का असर हुआ है, हमारी दिनचर्या का भी बहुत असर हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग तो बहुत देर तक सोते नहीं है और सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं, जल्दी उठते नहीं है, और खान पान का असर तो हुआ ही है। जंक फूड खाते हैं हम, मसालेदार और तेज मिर्च वाले, और इसके अलावा तेल बहुत होता है उनमें, बहुत सारा बटर चीज वगैरह डाल करके इस तरह की चीजें जब हम खाते हैं तो इसका दिल पर असर तो होता ही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है ताकि हमारा दिल जो है वो स्वस्थ रहे। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल और लंबा जीवन पाने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाना सबसे जरूरी है। स्वस्थ दिल और दीर्घायु के लिए मुख्य उपाय जो है वो भी इन्होंने लिखे हैं कि नियमित व्यायाम करें, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता से व्यायाम करें, और उन व्यायाम में आप जो है तेज चलना, साइकिल चलाना या तैरना ये आप कर सकते हैं। संतुलित आहार, अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, ये शामिल कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन कर सकते हैं, योग, ध्यान और मेडिटेशन से आप जो है तनाव को दूर कर सकते हैं, और धूम्रपान और शराब से दूरी बना सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, रोज 7 से 9 घंटे की नींद लें, नियमित जांच कराएं, जैसे अगर रक्तचाप जैसी कोई बीमारी है या शुगर है या नहीं है, उसके कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं तो भी आप जो है जांच करवा सकते हैं, और इस तरह से जो है आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं बल्कि सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही है, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल है। इसीलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लॉफ्टर क्लब की जरूरत पड़े, और उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लिया कीजिए। यानी कि अपने आसपास हंसी खुशी का माहौल रखेंगे तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं, और आपका दिल और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम की सेहत के लिए भी कुछ बातें बहुत जरूरी हो जाती है मंजरी, और इसमें एक बात है कि हमको समय समय पर छोटा सा एक ब्रेक लेना होता है। तो कार्यक्रम में इस वक्त समय हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, देखिए हम फिर से हाजिर हैं और हम दिल की बातें कर रहे थे। तो एक साथी ने बहुत दिल से ये बात लिखी कि दिल एक ऐसा इंजन है जो बिना किसी ब्रेक के जिंदगी भर लगातार चलता रहता है। हमने अभी कार्यक्रम में ब्रेक लिया लेकिन दिल की बात जब आती है तो वहाँ ब्रेक का कोई काम ही नहीं होता है। जब तक ये धड़कता है तब तक सांसें चलती है और जीवन मुस्कुराता है। इसलिए कहा भी जाता है रखेंगे जब दिल का ख्याल तभी जीवन बनेगा खुशहाल। एक मजबूत और सेहतमंद दिल सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता नहीं है बल्कि हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। दिल स्वस्थ होगा तभी जीवन का हर पल लंबा, ऊर्जावान और खुशनुमा बना रहेगा।
1: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि आजकल के व्यस्त रहन सहन के तौर तरीकों के कारण, खान पान, नींद में कमी के कारण बहुत से असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं जिनमें डायबिटीज और हृदय रोग मुख्य हैं। इसके साथ ही एक साथी और लिखते हैं कि विश्व हृदय दिवस की सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। सालों साल तक दिल स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से ताजा, संतुलित और पौधों पर आधारित आहार लेना चाहिए। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों के खान पान और के सुझावों के अनुसार उनकी थाली में हर चीजों को शामिल करना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। आप सादा भोजन करें और खूब सारा पानी पिए और हरी सब्जियां, फल वगैरह खाएं तो आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे।
0: कुल मिलाकर हम वर्षों से जो परंपरागत तौर तरीके जो हम अपना रहे हैं या खान पान जो अपना रहे हैं, बस उन्हीं को अगर हम अपनाते चलेंगे और समय से सोना, समय से उठना, थोड़ा व्यायाम करना, छोटी छोटी बातें, लेकिन इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्वस्थ रहा जा सकता है।
1: और हमारी मंजू जी बहुत ध्यान रखती हैं चीजों का।
0: देखिए रखना तो जरूरी है ही, क्योंकि हमें शरीर के साथ साथ अपनी आवाज का भी ख्याल रखना पड़ता है और सेहत दुरुस्त रहेगी तभी तो हम अपने काम को समय से आ पाएंगे और जा पाएंगे।
1: और आपको से ही तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं देखा जाए तो।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार, नियमित रूप से व्यायाम और धूम्रपान जैसी आदतों से बचाव करना चाहिए। इसी तरह की बात हमारे एक साथी ने पहले भी लिखी है तो जो हमने आपको पढ़ के सुनाई है। एक साथी और लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल लंबा जीवन का आधार है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लें और व्यायाम करें। और इसी तरह की और भी बातें हमारे साथियों ने लिखी।
1: एक लिखते हैं कि मंजू जी कि मुस्कान और ठहाकों का सफर ही जिंदगी को खुशनुमा बनाता है, क्योंकि बिना हंसी के इंसान का दिल एक उदास और बंजर जमीन की तरह हो जाता है। किसी के चेहरे पर खुशी लाना एक जादुई हुनर है जो हर किसी के पास नहीं होता। जो लोग दिल के अमीर होते हैं वे दौलत और पैसों से नहीं बल्कि किसी मासूमियत, उसकी तिरछी चितवन और दिलकश अदाओं से ही अपना सब कुछ हार बैठते हैं। जब कोई अपनी ही धुन में मगन होकर अजीबोगरीब हरकतें करता है तो महफिल में अपने आप हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते जब ऑटो रिक्शा या ट्रकों के पीछे लिखे वो मजेदार और तीखे डायलॉग्स नजर आते हैं तो इंसान चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता है। बिल्कुल वो दृश्य उभर आया जब जाते हैं लंबे सफर पर तो दिखता
0: एक
1: है।
0: हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल दुरुस्त तो जिंदगी दुरुस्त, एक स्वस्थ हृदय लंबा और स्वस्थ जीवन बिताने में हमारा सहायक होता है। आप सभी को हृदय दिवस की शुभकामनाएं। और एक और साथी लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन योग प्राणायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, संतुलित आहार लें, सकारात्मक सोच रखें। तो आप सभी का धन्यवाद और अब हम एक गीत सुनते हैं।

0: गीत हमने सुन लिया मंजरी, और
1: जी.
0: अब हम बात करेंगे, एक हमारी सखी की बात करेंगे जिन्होंने क्या किया है और किस तरह से उन्होंने जो है दुनिया को राह दिखाई है, उसके बारे में बात करेंगे. अदिति बलबीर की बात करेंगे. हम कुछ अपनी तरफ से बात बोले उससे पहले हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने उनके बारे में कुछ बात लिखी है, तो पहले वही पढ़ के हम सुना देते हैं. एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. ये कहावत एकदम सटीक बैठती है अदिति बलबीर पर, जो कि वी रिसोर्ट्स के सीईओ और फाउंडर है. उनकी गिनती आज भारत की सबसे सफल बिजनेस वुमेन में होती है.
1: बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है. और एक ने लिखा है कि बचपन से ही अदिति को घूमने का शौक था. अदिति इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की एक पूर्व छात्र हैं. उन्हें बचपन से घूमने फिरने से प्यार था, जिसको उन्होंने अपने लिए करियर में बदल लिया, जिसके बाद उन्होंने वी रिसोर्ट की शुरुआत की. अदिति 2014 में वी रिसोर्ट की सीईओ बनी. 5 साल से कम समय के भीतर ही अदिति ने भारत के 21 राज्यों में 120 से ज्यादा रिसोर्ट्स के लिए कंपनी के विस्तार का नेतृत्व किया. ये रिसोर्ट्स ऑफ बीच यात्रा श्रेणी में अपनी तरह का पहला ब्रांडेड रिसोर्ट बन गया है. बहुत अच्छी सी जानकारी भेजी हमारे साथियों ने.
0: बिल्कुल. तो जैसा कि हमने कहा कि अदिति बलबीर जो है वो भारत की एक प्रमुख महिला उद्यमी और वी रिसोर्ट्स की संस्थापक है, और उन्होंने भारत में ऑफ बीट और इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है. अदिति बलबीर का जन्म नई दिल्ली में हुआ. उन्होंने मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस में पीजीडीएम यानी कि एमबीए की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस से उच्च प्रबंधन शिक्षा प्राप्त की है.
1: अदिति ने अपने करियर की शुरुआत फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से की. उन्होंने बेरिंग प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स और बेडरॉक वेंचर्स जैसी प्रमुख प्राइवेट इक्विटी और वेंचर्स कैपिटल फर्मों में काम किया. इस दौरान उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में बड़े निवेश का प्रबंधन किया, जिससे उन्हें इस उद्योग की बारीकियों, बाजार की कमियों और अवसरों की गहरी समझ मिली.
0: बिल्कुल. और वी रिसोर्ट्स की जो नींव है वो कैसे पड़ी, इस बारे में भी हम आपको बता दें. प्राइवेट इक्विटी के काम करते समय अदिति ने देखा कि भारत में कई खूबसूरत और ऑफबीट यानी कि कम लोकप्रिय या प्राकृतिक ऐसी जगहें हैं जहां छोटे बुटिक रिसोर्ट्स मौजूद हैं. हालांकि ये रिसोर्ट्स असंगठित थे, इनके पास न तो उचित ब्रांडिंग थी और न ही मार्केटिंग और पहुंच और न ही पेशेवर प्रबंधन. इसी अंतर को खत्म करने के लिए 2014 में उन्होंने वी रिसोर्ट्स की नींव रखी. उन्होंने एक ऐसा एसेट लाइट मॉडल तैयार किया जिसके तहत स्वतंत्र रिसोर्ट मालिकों के साथ साझेदारी करके उन रिसोर्ट्स का माननीकरण और प्रबंधन वीर रिसोर्ट्स के बैनर तले किया जाने लगा.
1: बिल्कुल. और माइक्रो और ऑफ बीट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए

0: लोगों को शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच अद्वितीय और प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना है और मानकीकरण दूर दराज के इलाकों में स्थित रिसॉर्ट्स में भी मेहमानों को उच्च गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा और पेशेवर सेवाएं देना उनका एक मुख्य उद्देश्य है। और स्थानीय रोजगार और सशक्तिकरण के लिए उन्होंने रिसॉर्ट में 90% से अधिक कर्मचारी स्थानीय ग्रामीणों को नियुक्त कर उन्हें प्रशिक्षित करना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। यानी कि उन्होंने आसपास के लोगों को ही इसमें आगे बढ़ाया,
1: हाँ, ताकि लोकल लोग जो है वहाँ के वो, एक तो होता यह है कि उनको काम मिलता है, रोजगार मिलता है। दूसरा, जो वहाँ के लोग होते हैं उनको उस एरिया के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। दूसरा, जब उनका घर वहीं है तो वहाँ उन्हें काम करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है। वो अपने घर परिवार के साथ रहते हुए रोजगार भी मिल जाता है, काम मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। और सतत पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति व व्यंजनों को पर्यटकों तक पहुंचाना, ये भी इस चीज का एक उद्देश्य रहा है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। तो पर्यटन और उद्यमिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अदिति बलबीर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें है फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस, ये अवार्ड उन्हें मिला है। दूसरा है द इकोनॉमिक टाइम्स, इनकी तरफ से वुमेन अहेड ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया गया। और इसके अलावा CNBC TV18 यंग टर्क्स, इनकी तरफ से भारत की उभरती हुई दूरदर्शी उद्यमी के रूप में प्रदर्शित ये अवार्ड इन्हें दिया गया। डेल विमेन्स एंटरप्रेन्योर नेटवर्क की तरफ से वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली चुनिंदा महिला उद्यमियों में उन्हें शामिल किया गया। और वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप उत्कृष्ट महिला उद्यमी और हॉस्पिटेलिटी लीडरशिप अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।
0: इतना सारे उन्हें पुरस्कार मिले, ये सब उनकी मेहनत का ही और सोच का नतीजा है। जो जब उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया कि हमें इस तरह के सुविधाएं देनी चाहिए, इन पर काम करना चाहिए, तो उनके काम की तारीफ हुई और ये जो उन्हें मिली है सम्मान पुरस्कार, वो उसका ही एक परिणाम है। तो ऐसी सोच सबकी अगर हो, अपने ही आसपास के चीजों को हम अच्छा करने के लिए सोचे, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम सभी।
1: बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हम बड़ी बड़ी चीजों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा काम है जिसका नाम है, हमें लगता है कि जब हम वहां काम करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी
0: जी,
1: या फिर वहीं जाकर के हम पैसा कमा सकते हैं, या अच्छा जीवन तो एक वहीं पर बिताया जा सकता है। लेकिन अगर हम आसपास नजर डालें, या जो पढ़ाई हमने की है, या फिर ऐसा भी होता है कि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है, अगर उन क्षेत्रों की तरफ हम ध्यान दें और हमारी पढ़ाई का उपयोग उन चीजों को बढ़ावा देने में अगर हम करें, तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। इसमें ये कोई शर्म की बात नहीं है, या ये कोई कमतरता आंकने की भी बात नहीं है कि अगर हम यहाँ ये छोटा सा काम करेंगे तो अरे हमको कौन पूछेगा, या हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, या पैसा हम कैसे कमा पाएंगे, या घर कैसे चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इन बातों की तरफ नजर डालें, और कई बार क्या होता है, जैसे कई महिलाओं को या पुरुषों को, जिनको भी बहुत किसी क्षेत्र में रुचि होती है, जैसे किसी महिला की बात करें, उसे कशीदाकारी बहुत पसंद है, या उन्हें भोजन बनाना बहुत पसंद है,
0: किसी को अचार पापड़ इन सब का भी शौक होता है, तो भाई आप अपनी ही उस कला को आगे जाने दीजिए।
1: हाँ, तो ये बहुत सुनने में शायद हो सकता है या कहने में बहुत छोटी बात ये लगती हो, लेकिन अगर कोई महिला, कोई व्यक्ति इस चीज को ठान ले कि नहीं, मुझे इसी क्षेत्र में कुछ करना है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है, और थोड़ा सा उस क्षेत्र में कुछ काम करने की जरूरत है। जैसे हम अदिति की बात कर रहे थे, ऐसा अगर इन्होंने नहीं सोचा होता तो क्या ये काम ये कर पाती, इन्हें पुरस्कार मिल पाती या आगे बढ़ पाती? तो ऐसा हम सब सोच सकते हैं और सब कर सकते हैं। और अब हम ये सोच रहे हैं कि कार्यक्रम में एक ब्रेक ले लें।

0: तो मंजी, गीत हमने सुन लिया और अब कुछ हल्की फुल्की बातें करते
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो भी
0: हैं।
1: बहुत जरूरी होती है कि जब हम अच्छी सारी हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मन भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है। और लेकिन जब बात हो भाई अन्न के दाने की, तो अन्न का नाम सुनते मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब उसकी कोई कद्र नहीं करता है तब मन दुखी होता है ना।
0: बातें हल्की फुल्की है लेकिन ये जो विषय है ये बड़ा
1: जी
0: भारी है।
1: बिल्कुल
0: देखिए कि अन्न से हमारा वास्ता रोज पड़ता है, अन्न के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कोई दिन
1: बिल्कुल
0: ऐसा नहीं जब हम अन्न के बिना रहते हों, कुछ तो हम
1: बिल्कुल
0: खाते ही हैं, पीते ही हैं। तो उसकी जो अहमियत है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार होता है। हमारे संस्कारों में भी अन्न को ईश्वर का रूप माना जाता है और हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर में खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो मकसद होता है या उद्देश्य होता है वो ये याद दिलाना होता है कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना जाने
1: ना
0: दें।
1: जाने दे बिल्कुल। और आज एक तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ खेतों से लेकर हमारी थालियों तक ढेरों खाना बर्बाद हो जाता है। जब खाना बर्बाद होता है तो सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उसे उगाने में लगी उस

0: तरीके से हम भोजन को पकाते हैं और उसके बाद जब हम खाते भी नहीं है उसे यूं ही फेंक देते हैं,
1: जी
0: तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि सही बात नहीं
1: सही
0: है।
1: बात नहीं
0: हमारे
1: है।
0: साथियों ने ये बात लिखी है कि अन्न केवल हमारी भूख नहीं मिटाता बल्कि ये किसान की महीनों की मेहनत, पानी, मिट्टी की उर्वरता और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। जब हम अपनी थाली में भोजन छोड़ते हैं तो हम केवल एक निवाला नहीं फेंकते बल्कि उस तक पहुंचने में लगे अनगिनत संसाधनों और प्रयासों को व्यर्थ कर देते हैं।
1: बिल्कुल। और इसी तरह हमारे एक साथी और लिखते हैं कि व्रत लिखते कि हल्की फुल्की बात है, ना जाए व्यर्थ उनका एक भी दाना, अंक एक ही दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे किसान इस अंक को, इस मतलब अन्न को उगाने में कितनी मदद करते हैं। इसलिए अपनी थाली में जितना लेना है, जितना आपको खाना है, उतना ही आपको लेना चाहिए, जितना आप खा सकते हैं, और उतना ही आप थालियों में डालें। अगर आप शादी या पार्टियों में जैसे जाते हैं, देखते हैं वहां पर बहुत सारी चीजें आप ले लेते हैं, या गिलास भी उसमें लेके थाली भर के उसका जूठा छोड़ देते हैं, मतलब लिया थाली में और जूठा छोड़ दिया, तो अनाज की जो होती बर्बादी ही हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आप बिल्कुल उसी हिसाब से ले जितना आप खा सकते हैं।
0: एक हमारी सखी ने लिखा है कि हम जब अपने गुरुओं के मंदिर की में जाते हैं, वहाँ की बात है कि इतनी अच्छी लगती है वहाँ की उनकी बात की, वहाँ दो लोग सबकी थाली चेक करते हैं कि किसी ने खाना बचाया तो नहीं है, उसे वही पूरा खाना पड़ता है, तो अब सब लोग उतना ही लेते हैं जितना उन्हें खाना होता है। वैसे भी हम पहले थोड़ा कम लें और फिर चाहिए तो और ले लें। और
1: बिल्कुल
0: देखो जो भोजन व्यर्थ होता है ना उसका एक कारण ये भी होता है, कोई भी जैसे समारोह हुआ, शादी समारोह या कोई भी ओकेजन होता है तो वहाँ खाने में बहुत सारी वेराइटी बहुत होती, बहुत
1: बिल्कुल
0: तरीके के व्यंजन बनते हैं और व्यक्ति चाहता है कि मैं सारे व्यंजनों को चख तो लूँ कम से
1: कैसे खा
0: कम।
1: सकते हैं आप,
0: हाँ,
1: सोचिए जरा।
0: जबकि उसके
1: जी
0: पेट में उतनी जगह होती नहीं है लेकिन वो सब ले लेके चखना जरूर चाहता है और उस चक्कर में जब कोई भी चीज थोड़ी सी भी उसको कम पसंद आती तो वो लेता है और छोड़ देता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी राय है, कि हम थोड़े अगर व्यंजनों की संख्या अगर कम रखेंगे तो शायद भोजन की बर्बादी कम हो, ऐसा मुझे
1: हाँ, वो
0: लगता है।
1: तो खैर ये अपना सोचना, लेकिन आजकल लोग दिखावे के चक्कर में तरह तरह की चीजें रखते हैं, और सलाद के भी इतने सारे वैरायटी होती है, फ्रूट्स की भी होते हैं, स्टॉल होते हैं कि सब तो नहीं खा सकता कोई। तो ठीक है, आप उन्होंने लगाया ये, आप उनको अपना अपने तरह से सबको स्वागत करना है, लेकिन हम अपने लिए अपनी थाली में अन्न का स्वागत हिसाब से करें, वो ज्यादा सही है। और हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे मंदिर में जहाँ खाना होता है वहां दीवारों पर लिखा होता है, खाओ मन बचाओ नकन, और इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। बहुत सुंदर सी बात है। इसी तरह एक साथी और लिखते हैं कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाए, इसके लिए घर या सामूहिक भोजन के वक्त ये बात ध्यान में रखें, इतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। सभी ने ऐसी बात लिखी है। और थाली में लिया हुआ खाना जूठा होकर या बचकर बर्बाद ना हो, शादी या पार्टियों में अक्सर देखा गया है कि बुफे सिस्टम में कुछ लोग थाली में इतना ज्यादा भोजन ले लेते हैं कि दूसरी बार लेने जाना ना पड़े। इस ना लेने जाने की मानसिकता से भरी आलस ही खाने की बर्बादी का कारण अक्सर बनती है। तो इन चीजों का
0: बिल्कुल।
1: भाई ध्यान रखें कि जिसने भी आपको बुलाया है स्वागत सत्कार में, आपके लिए भोज का इंतजाम
0: आयोजन
1: किया
0: किया
1: है,
0: है।
1: आयोजन किया है, तो उसके खाने की आप कद्र करें,
0: बिल्कुल।
1: उसको व्यर्थ ना जाने
0: एक
1: दें।
0: साथी हमारे लिख रहे हैं कि अन्न का एक एक दाना कीमती है और इसे व्यर्थ होने से बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम भोजन बर्बाद करते हैं तो सिर्फ खाना बर्बाद नहीं होता बल्कि उसे उगाने में लगी किसान की मेहनत और भी जाती है। और यहाँ कुछ छोटी और व्यावहारिक आदतें दी गई हैं जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि थाली में उतना ही ले जितनी भूख हो और बचे हुए भोजन का सही उपयोग, यदि खाना बच जाता है तो उसे फ्रिज में सुरक्षित रखें और अगले समय किसी नई रेसिपी बनाने में उसका उपयोग करें। और एक ये भी बात लिखी है कि जरूरतमंदों की मदद करें, यदि किसी पारिवारिक समारोह या पार्टी में भोजन अधिक मात्रा में बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय पास के किसी शेल्टर होम या जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। खरीदारी की योजना जो है उसके बारे में बाजार जाने से पहले घर में मौजूद सामान की सूची बना लें ताकि जरूरत से ज्यादा सामान खरीद कर खराब ना हो। और लिखा है कि अन्न ही जीवन है, आइए मिलकर यह संकल्प लें कि हम न तो खुद भोजन बर्बाद करें और न ही दूसरों को करने दें।
1: और हम लोग पहले एक गीत सुन लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।

0: हॉर्स उड़ने की यहाँ पर बात हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कई लोगों को देखते हैं बहुत सारा भोजन बनाते हैं, फेंक देते हैं, तो उनको जब फेंकते हुए हम देखते हैं ना,
1: जी
0: तब भी हमारे होश उड़ जाते हैं। हम ये सोचने
1: बिल्कुल
0: पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस भोजन को लाने में, बनाने में इतना पैसा खर्च, इतनी मेहनत खर्च, इतना इसके अंदर संसाधन लगते हैं, और जब फेंका जाता है तो कैसे लोग इतना आराम से फेंक देते हैं।
1: बिल्कुल
0: हमारा
1: नहीं,
0: दिल नहीं
1: फेंक
0: करता है फेंकने
1: बिल्कुल
0: का,
1: फेंकना
0: तो
1: बिल्कुल भी
0: तब
1: नहीं
0: हमारे भी
1: चाहिए
0: होश उड़ जाते
1: जी बिल्कुल
0: हैं।
1: सही आपने कहा है। और देखिए, हम लोग समय समय पर बताते भी रहते हैं अपने व्यंजन वाले में कि अगर कोई चीज है आपके पास घर में बची है, जैसे चावल बचा है, तो आप उसका चावल को भी दूसरी तरह से बना सकते हैं। चाहे उसको फ्राई कर लीजिए, चाहे आप चावल को पीस करके उसमें थोड़ी सूजी बेसन मिला करके आप
0: डोसा
1: उसमें
0: जैसा।
1: डोसा जैसा बना सकते हैं। चावल की भजियां भी बहुत अच्छी बनती है, कच्चे चावल की,
0: कटलेट
1: तो
0: भी बनते
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं। तो अन्न आप दिमाग लगाएंगे ना, तो आपका अन्न जो है बेकार नहीं जाएगा। और अगर आपको जैसे, और किसी को देना है, मंजू जी एक बात मुझे यहाँ पर याद आई कि अगर आपको खाना किसी को देना है, तो देने से पहले एक बार खाने को आप चेक जरूर कीजिए
0: हाँ
1: कि वो,
0: बिल्कुल।
1: उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई, बासी तो नहीं, बासी में गंध तो नहीं आ रही है, वो खराब तो नहीं होने लगा है। अगर ऐसा खाना अगर आपके पास है और आप चाह रहे हैं नहीं इसको दे दे, नहीं वो काम बिल्कुल मत करिए। आप उस अन्न को आप मिट्टी में आप दबा दीजिए, जिससे वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो फिर भी ठीक है एक बार, लेकिन खाना कभी किसी को गलत मत दीजिए, है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: ऐसा ना सोचे कि चलो हम जो नहीं खा सकते तो
1: हाँ
0: दूसरों को दे दें। जो
1: बिल्कुल नहीं
0: भोजन आप खा सकते हैं, जो
1: जी
0: खाने लायक है, उसी को आपको दूसरों को देना है। ऐसा नहीं है कि
1: जी
0: जो खराब हो चुका है वो हम दे दें और वो खा करके बीमार हो जाए, ऐसा हमें नहीं
1: नहीं
0: करना
1: करना
0: है।
1: है
0: चलिए अब हम अपने दूसरी बात की तरफ चलते हैं। राई का पहाड़, ये एक कहावत है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनना बड़ा ही अनूठा मुद्दा है। राई का पहाड़ बनना से तात्पर्य है कि छोटी छोटी बातों को एकदम लंबा बना देना। और एक और साथी यही लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी कि बात का बतंगड़ बना देना, जैसे किसी साधारण सी बात या छोटी सी समस्या को बेवजह तूल देना और उसे बड़ा मुद्दा

0: बना देना, ये एक बात है। और इसी से संबंधित एक और एक ऐसी कहावत है कि गरम तेल में राई की तरह उछलना, ये भी इन्होंने
1: बिल्कुल
0: साथ ही में हमारे लिखकर
1: मतलब
0: छोड़
1: जैसे
0: दिया
1: कोई बात चल रही है और
0: है।
1: किसी ने थोड़ी सी बात शुरू करी और वो आपके मन के या लोगों के मन के खिलाफ है, लेकिन आप उसमें उसको थोड़ा सा और हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भाई तेल में जैसे राई चटकती है ना वैसी चटकेगी। और कई बार ऐसा होता भी है कि साथ में सारी सहेलियां या सारे दोस्त खाना खा रहे हैं और एक कुर्सी की वजह से आपस में हो जाए कि नहीं ये कुर्सी पे हम बैठेंगे, उस पे हम बैठेंगे, तो ये भी राई के पहाड़ वाली जैसी हालत हो जाती है।
0: वैसे देखो
1: तो
0: मंजरी,
1: जी
0: अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो इससे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो राई का पहाड़ बनाना उन्हें बहुत पसंद
1: उन्हें
0: होता
1: और
0: है।
1: मजा आता है चटकारे लेके,
0: हाँ
1: उसमें किससे अपने डालेंगे उसकी बात को, कहते हैं ना मुंह से बात निकली
0: हाँ
1: किसी ने कहीं कहीं तक कही, लेकिन दूसरा उसको मिर्च मसाला लगा के आगे तक बढ़ा देता है। और जैसे राई के उछलने वाली बात होती है, एक बार इसने कहा उससे कहा उससे कहा, हर समय बदलते हुए दूसरे रूप में वो सामने आ जाती है।
0: हाँ जब एक ही बात अगर
1: जी
0: मतलब 5, 6, 10 लोगों तक पहुंचती है तो उसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, और जब वापस पहले व्यक्ति तक वो बात आती है तो उसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका
1: आ
0: रहता है।
1: चुका है।
0: यानी जो बात उसने कही होती है और जो बात लोगों तक पहुंची है, इन दोनों बातों में बहुत अंतर हो जाता
1: तो
0: है।
1: बड़ी समस्या होती है ना मंजू जी, कि अब वो जो हमने जो सच बोला है उसको हम कैसे साबित करें, वो बड़ी एक समस्या होती है। कि फिर या तो लगता है कि जिसने एक बात फैलाई है ना उसी को सामने बुलाओ और आमना सामना कर लो
0: लेकिन ये
1: तो ही
0: संभव
1: ठीक
0: नहीं
1: है,
0: होता,
1: नहीं हो पाता।
0: किसने
1: लेकिन
0: किससे कहा, क्या कहा, कैसे कहा, ये सब समझना। और दूसरी बात ये है कि ये सब करने में तो हमारा बहुत सारा समय भी चला जाएगा
1: बिल्कुल
0: और हमारी बहुत सारी ऊर्जा भी खर्च हो जाएगी।
1: बिल्कुल
0: हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, आप घर का काम करते हैं, आप बाहर का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं,
1: जी
0: तो उसके लिए समय की भी जरूरत होती है और ऊर्जा की। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो फिर तो हम अपना काम ही
1: फिर तो
0: नहीं कर
1: इससे अच्छा है
0: पाएंगे।
1: कि उन्हीं को छोड़ दो,
0: तो
1: तुम्हें फैलाने दो जिसको फैलाना
0: बिल्कुल
1: है।
0: सबसे बड़ी
1: जी
0: बात यह है कि आप इन जो जिन बातों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत ना है उन बातों पर ध्यान ना दें। और जो लोग राई का पहाड़ बनाते हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि इन व्यर्थ बातों में अपनी ऊर्जा को खर्च ना करें, बल्कि जो आपके पास समय है, जो ऊर्जा है,
1: बिल्कुल
0: उसको किसी सकारात्मक कार्य में आप लगाएं। ये आपके लिए फायदेमंद होगा, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सेहत बनाने के लिए भी हम ये समय दे सकते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: है
1: सही
0: ना।
1: बात
0: थोड़ा
1: आपने कही।
0: व्यायाम कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाइए,
1: बिल्कुल
0: और किसी और काम में जिससे आपको थोड़ा कुछ अर्जित हो सके, अगर
1: बिल्कुल
0: उसका उपयोग उसमें करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
1: बिल्कुल सही बात। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि छोटी सी बात को इतना बड़ा ना बना दे कि रिश्तों में दूरी आ जाए। बात चाहे राई जितनी हो, समझदारी यही है कि उसे पहाड़ ना बनने दे। रिश्तों की बात जहां तक है मंजू जी, कि अगर आपके रिश्तों में ऐसे मनमुटाव हो गए, आपको पता भी नहीं चला है कि किसने क्या किससे कह दिया, तो जब मिले तो वो बात आप क्लियर जरूर कर लें, जिससे कि ऐसी दूरियां ना बने। और एक लिखते हैं कि राई का पहाड़ कितना ही बड़ा हो पर खामोशी रूपी एक गोटी ही काफी है। बहुत सही बात कही है कि वो कितना भी राई का पहाड़ बना ले उसकी बातों को जवाब ही मत दे, खामोश हो जाए। तो मौन की तलवार जिसे कहते हैं ना, वो बहुत तेज होती है। तो बड़ी अच्छी सी बात इन्होंने लिख करके भेजी है। तो कहना चाहिए कि राई, एक और लिखते हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात को लास्टिक की तरह खींच करके बड़ा करना है, जिससे दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। और ये क्या कहते हैं कि जल्दी से ही, जिसे कहते हैं कि आप नॉर्मल होने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा आप खींचे मत, लास्टिक की तरह मत खींचे बातों को, वहीं
0: जी
1: पर थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक है। तो हम
0: बिल्कुल
1: लोग एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: उम्र है।
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना।
2: देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी की पहाड़ जैसी गलत बात को और किसी को बतानी हो तो उसे राई जैसा छोटा करके बताओ, क्या बात है। और अगर किसी की बात बहुत अच्छी है तो वो राई जितनी है तो उसे पहाड़ जैसा बनाकर बताओ ताकि हर कोई उससे कुछ सीख सके। बहुत सुंदर सी इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, तो ये बहुत मतलब सारगर्भित चीज इन्होंने लिखकर भेजी है।
3: एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुहावरों की दुनिया भी गजब है। मेरे पास एक पुरानी किताब थी जिसमें वो कहानियां थी, जिस कारण वो मुहावरा बना। वो किताब कोई मांग कर ले गया और वापस नहीं दी। राइस से पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना होता है।
2: क्या बात है भाई, किताब देनी चाहिए किसी की भी ले जाओ तो देनी चाहिए।
3: हाँ,
2: और हाँ,
3: पुस्तक जो कई बार है ना, होता क्या है ना, पुस्तकें किसी को बड़ी प्रिय होती है इसीलिए वो खरीदते हैं और वो संग्रह करके रखते हैं और आपको इतने उदार मन से वो पढ़ने के लिए देते हैं और जब आप उनकी पुस्तक उन्हें नहीं लौटाते हैं। और कई बार तो क्या, जैसे किसी की आदत होती कि पुस्तक किसी ने मांगी दे दी और उसे याद भी नहीं रहता कि मैंने कौन सी पुस्तक किसको दी, और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और वापस नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने इतनी उदारता दिखाते हुए आपको कोई पुस्तक दी, उन्हें पढ़कर वापस लौटा दीजिए।
2: आप भी तो उदारता दिखाइए, उदारता
3: जब वो मांगने आए तो राई का पहाड़ मत बनाइए।
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके मन में अफसोस तो होगा, ग्लानी तो देखिए होगी कि आपके पास किताब है, आपको पता है कि आपके पास किताब है, आपने वापस नहीं करी, तो आप अपनी ग्लानी को क्यों बढ़ा रहे हैं। आप
3: बिल्कुल
2: सहृदय उन्हें उदारता के साथ वापस कीजिए। और देखिए बहुत सारे हमें कमेंट्स और भी मिले हैं, अलग अलग विषयों के मिल गए, तो हम उनको भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं।

0: ये लिखते हैं कि अन्न के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी नानी हमेशा हम लोगों को बोलती थी बार बार कि संत का एक क्षण भी और अन्न का एक भी कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी तो हम लोगों को वो सब सिखाया गया, लेकिन इसलिए हम लोगों ने भी अपने बच्चों को सिखाया है कि जितना खाना हो उतना ही लें, अन्न का एक दाना भी थाली में ना छोड़ें, और ईश्वर की कृपा है कि बच्चे भी उतना ही लेते हैं जितना खाते हैं। कभी मेरे घर में कोई खाना बर्बाद नहीं होता है। कितना सुंदर आपका घर का स्वरूप होगा, हम कल्पना कर सकते हैं कि आप एक भी दाना अन्न का वहां पे बर्बाद नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छी सी बात है
1: एक हमारे
0: इसकी।
1: साथी लिख रहे हैं कि अन्न में ही ब्रह्मा ही नहीं अपितु इसमें अन्नपूर्णा देवी का वास भी माना गया है, और इस दृष्टिकोण से उसकी बर्बादी, वो भी आज के महंगाई वाले युग में। तो ये तो जानकर के अज्ञानता का ही परिचायक है। फिर वैसे ही अन्नेव प्राणः के दृष्टिकोण से अन्न की बर्बादी से बचते रहना ही श्रेयस्कर है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि अन्न का हर दाना सिर्फ खाना नहीं, किसी के मेहनत, पसीने और उम्मीद का फल है। थाली में उतना ही ले जितना खा सके, क्योंकि अन्न का सम्मान मेहनत का सम्मान है। बहुत सुंदर सी बात है। मुझे तो लगता है ये वाला जो संदेश है ना, ये लिख करके अपने घरों में लगा लेना चाहिए,
1: एक
0: है ना।
1: साथी ये भी लिख रहे हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान या अपने आते हैं और वो पूरा खाना फिनिश करते हैं, ये फिर उतना ही लेते हैं जितना वो खा सके, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। और जो भी झूठा खाना छोड़ते हैं, हम उन्हें जरूर कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, उतना ही ले जितना आपको खाना है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि भोजन करते समय थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि ये भोजन जो हम लोगों को आसानी से मिला है और खा रहे हैं, उसको पैदा करने में किसानों ने कितना पसीना बहाया है, कितनी कठिनाइयों से होकर हमारी थाली में आया, तो अन्न का एक भी दाना नहीं फेंक
1: चलिए अब
0: पाएंगे।
1: हम अपनी बातों को थोड़ा विराम दे देते हैं,
0: जी
1: नहीं तो लोग हमें ये कहेंगे कि अरे आप तो छोटी बातों को राई का पहाड़ बना रहे हैं।
0: जी
1: तो अब घड़ी की तरफ हमने नजर डाली और समय हमें आज्ञा नहीं दे रहा है, तो अब हम श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं,
0: जी
1: कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
0: और मंजरी वर्मा का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बरसों के संघर्ष और नामुमकिन हालातों के बावजूद अपनी मेहनत और सच्चाई से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्मिस्तान के सनी से लेकर द फैमिली मैन के जेके तलपड़े तक, इन्होंने हर किरदार में वो आम और सहज व्यक्तित्व दिखाया जिससे हम सब खुद को जोड़ पाए। और आज जैसे जैसे हम बातचीत में आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे यकीन है कि हम ये समझ पाएंगे कि ये कहानी जो है सिर्फ कामयाबी की नहीं है, ये धैर्य और डटे रहने की मिसाल भी है। तो बिना देरी किए आज इस स्टूडियो में, विविध भारती के स्टूडियो में, हम स्वागत करते हैं हमारे मेहमान शारिब हाशमी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आके बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती के साथ में काफी नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है।
1: जी, जब हम आ रहे थे और लाइब्रेरी के दौरान जब आप देख रहे थे, साथ में फोटोग्राफ्स देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा जुड़ाव तो है। हाँ। किस तरह का जुड़ाव है रेडियो से या विविध भारती से, वो हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज।
2: हाँ, कि मतलब क्योंकि बचपन हमारा तो रेडियो पर ही पूरा गुजरा है, और खासकर उस वक्त तो मतलब मैं आई एम एन 80s किड, तो उस वक्त तो ज्यादा रेडियो लोग ज्यादा सुना करते थे।
1: जी,
2: और शुरुआत ही विविध भारती के कार्यक्रम से होती थी सुबह की, जिसमें नए गाने आते थे, और रात को जो है वो थोड़े पुराने गाने होते थे, वो बेला के फूल। और
1: बिल्कुल,
2: तो मैं सारे सुना करता था। मैंने कभी पुराने गाने जो है वो बैठ के कभी मैंने याद नहीं किया, वो रेडियो पे गाने सुन सुन के अपने आप याद हुए हैं, जो अब तक याद हैं सारे गाने, किशोरदा के, रफी साहब के, मुकेश जी के, जो भी गाने मैंने याद किए हैं, तो वो सब थैंक्स टू विविध भारती है।
1: जी, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे लगता है दिलचस्प बातें होगी और गीत भी हम आपसे सुनेंगे क्योंकि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं।
2: हाँ, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ, शौकिया तौर पे।
1: जी हाँ, शुरुआत रेडियो की बातें से हुई, तो बचपन की यादें कुछ कैसा रहा परिवेश घर का? आपके पिता एक पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार, तो क्या उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री हुआ या किस तरीके से, या आपने खुद ही अपना ये रास्ता चुना?
2: चुना तो मैंने खुद ही रास्ता, लेकिन ये उनका जो प्रोफेशन था वो मतलब उसने मुझ पर बहुत असर छोड़ा था, तो उसी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी इस फील्ड में आना है। उन्होंने मतलब मुझे, मैंने उनसे हेल्प भी नहीं मांगी थी कि मुझे कहीं पर लगवा दीजिए या कर दीजिए, तो वो मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू कहीं पर मुझे एज एन असिस्टेंट के तौर पर जॉब मिला, AD, तो हाँ, तो वैसे करियर की शुरुआत हुई थी। लेकिन मैंने उनसे कभी ये नहीं बोला था कि मुझे कहीं पर मतलब ये एज एन असिस्टेंट या कहीं कुछ काम दे
1: पर फिल्मी हस्ती हो आपने देखा है अपने घर।
2: हाँ,
1: बचपन से
2: वो देखा था, तो उस वजह से मतलब मेरा मतलब अगर मैं इस लाइन में हूँ तो वो मेरे डैड की बदौलत ही हूँ, उनकी वजह से हूँ।
1: जी, उस बारे में कुछ बताएं, बचपन की कुछ यादें, उस टाइम आप सेट पे जाते थे या किसी से मुलाकात हुई या उस वक्त किसी ने कहा कि हाँ आप इसी लाइन में जाएंगे, कुछ उस टाइम नजर आए?
2: उस टाइम एक्चुअली किसी ने मुझसे कहा नहीं। मैंने वैसे बचपन में एक सीरियल आता था आफ्टरनून ट्रांसमिशन में, दूरदर्शन पे, कैसे बना मुहावरा कैसे बनी कहानी।
1: अच्छा।
2: तो उसके एक एपिसोड में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था, हमने SL स्टूडियो में शूट किया था उसको, ट्रॉम्बे में, बहुत दूर, जब बचपन में तो बहुत ज्यादा दूर लगा था। अब और ज्यादा दूर हो गया ट्रैफिक की वजह से। तो हम वहां पर गए थे और मेरा मतलब मैं बांसुरी बजाते हुए घर में घुस रहा हूँ और मेरे डैड जो है बने हुए थे उसमें, डांटते हैं और मैं डरता हूँ, मुझे मुझे मुझे डरने का वो रिएक्शन देना था। तो वो जब शूट हो रहा था तो उन्होंने जब मुझे डांटा, मैं डरा, तो उनको लगा कि मैं सच में डर गया हूँ, और वो अपने डायलॉग भूल गए। उनको लगा, मुझे लगा ये बच्चा सच में डर गया। तो मतलब मुझे डरना ही था, इसके लिए मैं डरा। तो तब लोगों ने बोला, अरे ये अच्छा एक्टर है। लेकिन वो स्कूल के टाइम पे किया हो गया और ऐसा कोई वो नहीं था तब की, लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा ये था कि बड़े होके तो मुझे एक्टर ही बनना है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो उतना बड़ा हुआ नहीं। तो उस वजह से तब मैंने सोचा था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, और क्योंकि मैंने पूरा बचपन ये सोचकर गुजारा कि बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा, अब हीरो वाली तो पर्सनालिटी है नहीं और मुझे बाकी कुछ करना नहीं है।
1: नहीं, आप जो हैं, जिस भी पात्र में ढलते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। और जानना चाहेंगे आपके स्कूल और कॉलेज का वक्त, क्या आपने स्ट्रीम्स ली थी, क्या पढ़ाई की?
2: स्कूल तो नॉर्मल यहीं पर एसएससी बोर्ड में था, और उसके बाद में मैंने आर्ट्स में, मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए किया है, और 2 साल पहले मैंने कॉलेज के बाद इस्माइल यूसुफ में जूनियर कॉलेज किया, और बाद में 3 साल भवंस कॉलेज अंधेरी में था।
1: जी
2: तो वहां पर मतलब मेरी पूरी काया पलट हुई एकदम। वहाँ काफी बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत लोगों से मिला, इस्माइल यूसुफ में भी काफी शुरू हो गया था
1: जी। अच्छा, थिएटर और ड्रामा?
2: थिएटर ड्रामा तो पता नहीं मेरे नसीब में कुछ, मुझे नाटक मुझे हुआ ही मिला ही नहीं ना स्कूल में मैं कुछ कर पाया। इस्माइल यूसुफ में जब मैं गया वहां पर नाटक हुआ नहीं, एक एक प्ले की रिहर्सल शुरू हुई और वो प्ले बंद हो गया। कॉलेज मैंने चेंज किया इसी वजह से कि मुझे नाटक करने थे। मैं जिस साल भवंस कॉलेज में मैंने एंट्री ली वहां पर एक नए प्रिंसिपल उस साल मेरे साथ में, उन्होंने भी एंट्री मारी थी।
1: अच्छा।
2: और उन्होंने नाटक वाटक सब बैन करवा दिए थे पता नहीं क्यों। तो मेरा मतलब पूरा कॉलेज का जो टाइम था जब मैंने सोचा था कि यार मैं नाटक वाटक करूंगा वो हुआ ही नहीं। फिर थिएटर कभी मैं कर ही नहीं पाया, थिएटर के साथ में मेरा जुड़ाव हो ही नहीं पाया। फिल्में करने के बाद में मैंने नाटक किए।
1: जैसे कि अभी आप कर रहे हैं। हाँ, उस बारे में भी हम
2: जी,
1: बात करेंगे। फिलहाल हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं।
2: मेरी पसंद का कोई गीत? यार बहुत सारे गीत है मेरी पसंद के। आपकी याद आती रही रात भर अगर।
1: अच्छा,
2: गमन से
1: थोड़ा सा गुनगुना देंगे?
2: अरे वो तो बहुत मुश्किल गाना।

0: क्या बात है,
1: थैंक यू।
0: सुनवाते हैं गीत
1: अभी से मैं
0: अपने
1: ऐसे गाने बोलूंगा जो मैं अच्छे से गा सकूं।
0: नहीं, हर गीत पे
1: जैसे
0: हम
1: वो कहते
0: नहीं
1: हैं ना
0: गवाएंगे
1: कि
0: आपको अगर
1: बच्चों
0: आप ऐसा
1: को,
0: चाहेंगे
1: हाँ, कि
0: तो।
1: बच्चों के बोलते हैं कि
0: जी
1: महाराष्ट्र कौन से स्टेट में रहते हो, तो मैंने महाराष्ट्र उसकी स्पेलिंग बताओ। मैंने नहीं, मैं गोवा में रहता हूँ।
0: नहीं, आप
1: तो
0: बेफिक्र रहिए।
1: अब मैं सिंपल वाले गाने बताऊंगा।

0: अच्छा, 1999 में हम तुम पे मरते हैं फिल्म में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया, तो वहां से जुड़ाव कैसे हुआ? और आपने नौकरी भी कुछ की है, तो
1: हाँ
0: उससे
1: हाँ
0: पहले की बात है या उसके 99 के बाद की बात है?
1: नहीं, नौकरी बाद में हुई। पहले मैंने,
0: अच्छा,
1: मेरा पहला काम जो है वो
0: पहला काम
1: एज
0: जो
1: एन
0: था,
1: असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी नौकरी थी,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मेरी पहली नौकरी वो थी।
0: तो वो कैसे जुड़े, कैसे?
1: वो मेरे कॉलेज में मेरे एक दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, मतलब काफी क्लोज फ्रेंड हैं, राजुल मिश्रा। तो वो उस वक्त सूरज जी को असिस्ट करते थे, वो मेरे से कॉलेज में 2 साल सीनियर थे, और हम साथ में काफी गाने वाने गाया करते थे, और वो कॉलेज में मतलब ही वॉज अ स्टार सिंगर। तो उन्होंने बाद में राची प्रोडक्शंस ज्वाइन किया, सूरज जी को वो असिस्ट कर रहे थे, और हमारी फिर मुलाकात फिर भी होती रहती थी। और उनके जरिए मुझे उनके ही एक एक्स कलीग जो थे, नब कुमार राजू जी, जो सूरज जी को पहले असिस्ट किया करते थे, तो वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे, और उन्होंने मुझे, राजुल ने मुझे उनसे मिलवाया, और मेरा एक इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और इस तरीके से पहली फिल्म मिली हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी, उर्मिला जी, डिंपल कपाड़िया मैम, बहुत बड़ी कास्ट थी, परेश
0: जी
1: रावल साहब थे, जॉनी लीवर जी थे, गुलशन ग्रोवर जी, तो बहुत मज़ा आया था, मेरा पहला काम था वो, और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था वो, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ही बहुत कमाल था।
0: उसके बाद आपने दूसरी नौकरियां भी की है?
1: हाँ, उसके बाद मैंने एक और फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन में मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक फिर काफ़ी काम की तलाश चली, और फिर फाइनली कुछ फ्रीलांस काम मिलने लगा एज अ राइटर, वो भी राजुल की बदौलत, मतलब राजुल मिश्रा का मेरे करियर में बहुत ही बड़ा
0: अच्छा
1: योगदान है। तो
0: जी,
1: उन्होंने मुझे असल में राइटिंग की तरफ झुकाव जो है वो
0: झुकाव,
1: उस तरफ
0: रुझान।
1: बढ़ाया, रुझान। तो वो, उन्हें पहले एक कोई डिस्कवरी के लिए कोई एक शो मिला था,
0: जी
1: जिसको वो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना था, तो मैं उस वक्त मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, राजश्री प्रोडक्शंस में। वह हमेशा जब ऑफिस आवर्स ख़त्म होते थे तो मैं शाम को वहाँ पहुँचता था, हम गप्पे उप्पे मारते थे और काम वाम की बातें भी करते थे।
0: जी
1: तो उनको वो ट्रांसलेट करने के लिए मिला था, तो राजुल ने मुझे कहा कि यार एक बार तू भी ट्राई कर, तेरी भी भाषा तो ठीक ठाक ही है। तो मैंने जब एक पैराग्राफ लिखा तो वो, उन्हें बहुत पसंद आया, तो और बोला अरे यार तू तो मतलब सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, तू तो मतलब अच्छे से उसे, मतलब तेरी लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी कमांड है।
0: कमांड
1: तो मुझे तो ये पता नहीं था ऐसा कि मतलब मैं कुछ लिख विख भी सकता हूँ। फिर
0: है।
1: उन्हें एक एक कॉमेडी टाइप थोड़ा सा, मतलब एमटीवी के लिए एक शो था जो रागेश्वरी होस्ट किया करती थी,
0: अच्छा।
1: उसमें उस वक्त वीजे थी वो, उस वक्त एमटीवी में, तो वो शो लिखना था, उनके एंकर लिंक्स, वीजे लिंक्स जो होते हैं
0: जी
1: कि वो जो बोलते हैं फिर उसके बाद गाना आता है, तो वो लिखने के लिए दिया, और वो मैंने लिखा, वो भी साथ में उनके, वो भी पसंद आया, उन्हें भी पसंद आया, रागेश्वरी को भी अच्छा लगा। तो फिर और शोज लिखने लगे, फिर एक शो से दूसरा शो, फिर ईटीसी, मैं, राजुल और हमारे एक और दोस्त है कॉलेज का, रेंजी वर्गिस, हम तीनों ने फिर मतलब लिखना शुरू किया काफ़ी, और धीरे धीरे कब मैं मतलब एकदम से राइटर बन गया मुझे खुद पता नहीं चला, साल 2 साल गुजर गए, राइटर का तमगा
0: जी
1: लग गया।
0: जी
1: फिर नौकरी की मैंने एमटीवी में, 4 साल इन हाउस राइटर के तौर पे, और फिर 1 साल चैनल वी में था। तो ऐसे फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो यही लाइफ हो गई थी, मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब बाद में मैं क्रिएटिव हेड बन गया एक दूसरे चैनल में, बॉलीवुड चैनल था वो, इमेजिन शोबिज।
0: जी
1: तो फिर मतलब ऐसे लाइफ शुरू हो गई, बट ये नौकरी के जो मेरे साल थे उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने इन्जॉय किया वो एमटीवी के जो 4 साल थे, वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मैंने वहाँ पर सीखा, बहुत अच्छे दोस्त बनाए, प्यारे दोस्त बनाए, जो अब तक जिनके मैं टच में हूँ, जिनके साथ,
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो मेरे मतलब बहुत ही खूबसूरत 4 साल रहे हैं एमटीवी में।
0: बिल्कुल। यहाँ पर आपके गीत पसंद के, कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे, और हो सके अगर वो गीत अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: थैंक यू।
0: बहुत खूब।
2: के सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीरवी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय नटखट रंगीले सावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया।

0: हम बात कर रहे हैं शारिब जी से, और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में और बैनर आपके फहरिस्त में हैं, आपके खाते में शामिल हैं। हम बात करते हैं अगर स्लम डॉग मिलेनियर की, काफी
1: जी,
0: चर्चित पॉपुलर फिल्म रही है, उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ?
1: उस वक्त एक्चुअली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। तब मैं चैनल वी में काम कर रहा था। 4 साल एमटीवी में गुजारने के बाद मैंने चैनल वी ज्वाइन किया था, और उस वक्त मेरे एक दोस्त, मेरे एमटीवी के ही एक मतलब एक्स कलीग जो है स्वप्निल कोरे, तो वो उसमें असिस्ट कर रहे थे कास्टिंग में, और उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया। रोल क्या, वो तो मतलब एक सीन था जो मतलब अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो वो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या कोई जूनियर आर्टिस्ट से करवा देते, बट मेरा उसके लिए बाकायदा ऑडिशन लिया गया। और डैनी बॉयल साहब मेरे ऑडिशन में मौजूद थे, वो मुझे क्यूज दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर का, तो मैं मतलब एकदम हक्का बक्का था कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का, मतलब मैं आकर चला भी जाऊंगा, कुछ वो नहीं था उस
0: जी
1: ऐसे रोल के लिए डायरेक्टर कभी रहते भी नहीं है, वो तो सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते। तो
0: जी
1: बट इतना उन्होंने मुझे उस वक्त अप्रिशिएट किया था मेरे काम को, और इतनी तारीफ की थी, और मतलब डैनी बॉयल साहब हैं
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल भी मतलब रत्ती भर भी मतलब उनमें कोई मतलब एयर नहीं था, ना कोई ईगो था, ना कोई ऐसे अहम था कुछ। इतना प्यारा इंसान, बहुत मतलब मेरे लिए स्लमडॉग मिलियनेयर में मेरा शूट एक ही दिन हुआ था,
0: जी
1: लेकिन उन्होंने 2 दिन का रखा था बफर। फर्स्ट डे जो है मैं शूट नहीं कर पाया था, और नेक्स्ट डे शूट हुआ था, तो फर्स्ट डे जब पूरा दिन मैं बैठने के बाद में उन्होंने बोला पैकअप हो गया, तो पैकअप के वक्त डैनी साहब मुझे मिले, और पहले उन्होंने माफी मांगी कि हम शूट नहीं कर पाए।
0: अच्छा
1: उनको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने,
0: बिल्कुल
1: हाँ मुझसे मिलने की जरूरत थी, बट उसके बावजूद वो आए। और मैंने ऑडिशन के टाइम एक लाइन ऐसी इम्प्रोवाइज की थी कुछ, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डाली थी, वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी।
0: जी
1: तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, वी हैव एडेड योर लाइन, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। मतलब मैं कभी जिंदगी भी नहीं भूल सकता कि इतने बड़े आदमी ने मतलब इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे, जो मैं मतलब हमेशा याद रखूंगा। मैं 50 बार ये किस्सा मैं 1000 लोगों को सुनाता
0: और जब तक है जहां उससे भी
1: हूँ।
0: आप रिलेट किए, उससे कैसे जुड़ना
1: हाँ,
0: हुआ?
1: उसमें मैं असल में जब मैंने डिसाइड किया 2008 एंड मतलब 2009 के आसपास में मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था, और फिर 3 साल तक बहुत सारे ऑडिशन हुए, सैकड़ों, और सिर्फ रिजेक्शन मिले। एक ऐड किया था, एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला था।
0: जी
1: तो फिर से मुझे, क्योंकि कर्जे चढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी। एक चैनल था यूटीवी बिंदास, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया एज एवीपी प्रोग्रामिंग, और वहाँ कुछ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फ़ोन आया,
0: अच्छा
1: जो YRF में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो। तो उन्होंने मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी वो यूट्यूब पर देखी, और वो देखकर फिर उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया। तो शुरुआत में 3 राउंड जो हुआ उसमें सिर्फ मैंने रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उनके
0: जी
1: सीन्स के साथ
0: अच्छा
1: ऑडिशन दिया, फिर वो हुआ। उसके बाद मुझे जब वो पड़ाव पार हो गया, उसके बाद मुझे जो जैन के जो जो मैं प्ले करने वाला
0: जी
1: था
0: जैन
1: उसके सीन्स दिए, और फिर उसके 3 राउंड हुए। और मेरा सबसे पहला ऑडिशन भूमि पेडनेकर ने लिया था, उस वक्त
0: अच्छा
1: वो शानू की असिस्टेंट थी,
0: हाँ।
1: तो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये चीजें जो मेरे साथ में हो रही थी, और उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था, और थैंकफुली जो मेरी इमीडिएट बॉस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो मैं आराम से मतलब
0: मौका
1: कल्टी
0: मिल गया
1: मौका मिलते ही मतलब
0: आपको
1: मैं मतलब ऑफिस से चला जाता था
0: जी
1: और ऑडिशन देके आ जाता था। तो फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे इन्होंने फोन किया, शानू ने, कि यार नहीं हो पा रहा है और किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया है। तो मुझे लगा ठीक है, अब इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं, मैं वैसे भी मतलब मैंने सोचा था कि ये भी रिजेक्ट ही होने वाला हूँ। तो मैंने फिर एक और थोड़ा सा उदास हुआ और फिर काम पे लग गया अपने, क्योंकि नौकरी थी एटलीस्ट। बट एक हफ्ते बाद फिर से मुझे फोन आया, और इस बार यशराज के ऑफिस से आया था, और अक्षत कपिल जो उस वक्त यश जी के चीफ थे उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि आप एक बार और ऑडिशन दे सकते हैं क्या। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार और ले लो। तो मैं ऑफिस गया उनके YRF में, और वहां पर एक बार फिर से ऑडिशन दिया, और मैं फिर वापस अपने ऑफिस आ गया। तो ऑफिस पहुंचा ही था मैं कि आधे घंटे में फोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए, 4 दिन बाद शूट है, दो
0: अच्छा
1: दिन बाद
0: उसी
1: या
0: के लिए जिसमें पहले नहीं हुआ था।
1: हाँ, सेम रोल का ही
0: अच्छा
1: मैंने इतनी बार
0: हाँ हाँ
1: ऑडिशन
0: हाँ
1: लिया
0: हाँ
1: और वो फिर फाइनली मतलब हो गया, क्योंकि शायद वो उसके पहले जिसको कास्ट किया था वो भी थोड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों हैंडसम और गुड लुकिंग, दोनों शाहरुख खान साहब भी हैंडसम तो ये भी हैंडसम, तो उन्हें शायद कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए
0: हाँ
1: था
0: वो कुछ
1: और
0: अलग
1: मैं
0: क्लिक
1: उस
0: कर
1: वक्त एकदम
0: गया।
1: ऐसा था 90 किलो का
0: तो हमेशा
1: तो
0: ये जो मूवीज का जो प्रोसेस है ये ऑडिशंस, क्या इतना लंबा होता है या अलग-अलग प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, बार
1: अलग
0: बार
1: अलग
0: राउंड्स देने
1: प्रोजेक्ट पे,
0: पड़ते हैं?
1: हाँ जितनी बड़ी फिल्म होती है उतने ज़्यादा राउंड्स होते हैं फिल्म
0: अच्छा
1: में ऑडिशंस के। अभी तो मैं वो ऑडिशन प्रोसेस तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसी फिल्म होती है जिसके लिए ऑडिशन की बहुत ज़रूरत हो तो वो भी मैं करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब जो वो फर्स्ट 3 साल जो मैंने ऑडिशंस दिए थे उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ऑडिशन मेरा रियाज था एक्चुअली, क्योंकि मेरी कोई फिल्म में या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना मैंने थिएटर किया था, ना कोई एक्सपीरियंस था एक्टिंग करने का। सिर्फ मैं एमटीवी में मैंने मतलब काफ़ी जो हम स्केच कॉमेडीज करते थे वो उसमें मैं कुछ कुछ कभी एक्टिंग कर लेता था, बकरा, एमटीवी बकरा करता था, अदरवाइज मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो उन ऑडिशंस में मैंने बहुत कुछ सीखा उसके दौरान और उसके जरिए मेरा रियाज हुआ एक्टिंग
0: बिल्कुल
1: का।
0: बिल्कुल। लेकिन ये ऑडिशंस में जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ आप जुड़े, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्शन भी मिला कहीं ना
1: बहुत
0: कहीं,
1: सारे,
0: बहुत
1: हाँ
0: सारे। तो कैसा महसूस हुआ, या वो हिम्मत कहाँ से आती है, मोटिवेटेड कहाँ से रहते हैं आप कि नहीं अभी चलते जाना है आगे, कोई बात नहीं रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं, आगे और कोशिश
1: वो
0: करेंगे? कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देते हैं अभी, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ होगा?
1: नहीं, मैं वो एक तो अब मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब इसलिए किया था क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है बहुत और अगर अब वो मतलब वो लव फॉर द जॉब जो है ना वो मतलब छोड़ने नहीं देता, और मैं थोड़ा बचपन से ही काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ और मेरे आसपास भी काफ़ी एनकरेजिंग फ्रेंड्स और फैमिली, खासकर मेरी बेगम, तो
0: बिल्कुल।
1: वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रही और उनकी ही बदौलत एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर पाया, वरना एक दो बार ऐसा आता था मौका कि मतलब मन करता था कि यार बेकार में मैं सबको परेशान कर रहा हूँ इसके चक्कर में, बट उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मतलब वो नहीं है हम सब
0: हम सब
1: इसमें
0: साथ
1: तुम्हारे
0: में
1: साथ
0: हैं।
1: में हैं, तो वही और खुद पे भरोसा था कि यार टैलेंट तो अपने में है, कूट कूट के भरा है बस
0: बिल्कुल।
1: जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो हो जाएगा
0: वो जो कूट कूट के भरा है टैलेंट, वो नजर आया फिल्मिस्तान फिल्म
1: जी
0: में, तो
1: हाँ
0: वहां पर ऐसा लगा कि बस आप तो एंटरटेनमेंट के लिए बने। उसमें डायलॉग भी है
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: कि
1: उसके
0: मेरा
1: डायलॉग मैंने
0: जन्म ही,
1: लिखे हैं फिल्म में
0: हाँ वो आप ही ने लिखे हैं कि मेरा जन्म ही एंटरटेनमेंट के लिए हुआ
1: यस
0: है।
1: यस
0: तो ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे लिखे, इसके बारे में
1: फिल्मिस्तान,
0: थोड़ा सा।
1: मैं असल में जब मैं तब ये यूटीवी मंदास में ही नौकरी मेरी चल रही थी, उसी दौरान जब जब तक है जान के ऑडिशंस में दे रहा था, तो वो जब जो मेरे वहाँ पे 3-4 महीने जो मैंने वहाँ पर गुजारे थे उस वक्त नितिन ने उस पर काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पर फिल्मिस्तान की, तो मेरे ऑफिस खत्म होने के बाद मैं नितिन के घर जाता था और जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे सुनाते थे और मैं आई वुड वर्क एज अ बाउंस बोर्ड, मैं कहता था हाँ ये अच्छा है, बहुत सही है, ज्यादातर वो सब अच्छा ही होता था। नितिन बहुत ब्रिलियंट राइटर है, बहुत कमाल जब भी वो लिखता है। फिर हमने साथ में थोड़ा थोड़ा और वो करना शुरू किया और नितिन को भी जब मैं जब तक ही जान में सेलेक्ट हुआ उसी दौरान नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गए, और जब हम लिख रहे थे तब नितिन बोलता था कि ये जो रोल है ये मतलब तेरे लिए एकदम करेक्ट है और मैं सोचता था कि कहाँ वो मुझे कास्ट करेगा अपनी पहली फिल्म में मेन लीड में वो भी, बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया सनी अरोरा के किरदार के लिए और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तो वो एक जब मैंने मतलब सब छोड़ छाड़ के 3 साल नौकरी पे मैं जब ज्वाइन किया और 3 महीने में मुझे जब तक है जान मिल गई और उसी दौरान फिल्मिस्तान भी आया,
0: फिल्मिस्तान।
1: तो वो मैं मतलब बड़ा अचंभित था कि मतलब जिस तितली के पीछे इतने साल दौड़ा और उसको पकड़ने की कोशिश की वो मेरे हाथ ही नहीं आई, जब थक हार के कहीं बैठ गया तो अपने आप मेरे कांधे पे आके मतलब जो है वो बैठ गई
0: बिल्कुल। कहते हैं ना जिसे आप चेज करते हैं वो मिलता नहीं है, जब आप छोड़ देते हैं सरेंडर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिल
1: वो
0: जाता
1: मिल
0: है,
1: जाता है, तो वही
0: ऐसे ही
1: हुआ
0: कुछ
1: मेरे
0: हुआ।
1: साथ में और इस तरीके से फिल्मिस्तान भी हुई और फिल्मिस्तान ने फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी एकदम।
0: बिल्कुल। यहां पर आपकी पसंद का गीत?
1: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया था कि फिल्मों में मतलब आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना उनका कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जिंदगी के सफर में, और मुझे भी ये गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
0: बिल्कुल, ये सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: हम बात कर रहे हैं आज शारिब हाशमी जी से। तो फिल्मिस्तान की जब बात चली है तो उसका सुर कैसे पकड़ा और कितना करीब है सनी शारिब से?
1: सनी और शारिब वैसे तो काफी, मतलब बहुत, मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सनी अरोरा मतलब मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, और उसी लिए मुझे उसे परफॉर्म करते वक्त मुझे लगा रही ये तो बहुत आसान होगा, यही सब मिमिक्री करना है, डांस करना है, नाचना गाना है और मस्ती
0: उसके
1: करनी
0: डायलॉग
1: है।
0: भी आपने लिखे हैं?
1: उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं, हाँ, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा। बट जब हमने शूट करना शुरू किया तब सिंपल चीजें भी, क्योंकि पहली बार एक तो मैं मेन लीड कर रहा था, वो एक प्रेशर भी था, और मैं कर रहा हूं तो वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे उसका एक प्रेशर था, और नितिन का जो मुझ पे भरोसा था, मैं उसे मतलब उस भरोसे पे पूरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैं बहुत उस तरीके से उस वक्त पता नहीं थोड़ा एक प्रेशर था, और वो शायद फिर परफॉर्मेंस में नजर आने लगा, और नितिन मुझे बार बार कह रहा था कि

0: शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा, थोड़ा। तो मुझे एक दो दिन लगे थोड़ा अपना सुर समझने में, अपने किरदार में, मतलब पूरी तरह से थोड़ा ढलने में, और सही तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की वो
1: वो
0: परफॉर्म
1: पेश
0: करने
1: करने
0: में,
1: में।
0: जो है मुझे थोड़ा 2 दिन लगा सेम पेज पे आने में नितिन के साथ।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब मैं आया तो फिर, और जब नितिन कुछ अच्छा बोलता था तो मेरा पूरा ऐसे, मैं बच्चों की तरह
1: जो कि
0: नाचता
1: हमने उसमें भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखा, बिल्कुल दिल खोल के, जिसे बोलते हैं ना कि बस यही मेरी, यही सब कुछ है, उस तरह से आपने सब कुछ उसमें डाल दिया था,
0: जी।
1: पूरा एंटरटेनमेंट। और
0: थैंक
1: वो
0: यू।
1: डायलॉग भी है उसमें कि
0: हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ
1: पैदा
0: हूँ, और जब मैं लोगों
1: हुआ।
0: को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता
1: जी हाँ, फिल्मिस्तान के बाद आपने राम सिंह चार्ली करके भी फिल्म की है, और उसमें भी
0: जी।
1: नितिन कक्कड़ जी हैं और कुमुद मिश्रा, उन्हीं
0: हाँ
1: के साथ काम किया है।
0: बिल्कुल,
1: तो फिर से एक टीम के साथ फिर से काम करना इजी भी होता है, और
0: बहुत।
1: कैसा ये
0: हाँ,
1: अनुभव है?
0: नितिन के साथ तो मेरा अलग कंफर्ट लेवल ही अलग है। हमारी, हम बहुत गहरे दोस्त भी हैं, और साथ में मैंने राइटिंग का काम तो सिवाय नितिन के और किसी के साथ किया ही नहीं है, फिल्म राइटिंग। तो मैंने उनके लिए, और मित्रों, एक फिल्म है उसके लिए भी डायलॉग्स
1: हाँ
0: लिखे हैं,
1: जी,
0: नोटबुक के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, और राम सिंह चार्ली तो हमने तकरीबन साथ में लिखी है, बट मेजर काम हमेशा राइटिंग में नितिन का ही होता है। वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। हमने सबसे पहली बार मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नितिन ने मुझे बताया था जब हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में गए थे फिल्मिस्तान को लेकर, वहाँ पर फिल्मिस्तान का वर्ल्ड प्रीमियर था, और तब नितिन ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला था कि एक चार्ली चैपलिन के इम्पर्सोनेटर की अगर कोई कहानी हो और उसको अगर हम लोग कुछ करें तो कैसा रहेगा। और मैं तो सुन के ही बहुत खुश हो गया था यार, ये तो कमाल होगा। और फिर हमने धीरे धीरे, नितिन ने थोड़ा उसको डेवलप करना शुरू किया, फिर हम साथ में बैठ के उस पर काम करने लगे, और करते करते करते राम सिंह चार्ली की स्क्रिप्ट तैयार हो गई, और हम बहुत खुश थे स्क्रिप्ट के साथ। और पिच करना शुरू किया तो कोई तैयार नहीं हो रहा था प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई कह रहा था कि कोई नाम लेकर आओ, कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ। फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमको इस चीज़ पे इतना भरोसा है तो हम खुद ही क्यों ना प्रोड्यूस करें। और हमने फिर, मैंने, नितिन ने और हमारे एक और पार्टनर है उमेश पवार, हम तीनों ने मिलके अपने पैसे लगाकर हमने फिल्म प्रोड्यूस की, और कुमुद जी को हमने टाइटल रोल में कास्ट किया, दिव्या दत्ता, फर्रुख सियार, और बहुत अच्छी कास्ट जमा की, आकर्ष खुराना, और बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा वो फिल्म बनाने का। एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने, और आगे शायद पता नहीं कब करूँगा, या करूँगा भी, यानी वो भी नहीं पता। लेकिन अगर सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म मैंने प्रोड्यूस की तो वो भी मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि यस, मैंने राम सिंह चार्ली प्रोड्यूस की है।
1: मैं प्रोड्यूसर
0: मैं प्रोड्यूसर हूँ तो राम
1: हूं।
0: सिंह चार्ली का हूँ, जो
1: जी।
0: एक खूबसूरत फिल्म है। और
1: बिल्कुल।
0: यस,
1: तो जब हम बात करते हैं आपकी नोटबुक राम सिंह चार्ली की, 47 डिग्री की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल और सहज मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी फिल्में हैं ज्यादातर, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से आता है? ये शायद आपने अनुभव किया हुआ है, या ज्यादातर आपकी शॉर्ट फिल्म्स या कहानियां या लेखनी जो है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर है।
0: मे बी शायद मैंने वही लाइफ जी है, मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ मैं,
1: जी,
0: वही रचा
1: और हम
0: बसा है
1: उससे
0: अंदर।
1: काफी रिलेट कर पाते
0: हाँ,
1: हैं।
0: टोटली रिलेट कर पाते हैं। और मैं, क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या कितना भी कुछ भी हो, आपको काम तो वैसे ही मिलेगा जैसे आप दिखते हैं। तो मैं, मेरे ख्याल से वही मिडिल क्लास वाला, मतलब चेहरा भी वही है। आम आदमी वाला, तो वैसे किरदार भी मुझे मिलते हैं, इसीलिए फिल्मिस्तान का सनी अरोरा, या तरला का नलिन दलाल, या जो भी मैंने ज्यादातर किरदार निभाए हैं उस हिसाब से, जो शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने, अगर महरूनी में जो
1: हाँ,
0: किया है,
1: मेहरूनी की बात करते हैं। हाँ
0: हाँ,
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो वो सब वैसे ही है। इट्स ओनली 47 डिग्रीज में भी वैसा ही एक ट्रैफिक हवलदार का एक किरदार है।
1: जी।
0: तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हम जितने अलग किस्म के किरदार निभाएं उतना अच्छा होता है, और थैंकफुली मुझे मिलते भी हैं डिफरेंट किस्म के किरदार निभाने को, बट ज्यादातर जो है वो एक, वो हाँ, मिडिल क्लास वाला क्या
1: और
0: कहेंगे
1: दर्शकों
0: उसको,
1: से भी वो कहीं ना कहीं
0: इमेज
1: जुड़ाव
0: तो
1: आ
0: है।
1: जाता है।
0: हाँ,
1: यहां पर आपकी पसंद का कोई गीत?
0: ये मिडिल क्लास से मुझे याद आया, मतलब
1: हाँ।
0: काफी, एक तो जो अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में होती थी ना उस वक्त की, वो मुझे बहुत, खासकर छोटी सी बात मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है, और घरौंदा, घरौंदा में जो एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, वो प्लीज, तुम्हें हो ना हो मुझको।

0: बात तरला की जैसे आपने की, बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड के रूप में वो किरदार है, तो कहीं ना कहीं निजी जिंदगी में भी काफी सपोर्टिंग रहे हैं आप कहीं ना कहीं. और जब आप एक चुनौती भरा वो फेज से गुजर रहे थे, वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तो आपकी वाइफ जो है नसरीन जी आपके साथ रही हैं, कैसे उस दौर से आप निकले हैं? अगर आप अपने निजी कुछ अनुभव बताना चाहें तो कैसे वो आपकी सपोर्ट रही हैं?
1: वो तो मतलब जब मैं ऑडिशन देना शुरू किया था और तब अच्छी खासी एक नौकरी कर रहा था मैं, एक लाइफस्टाइल थी, अब उसको बच्चा भी हो चुका था, तो उसके हिसाब से जो है उसको मेंटेन करने के चक्कर में और साथ में दाल रोटी के लिए और स्ट्रगल भी कंटिन्यू रखना है, तो वक्त गुजरता जा रहा था, पैसे कम होते जा रहे थे, कम क्या खत्म हो गए एक पॉइंट के बाद, और जो सेविंग्स थी सारी उड़ गई, जेवर भी मैंने मतलब उनसे मांगने शुरू कर दिए और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की, घर जो खरीदा था नौकरी के दौरान वो भी बेच दिया, बट उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब मेरे पैशन को और मेरे ड्रीम को और मेरे टैलेंट पर उनको काफी भरोसा था, उनको ये था कि यार कुछ ना कुछ तो इसका होने वाला है इस बंदे का, और जितना मुझे खुद पे भरोसा था शायद उससे कहीं ज्यादा उनको मेरे काम पर यकीन था, लेकिन उस वक्त जब गुजर रही थी तब मुझे पता है कि कैसे उन्होंने उसको हैंडल किया, कैसे घर मैनेज किया, कैसे मुझको हैंडल किया और कैसे हमने वो मुश्किल दौर गुजारा है साथ में, वो हम दोनों को ही पता है
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ी
1: और
0: ताकत रही हैं
1: जी
0: आप.
1: हाँ, वो मेरी मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत रही हैं और उनके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं होता, और जब मतलब चीज़ें होनी शुरू हुई अच्छी और थैंकफुली मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, तो फिर वो उन्होंने बोला भी कि मैंने सही घोड़े पे पैसा लगाया
0: अभी उस सीरीज की बात करते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, द फैमिली मैन.
1: जी
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ, और ये जेके का किरदार आपको लगा था उस वक्त कि कुछ तो कमाल कर जाएगा, मुझे लोग जेके के नाम से पुकारने लगेंगे, ज्यादा जानने लगेंगे?
1: जेके जब मतलब हुआ तब मैं जिस पॉइंट पे आया ये किरदार मेरी जिंदगी में, उस वक्त मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत थी, बहुत करियर मेरा एक एकदम लो पर था, बहुत डाउन था मैं फाइनेंशियली, कि फिल्मिस्तान हो चुकी थी जब तक जान हो चुकी थी, उसके बाद

0: बावजूद मैं फिर से ऑडिशंस दे रहा था, फिर रिजेक्शंस हो रहे थे, फिर काम नहीं मिल रहा था। एक दो फिल्में हो जाती थी और फिर मतलब लंबा एक गैप होता था, पैसे फिर ख़त्म होने लगे थे। तो वो बहुत अजीब सा मतलब दौर था, और ये और ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा सक्सेस का टेस्ट चखा था फिल्मिस्तान के ज़रिए, जब तक है जान के ज़रिए, और अब फिर से फिर ऑडिशन देना पड़ रहा था, फिर भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, फिर पैसों के बारे में सोचना पड़ रहा था कि अब कहाँ से करें, क्या करें। तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। उस वक्त मुझे एक कॉल आया मुकेश छाबरा भाई के ऑफिस से, और ये JK जो है, उस वक्त JK नाम तो नहीं था उसका, घोष था उस कैरेक्टर का नाम, बंगाली कैरेक्टर था। तो मैंने ऑडिशन दिया वो, और जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल तुम न्यूट्रल उसमें ही करो, कोई बंगाली एक्सेंट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर दो, बाद में हम देखते हैं। और जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। आपको थोड़ा पता चल जाता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो, और अच्छा अगर ऑडिशन होता है तो आप फिर फ़ोन का इंतज़ार भी करने लगते हैं कि यार अब
1: बिल्कुल.
0: घंटी बजेगी, अब घंटी बजेगी। और हफ्ता 10 दिन लग गया, और उसके बाद लेकिन फ़ोन आया। और मेरी पहले DK साहब से मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन तो अच्छा था लेकिन ये बंगाली में, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप बंगाली में एज ए बंगाली फिट होंगे। नेचुरली आपको कौन सा कोई एक्सेंट या डायलेक्ट जो है आप में, मतलब नेचुरली आप किस में वो कर सकते हैं, आप अपने आप को
1: कंफर्टेबल है.
0: कंफर्टेबल हैं। तो मैंने बोला मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार हाँ महाराष्ट्रन कर सकते हैं इसको। फिर नाम की तलाश शुरू हुई कि इसका नाम क्या होगा, घोष हट गया अब। तो फिर बहुत सारे नामों के ऑप्शंस मैंने भी निकाले, तांबे और ये वो, बहुत सारे मात्रे।
1: जी.
0: फाइनली फिर वो JK जो है, JK तड़पदे नाम जो है लॉक किया गया। और फिर जब आया, जब हम शूट कर रहे थे तभी भी एक, इनफैक्ट ऑडिशन के वक्त ही मुझे एक इंट्यूशन हुआ था, मतलब मैं उसमें एंटर हो गया, काम मिल गया मुझे, तो लाइफ में कुछ तो एक
1: बड़ा
0: बदलाव
1: होगा
0: आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है।
1: जी.
0: और वो इंट्यूशन मेरा बिल्कुल करेक्ट था। जैसे ही फैमिली मैन आया Season 1, और वो OTT पर, मतलब एक एक अलग ही किस्म की मतलब एक्साइटमेंट आई लाइफ में मेरे,
1: बिल्कुल.
0: और लोगों ने बहुत देखा उसे, और फैंस बढ़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे सब जगह। Season 2 आया और रिस्पॉन्स जो है वो डबल हो गया। तो वो मेरे लिए मतलब फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर को भी लोगों ने पसंद किया।
1: बिल्कुल.
0: स्कैम आया, जबकि उसमें मेरा एक सीन था, उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया,
1: जी.
0: और फिर काम और मिलता गया। लेकिन शुरुआत उसकी फैमिली मैन से हुई, और मतलब वो मेरी ज़िंदगी में बहुत एक अहम जगह रखता है
1: बिल्कुल.
0: फैमिली मैन, और JK ने मुझे बहुत प्यार दिया है।
1: तो इसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर फैमिली मैन की अगर हम बात की करें, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज आप खुद करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग ऐसे सुनने को आते हैं कि ऐसा लगता है इंस्टेंट आ गया है, ये तो कुछ तो अलग आ गया है. तो क्या वो सब लिखा रहता है या?
0: नहीं, तो लिखी भी होती है स्क्रिप्ट पूरी बाकायदा, और सुमन कुमार जो हैं वो हमारे जो राइटर हैं, और First Season में सुमित अरोरा ने डायलॉग्स लिखे थे, और सेकंड में सुपन और सुमन भी थे। तो वो पूरा सब कुछ लिखा होता है, और लेकिन
1: कहीं
0: राज
1: कहीं
0: एंड
1: वो
0: DK जो है
1: पंच.
0: ना, हाँ वो
1: हाँ.
0: कभी कट नहीं करते हैं। जब सीन खत्म हो गया जो पेपर पे था उसके बाद भी वो कभी कट नहीं करते। और मनोज सर मतलब इम्प्रोवाइजेशन के किंग हैं एकदम।
1: हाँ,
0: तो
1: बिल्कुल.
0: वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर वो कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ, और वो जब तक कोई हंसता नहीं तब तक वो कट नहीं होता।
1: मुझे लगता है उनके साथ वो केमिस्ट्री कुछ अलग ही है.
0: हाँ, और उनके साथ बहुत मजा आता है। उनके साथ आपको मतलब आपके एकदम टोज पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे एक के बाद एक मतलब कमाल के डायलॉग्स कहाँ से लेकर आते हैं। कमाल, बहुत ही मजा आता है उनके साथ काम करने में। और इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं, और उसमें से कुछ जमती हैं, कुछ नहीं जमती हैं, वो तो हमारा काम है, मतलब ऐसा
1: बिल्कुल.
0: कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ छूट मिलती है वो करने की, राजन
1: बिल्कुल.
0: डी के बहुत हमें मतलब आज़ादी देते हैं, जहाँ पे हम कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं तो बोलते जरा कंट्रोल। फैमिली मैन का जब शूट आता है तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड रहता हूँ लाइफ में। मैं मतलब एकदम आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स कि अरे यार आज फिर से कुछ बढ़िया सा शूट होने वाला है, आज मनोज सर के साथ शूट है, राजन डी के हैं, और मैं JK बनूंगा, और मज़ेदार कुछ कमाल करेंगे। और हर दिन मैं उसी माइंडसेट में रहता हूँ जब भी फैमिली मैन का शूट होता है। तो अब मैं सीजन 4 का शूट जल्दी से शुरू हो उसका इंतजार कर रहा हूँ।

0: हमें भी इंतजार है, बहुत बेसब्री से इंतजार है हमें.
1: थैंक
0: अच्छा, इन सीरीज में जहाँ पे एक्शन सीरीज होती है तो पहले कुछ वर्कशॉप होती है या फिर जैसे स्टंट्स किए जाते हैं, वहां पर कैसे हेल्प होती है?
1: नहीं
0: स्टंट्स आप
1: वर्कशॉप
0: करते हैं, कुछ एक स्टंट्स आप करते हैं या फिर
1: नहीं, जो डिफिकल्ट होते हैं तो वो हम खुद ही हाथ उठा लेते
0: उठा
1: हैं,
0: लेते
1: और वो
0: हैं?
1: कोई बोलता भी नहीं है कि
0: जी
1: आप करो। अगर
0: हाँ
1: डिफिकल्ट
0: हाँ
1: होते हैं तो वो उसके लिए जो स्टंटमैन है वो आपका पूरा वो सीन करते हैं, और जहाँ पे जो हम खुद कर सकते हैं भागना दौड़ना थोड़ा सा पंच और वो सब होता है, तो वो वहाँ पर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं और रिहर्सल होती है, और उसके बाद में फिर आप भी ग्रूव में आ जाते हैं, वो
0: यूज्ड टू हो जाते
1: यूज
0: हैं.
1: टू हो जाते हैं। कहीं पर थोड़ा गिरना पड़ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे हैवान में था, मतलब मुझे वो टेबल पे जो है वो मतलब फेंकते हैं और उसी से लुढ़क कर मुझे नीचे गिरना था, और वहीं तो वो पूरा शॉट था, तो मैं टेबल पे गया फिर वहाँ से ज़मीन पे गिरा। लेकिन वो ये भी बहुत बेसिक है
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल.
1: वो हम कर लेते हैं, बट अदरवाइज जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो तो स्टंटमैन ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात भी नहीं है, मेरे तो नहीं है।
0: और हैवान में आपका किरदार, अगर आप कुछ बताना चाहें, किस तरह से कुछ अलग है अभी तक के किरदारों से?
1: बिल्कुल, हैवान में मेरा काफी, मैं मतलब एक नेगेटिव शेड है मेरे कैरेक्टर में, लेकिन उसमें मैं ह्यूमर भी है, मस्ती भी है, कॉमेडी भी कर रहा हूँ। दो सीन्स हैं मेरे जो काफी, जिसमें एक असरानी साहब के साथ है, एक राजपाल जी के साथ में। तो असरानी साहब के साथ तो जब शूट हो रहा था, मतलब मेरे लिए, मतलब दोनों ही मेरे बहुत पसंदीदा
0: बिल्कुल.
1: एक्टर्स हैं और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। असरानी जी का आखिरी सीन था वो, मेरे ख्याल से उसके बाद, उसके 10 दिन बाद उनका देहांत हुआ,
0: जी.
1: तो मैं मतलब अब खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं हैवान का हिस्सा बन पाया, प्रियदर्शन जी के साथ काम किया,
0: जी.
1: सैफ अली खान साहब के साथ, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा वो।
0: कोई गीत जो आप हमारे सुनने वालों को सुनवाना चाहते हैं?
1: किशोर दा का एक और काफी रेयर सॉन्ग है जो लोग कम सुनते हैं, जो कि है सैड सॉन्ग, लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा यॉडलिंग का चीज उन्होंने की है, जो आगले लग जा फिल्म से है, ना कोई दिल में समाया, वो मुझे बहुत पसंद है, अगर वो आप प्ले करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल.

दिलचस्प बातों का सिलसिला चला है शारिब जी के साथ। और जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया ही है, अब जुड़े हुए हैं, असुर की बात हुई, स्कैम की बात हुई, हैवान

0: भी आई है, द फैमिली मैन, बहुत सारी फिल्मों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे रिजेक्शन भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट
1: हाँ
0: पार्ट है। तो जब कभी ऐसा कुछ हुआ, उससे कैसे आपने अपने ऑडिशन के तरीके को या फिर नए प्रोजेक्ट में जब आप जाते हैं तो उस तरीके को कुछ बदलाव आया? और ये मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे नए एस्पायरिंग एक्टर्स आना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है जब बार बार रिजेक्शन झेलते हैं या एक वक्त लंबा गुजर जाता है कि अब हम यहाँ टिके रहें या बस हमारे लिए ये फिल्मी सफर नहीं है। तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, आप अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं?
1: उसको तो मतलब हैंडल करने के लिए आपको अपनी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी करनी चाहिए क्योंकि बहुत इतनी बार ना सुनना ना आप पर वो असर कर सकता है बहुत गलत तरीके से। लेकिन एक ये जो ऑडिशन होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सेलेक्ट करने के। अगर आपको वहाँ पर एक तो ऑडिशन पे बुलाया है यानी कि वो समझते हैं कि आप काबिल हैं, लेकिन उसमें आप उसमें फिट भी हो रहे हैं और दूसरे कास्ट में भी वो आप सबके साथ में मैच कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कास्ट करने से पहले, तो आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप उस रोल में कितना फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए और अच्छा करने का सोच कर आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करते ही रहनी चाहिए, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नया नया काम लोगों का देखना चाहिए, नाटक करना चाहिए, देखने चाहिए। तो वो उससे मेरे ख्याल से जो है वो जब ये ऑडिशन वाला दौर है ना वो आपका बेहतर होगा। और टिके रहना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, कोई टिक पाता है, कोई कभी किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे मेरी खुद की, मुझे 3 साल बाद फिर से नौकरी करनी पड़ी थी। तो अगर ऐसा भी हुआ तो ठीक है, कर लेनी चाहिए, कोई जिंदगी जो है वो सिर्फ एक काम नहीं होता है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो आपके साथ में या आपके साथ लोग हैं वो जिम्मेदारियां भी आप ही की हैं और उनको निभाना भी आपका कर्तव्य है। अगर वो है तो करिए, काम करना जरूरी है, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। उसके लिए कभी जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं इसमें रिजेक्ट हो गया या मैं उसमें हो गया, काम करते रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। मतलब किसी तरीके से आप टिके रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप गेम में जमे हुए हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर
0: तभी
1: गेम में हैं
0: मौके।
1: ही नहीं तो आपको आगे कोई मौका मिलेगा ही नहीं
0: आजकल बायोपिक का जमाना है, कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाह रहे हैं या लुकिंग फॉरवर्ड टू कोई खास एक दो किरदार ऐसे कि ये तो मुझे करने का मन है?
1: मैं तो मतलब वैसे मेरा डील डॉल वैसा है ही नहीं, ना चेहरा है ना कद है, लेकिन मेरा किशोरदा की बायोपिक तो मेरी बड़ी मतलब क्या कहते हैं उसको,
0: कमाल हो जाएगा।
1: बहुत हाँ, लेकिन वो खाली वो सपना है वो तो मुझे पता है लेकिन हाँ अगर किशोरदा की बायोपिक बने तो मैं उसमें किसी भी तौर पे किसी न किसी किरदार में उसमें रहना
0: जुड़ना
1: चाहूँगा,
0: चाहेंगे।
1: जुड़ना चाहूँगा। जैसे अभी आर डी बर्मन जी की लाइफ पर एक फिल्म बन रही है, मैं जरूर, काश उसमें मुझे कुछ मिले, लेकिन
0: क्या बात है, हम चाहेंगे कि जरूर आपका ये सपना पूरा
1: हाँ
0: हो। और बाकी जब शारिब शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आपका सुकून जिसे बोलते हैं, मन का सुकून?
1: मैं घर पर रहता हूँ दोस्तों के साथ में वक्त गुजारता हूँ कि घर पे रहता हूँ, फैमिलीज जो हैं मतलब अपने दोस्त या तो घर पर बुलाता हूँ या दोस्तों के घर पर जाता हूँ और फिल्में देखता हूँ, सीरीज देखता हूँ, गाने सुनता हूँ बहुत, और अगर ज़्यादा वक्त है तो फिर परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, म्यूज़िक बहुत पसंद है,
0: म्यूजिक तो हम जानते ही आपको।
1: फिल्में बहुत पसंद है,
0: जी
1: तो मतलब टाइम तो बहुत कम है एक्चुअली
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने अपने फिल्मी सफर के साथ साथ जिंदगी के बहुत से अनुभव साझा किए हमारे साथ
1: जी
0: और बहुत मजा आया बातचीत करके।
1: थैंक यू
0: हम चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी,
1: थैंक यू थैंक
0: और आप
1: यू
0: बार बार आए और हमें बार बार आपसे बातें करने का मौका मिले विविध भारती के जरिए।
1: थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया, मेरे लिए मतलब आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग हियर, और पूरा एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है विविध भारती के साथ में जी, मतलब आंख जिससे खुलती थी और सोने से पहले जिसको सुना करते थे, आज
0: जी
1: मैं वहां बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा फिर से
0: जी
1: आएंगे
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45

एफएम 102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों को संबोधित हमारा आज का युवा वाणी कार्यक्रम।

दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ आज मैं आशीष वर्मा। दोस्तों हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन एक चीज है जिसे हम थोड़ा बहुत रोक सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया। शायद संयम की शुरुआत यहीं से होती है। क्रोध आया लेकिन हमने अपने शब्द रोक लिए, मन हुआ लेकिन हमने जरूरत और इच्छा के बीच में फर्क कर लिया, किसी ने कुछ कहा लेकिन हमने उसी क्षण जवाब देने के बजाय थोड़ी देर चुप रहना बेहतर समझा, यही छोटा सा ठहराव हमें बार बार बड़ी परेशानियों से बचा लेता है। संयम का मतलब जीवन से भागना नहीं है, संयम तो जीवन को संभाल कर जीने का नाम है। और दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सब कुछ बहुत तेज हो गया है। संदेश भेजा तुरंत जवाब चाहिए, कुछ पसंद आया तुरंत खरीदना चाहिए, गुस्सा आया तुरंत जवाब लो, कुछ अच्छा लगा तो तुरंत दुनिया को बताना है, हर चीज तुरंत। लेकिन जिंदगी का हर फैसला तुरंत नहीं लिया जा सकता, कुछ फैसलों को समय चाहिए, कुछ शब्दों को चुप्पी चाहिए और कुछ

रिश्तों को थोड़ा सा धैर्य चाहिए। क्रोध को ही देखिए, क्रोध अपने आप में हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी गलत बात पर नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध में कही गई बात वह अक्सर हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। एक वाक्य निकलता है और सामने वाले के मन में वर्षों तक चलता रहता है। और इसलिए दोस्तों, अगली बार अगर आपको भी गुस्सा है तो खुद से बस इतना पूछिए, क्या मैं अभी जो कहने जा रहा हूं, जो करने जा रहा हूं, उसे कल भी सही मानूंगा? अगर जवाब नहीं है तो शायद आज चुप रहना बेहतर होगा। संयम खाने में भी चाहिए। स्वाद जरूरी है लेकिन मात्रा भी जरूरी है। आराम जरूरी है लेकिन आलस्य नहीं। मोबाइल जरूरी है लेकिन पूरा जीवन मोबाइल में नहीं। पैसा जरूरी है लेकिन हर इच्छा पर पैसा खर्च करना जरूरी नहीं। और सोशल मीडिया इस समय का तो सबसे बड़ा आईना है, लेकिन आईना पूरी जिंदगी नहीं दिखाता। दूसरों की तस्वीरें देखकर अपनी जिंदगी को छोटा समझ लेना भी एक तरह की असंयमता है। हर किसी की अपनी अपनी यात्रा है। किसी की सुबह हमारी शाम जैसी नहीं, किसी की सफलता का समय हमारे समय जैसा नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी को दूसरों की स्क्रीन से नापने की जरूरत नहीं है। युवा मन में ऊर्जा होती है, सपने होते हैं, कुछ कर गुजरने की बेचैनी होती है। अगर उस ऊर्जा को दिशा मिल जाए तो वही बेचैनी उपलब्धि बन जाती है, लेकिन अगर दिशा ना मिले तो वही ऊर्जा व्यक्ति को इधर उधर खींच सकती है। संयम हमें रोकता नहीं, दिशा देता है। जैसे नदी के दोनों किनारे नदी को रोकते नहीं, वे उसके बहाव को दिशा देते हैं। शायद इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। कुछ सीमाएं हमें रोकने के लिए नहीं होती, वे हमें बिखरने से बचाने के लिए होती हैं। बोलने से पहले थोड़ा रुकना, खर्च करने से पहले थोड़ा सोचना, खाने से पहले जरूरत को समझना और क्रोध में जवाब देने से पहले गहरी सांस लेना, यही तो है संयम।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा। युवावाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। आज इस कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिल की आवाज को गौर से सुना है? और अगर नहीं सुना है तो आज किसी शांत कमरे में बैठकर अपने दिल की आवाज को सुनिए। जब बाहर की सारी आवाजें थोड़ी धीमी हो जाएं, मोबाइल एक तरफ रख दीजिए, बातचीत को थोड़ी देर के लिए रोक करके अपने अंदर उतरें। धक धक, एक ऐसी ही आवाज आती है, बहुत धीमी लेकिन लगातार, हमारी जिंदगी की सबसे पुरानी आवाज। दोस्तों, जिस दिन से हमने इस दुनिया में आंखें खोली, उस दिन से ये आवाज हमारे साथ है। हम सोए, ये जागता रहा, हम हंसे, ये धड़कता रहा, हम रोए, ये धड़कता रहा, हम परेशान हुए, इसकी रफ्तार बदल गई, और हमने शायद ही कभी इसकी तरफ ध्यान दिया। हम अपने चेहरे की चिंता करते हैं, बाल कैसे दिख रहे हैं, कपड़े कैसे लग रहे हैं, मोबाइल कितना चार्ज है, बैंक खाते में कितना पैसा बचा है, लेकिन उस चीज का हिसाब बहुत कम रखते हैं जो इन सभी चीजों से पहले जरूरी है, और वो है हमारा और आपका दिल। 19 सितंबर यानी आज हम विश्व हृदय दिवस मना रहे हैं। दिल, किसी को देखकर धड़कता हुआ दिल, किसी के बिछड़ने पर भारी होता दिल, किसी खबर से घबराता दिल, लेकिन शरीर के भीतर यही दिल एक बहुत गंभीर जिम्मेदारी निभा रहा होता है, जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक रक्त पहुंचाता है और जीवन की उस निरंतर प्रक्रिया को बनाए रखता है, जिसके बिना हम सब एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दिल अपने जिम्मेदारी निभाने में हमसे कोई सवाल नहीं करता। हमने दिल को कब आराम दिया? हमने दिल से कब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? कब अपने दिल के लिए ये सोचा और कहा कि आज तुम आराम से धड़कना, मैं तुम्हें कोई चिंता वाली बात नहीं दूंगा, कोई ऐसी हलचल नहीं दूंगा जिससे तुम्हें ज्यादा काम करना पड़े? शायद कभी नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि दिल तो चलता ही रहेगा, लेकिन शरीर की हर मशीन की तरह दिल भी हमारी आदतों से प्रभावित होता है। हमारी दिनचर्या,

हमारा खान पान, शारीरिक सक्रियता, धूम्रपान, तनाव और नींद, इन सब का असर हमारे हृदय स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दिल की बीमारी अक्सर दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आती, कई बार वो हमारी दिनचर्या के भीतर बहुत धीरे धीरे जगह बना लेती है। एक दिन कम चलना, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा तनाव, फिर खाने में लापरवाही, फिर नींद की कमी और नशा या धूम्रपान, और फिर हम कहते हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन शरीर शायद हर दिन कुछ लिख रहा होता है। आज की जिंदगी में एक अजीब जल्दबाजी है, हम हर चीज में जल्दी चाहते हैं, काम जल्दी हो, जवाब जल्दी आए, पैसा जल्दी आए, सफलता जल्दी मिले, लेकिन शरीर वह जल्दी में नहीं चलता, वो धीरे धीरे बनता है। जब शरीर आपको कुछ चेतावनी दे रहा होता है तो हम उसे नजरअंदाज करने की आदत में ढल जाते हैं और शरीर भी शायद कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहता है, जब तक एक दिन वो ना कहे कि बस अब नहीं। यही वो जगह है जहां हमें रुकना चाहिए। बीमारी का इंतजार क्यों? स्वास्थ्य की तरफ लौटने के लिए किसी रिपोर्ट के खराब आने का इंतजार क्यों? क्यों ना आज से ही हम अपने शरीर के साथ थोड़ा दोस्ताना व्यवहार करें? दिल को सिर्फ बीमारी से बचाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे ऐसी जिंदगी देना भी जरूरी है जिसमें खुशी के लिए जगह हो, क्योंकि तनाव भी जिंदगी का हिस्सा है। दुख भी आएगा, चिंता भी होगी, काम का दबाव भी होगा, नींद भी कम आ सकती है, लेकिन हर चिंता को अपने भीतर स्थायी घर बना देना जरूरी नहीं। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठिए, कभी आराम से मोबाइल को एक तरफ करके अपने अपनों के साथ आराम से बैठिए और खुशियां बांटिए। कभी किसी पुराने दोस्त से बात करके देखिए, कभी अपने कमरे की खिड़की खोलकर बस बाहर देखिए, हरियाली को महसूस करिए। जिंदगी हमेशा बड़ी उपलब्धियों से नहीं बनती, कभी कभी छोटी खुशियां भी उसे थामे रहती हैं। और हाँ, अगर शरीर कोई संकेत दे रहा है, जैसे सीने में दर्द या फिर दबाव, सांस लेने में परेशानी, अचानक बहुत पसीना आना, चक्कर या असामान्य कमजोरी, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तत्काल ही चिकित्सीय मदद लेनी चाहिए, क्योंकि दिल बहादुर जरूर है, लेकिन उसे भी हमारी समझदारी की जरूरत है। विश्व हृदय दिवस हमें यह बताने के लिए आता है, हमें जगाने के लिए आता है, हमें जागरूक बनाने के लिए आता है, और हमसे यही कहता है कि अपने शरीर को तब मत याद करिए जब वो आपको जवाब देने लगे, उसे तब याद रखिए जब वो आपके साथ पूरी ईमानदारी से चल रहा हो। और आज रात सोने से पहले एक बार अपनी छाती पर हाथ जरूर रखिएगा, धक धक ये आवाज आपको कहेगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। शायद आप उस बात का जवाब न दे पाए, लेकिन मन ही मन इतना जरूर कहिएगा, हाँ अब मैं तुम्हारी थोड़ी ज्यादा कदर करूंगा, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ दोबारा मिल सकता है, पैसा, काम, सामान, मौके, लेकिन एक स्वस्थ जीवन का कोई दूसरा संकल्प नहीं मिलता। इसलिए अपने दिल को सिर्फ प्रेम का प्रतीक मत समझिए, उसे अपनी जिम्मेदारी समझिए, उसे समय दीजिए, उसे अनुशासन दीजिए, उसे सुकून दीजिए, और सबसे बढ़कर दोस्तों, उसे भी जीने का मौका दीजिए, धड़कते रहने का मौका दीजिए।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
2: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
0: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
2: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे भाई,
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: युववाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। कार्यक्रम के साथ आज मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, चंद्रमा को लेकर मानव की जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं हुई। समय के साथ विज्ञान ने उसके अनेक रहस्यों से पर्दा उठाया है, लेकिन आज भी चंद्रमा अपने भीतर अनगिनत सवाल समेटे हुए है। आने वाले समय में अंतरिक्ष अनुसंधान किस दिशा में बढ़ रहा है और चंद्रमा मानव सभ्यता के भविष्य में क्या भूमिका निभा सकता है, इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। वार्ताकार हैं प्रियांशु पाठक। वार्ता का विषय है चंद्रमा, रहस्य विज्ञान और

0: भविष्य।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के सभी सम्मानित श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूं प्रियांशु पाठक और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जिसका विषय है चंद्रमा रहस्य विज्ञान और भविष्य। कल्पना कीजिए, एक शांत रात है, आकाश तारों से भरा है और उनके बीच चांदी की तरह चमकता हुआ चंद्रमा हमारी ओर मुस्कुरा रहा है। सदियों से मनुष्य ने चंद्रमा को प्रेम, सौंदर्य और आशा का प्रतीक माना है। कवियों ने इसकी सुंदरता पर गीत लिखे, वैज्ञानिकों ने इसके रहस्यों को समझने का प्रयास किया और आज पूरा विश्व इसे मानव सभ्यता के अगले पड़ाव के रूप में देख रहा है। प्रिय श्रोताओं, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 384,400 किलोमीटर दूर स्थित है। यदि कोई कार बिना रुके 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 160 दिन लग जाएंगे, लेकिन आधुनिक अंतरिक्ष यान यह दूरी लगभग 3 दिनों में पूरी कर लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 वर्ष पहले पृथ्वी से मंगल ग्रह के आकार का एक विशाल पिंड टकराया। उस भीषण टक्कर से निकले पदार्थों ने मिलकर चंद्रमा का निर्माण किया। इसे जायंट इम्पैक्ट थ्योरी कहा जाता है और आज यही सबसे अधिक स्वीकार किया जाने वाला वैज्ञानिक सिद्धांत है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल 1/6 है, इसलिए यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वह लगभग 10 किलोग्राम के बराबर महसूस होगा। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री वहाँ धीरे धीरे चलते हैं और ऊंची छलांगें लगाते दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर एक दिन लगभग 14 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है और रात भी लगभग 14 दिनों तक रहती है, इसलिए वहाँ दिन में तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि रात में यह -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी कठिन परिस्थितियों में जीवन की कल्पना करना भी आसान नहीं है। श्रोताओं, चंद्रमा का एक और अद्भुत रहस्य है, वह हमेशा हमें अपना एक ही चेहरा दिखाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपनी धुरी पर और पृथ्वी के चारों ओर लगभग समान समय में घूमता है। उसका दूसरा भाग, जिसे हम दूरस्थ भाग या फॉर साइड ऑफ द मून कहते हैं, पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देता। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक यात्रा की जिसने मानव इतिहास बदल दिया। 20वीं शताब्दी में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष प्रतियोगिता शुरू हुई। वर्ष 1959 में सोवियत संघ का लूना 2 चंद्रमा तक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। इसके बाद अनेक मिशनों ने चंद्रमा के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। फिर आया 20 जुलाई 1969। पूरी दुनिया रेडियो और टेलीविजन से जुड़ी हुई थी। करोड़ों लोगों ने वह क्षण देखा जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखा। उन्होंने कहा, वह एक व्यक्ति का छोटा कदम है लेकिन मानवता की यह बहुत बड़ी छलांग है। यह केवल अमेरिका की उपलब्धि नहीं थी बल्कि पूरी मानव सभ्यता की विजय थी। इसके बाद कई अभियानों ने चंद्रमा से चट्टानों और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लगाकर वैज्ञानिकों को नई जानकारी दी। प्रिय श्रोताओं, अब बात करते हैं भारत की। भारत ने सीमित संसाधनों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वे पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। वर्ष 2008 में इसरो ने चंद्रयान-1 का सफल प्रक्षेपण किया। इस मिशन ने विश्व को चौंका दिया। पहली बार चंद्रमा की सतह पर जल अणुओं के स्पष्ट प्रमाण मिले। इस खोज ने पूरी दुनिया की अंतरिक्ष नीति बदल दी। वैज्ञानिकों को विश्वास हुआ कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव वसावट संभव हो सकती है। इसके बाद 2019 में चंद्रयान-2 भेजा गया। यद्यपि इसका विक्रम लैंडर अंतिम क्षणों में सफल नहीं हो पाया, लेकिन ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा का अध्ययन कर रहा है और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियां भेज रहा है। इस मिशन ने हमें सिखाया कि विज्ञान में असफलता भी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। और फिर आया वह दिन जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। 23 अगस्त 2023, भारत का चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना। यही नहीं, भारत अमेरिका, रूस और चीन के बीच चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश भी बना। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की मिट्टी, तापमान, सल्फर सहित अनेक तत्वों पर वहां की सतह का सफल अध्ययन किया। इस सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत केवल अंतरिक्ष विज्ञान में भाग लेने वाला देश नहीं बल्कि उसका नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। श्रोताओं, आज विश्व के अनेक देश चंद्रमा की ओर क्यों लौट रहे हैं, इनके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, जल। दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पानी का स्रोत बन सकती है। इसी पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त कर रॉकेट ईंधन भी बनाया जा सकता है। दूसरा, हीलियम-3। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर हीलियम-3 नामक दुर्लभ तत्व बड़ी मात्रा में हो सकता है। भविष्य में यदि परमाणु

0: लेन तकनीकी सफल होती है तो यही तत्व स्वच्छ और असीम ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। तीसरा, अंतरिक्ष अनुसंधान। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसलिए वहां स्थापित दूरबीनें ब्रह्मांड को पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देख सकेंगी। भविष्य में चंद्रमा मंगल ग्रह की यात्राओं का आधार केंद्र भी बन सकता है। आज अमेरिका का आर्टेमिस कार्यक्रम चीन और अन्य देश चंद्रमा पर अस्थायी अनुसंधान केंद्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। भारत भी अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लगातार आगे बढ़ा रहा है। आने वाले वर्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि भविष्य में मनुष्य चंद्रमा पर रहने लगे तो वहाँ का जीवन कैसा होगा? वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार शोध कर रहे हैं। ऐसे विशेष आवास विकसित किए जा रहे हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को अत्यधिक तापमान, विकिरण और सूक्ष्म उल्का पिंडों से सुरक्षित रख सके। साथ ही ऐसी तकनीकों पर भी काम हो रहा है जिनकी सहायता से चंद्रमा की मिट्टी का उपयोग करके ही ईंटें, सड़कें और अन्य आवश्यक संरचनाएं बनाई जा सकें। आज अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रह गया है। भारत के अनेक युवा छात्र छात्राएं रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहा है। संभव है कि आज का कोई विद्यार्थी ही आने वाले वर्षों में चंद्रमा पर जाने वाले भारतीय मिशन का वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्री बने। इसलिए हमें भी विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए, नए प्रश्न पूछने चाहिए और नई खोजों के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न और एक बड़े सपने से होती है। इसी के साथ चंद्रमा के रहस्यों, विज्ञान और भविष्य पर आधारित अपनी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, जो आंखें सपने देखती हैं, वही एक दिन इतिहास लिखती हैं। जिज्ञासा को जीवित रखिए, ज्ञान को अपना साथी बनाइए और हर नई सुबह के साथ कुछ नया सीखने का संकल्प लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम से मुझे यानी आशीष वर्मा को दें अनुमति। सुनते रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी उपरा से।

सब बहन लोगन के जीरा बहन का राम राम। बहन लोगन देखा, आज आप लोगन से बड़ा दिन के बाद भेंट मुलाकात होतला, और देखा एकदम समय से अपने घर नी कार्यक्रम में हम आ गई लेला, ताकि बल्कि उससे थोड़ा और पहले ही आई लेली है कि अपन बहन लोगन जुटी हन तो उनसे हाल चाल करब। तो हम तो सबसे पहले आप लोगन का हाल चाल जाने चाहब कि आप लोग ठीक ठाक हैं ना। लेकिन देख के तो आप लोगन के हमें यह लगा था कि सब लोग कुशल मंगल से हैं। बस वैसे यह उम्मीद लगावल जात बा कि जब घर में सब कुछ सही रहला तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर अपन स्वास्थ्य अच्छा है तो सब में देखा मन लगेला। अगर हमन के कल गल रहे कि कौनों भी बार बीमारी होला तो मन दुखी होला, और उकरे साथे साथे अगर कोई घर में कोई भी सदस्य के कोई गंभीर बीमारी हो जाला तो देखा मन जो है कोनो काम में नहीं लगेला। तो आज देखा जो न कि यही लिए जो न कि जो गंभीर बीमारी के हम नाम लेते ला तो कई तरह के बीमारी हो, लेकिन देखा आज 29 जोन सितंबर बा आपका ये महीना, ये में देखा हर साल हमन के जो है कि विश्व हृदय दिवस मनावल जाला, और मनावे के यह मनसा है कि ये बीमारी से कैसे छुटकारा मिले एकरे बारे में बढ़िया जानकारी है। आगे हम सब लोग बहन लोगन सुनल जाई विस्तार में, और ओकरे साथ साथ

आपके बता दें कि जो न कि एकर महत्व ए लिए रखल गल कि अगर एक ऐसे बचे गए हम लोगन के हृदय रोग से तो अस्वास्थ्य खान पान धूमपान शारीरिक निष्क्रियता के बदल के दिल के बीमारी के काफ़ी हद तक जो न कि ऐसे बचल जा सकेला और हृदय के स्वस्थ रखे का आसान उपाय भी यह बा कि अपने खाना में ताज़ा फल हरी सब्जी साबुत अनाज शामिल करें और नमक का सेवन कम करें और नियमित व्यायाम करें और कम से कम तो 30 मिनट जरूर टहली और तेज चलें और कसरत भी करें ताकि दिल के दोनों की मजबूत बनाएं और धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से पूरी तरह से दूर रहें और संगे संगे स्वास्थ्य का जांच भी देखा समय समय पे करवावत रहे कि चाहिए ताकि अगर शरीर में अगर कोनो परेशानी होला तो उससे हम लोगन के माने कि इलाज समय पे हो जाए। और एक साथे साथे आप लोगन के एक चीज़ और बता दें कि आज देखा एक और दिवस बा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस। ये जो हम जागरूकता दिवस से देखा यहू आज 29 सितंबर के पूरे दुनिया में मनावल जाला और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि भोजन के बर्बादी के रोकना, खाद्य सुरक्षा के बढ़ावा देना और पर्यावरण का रक्षा करना। तो बहन लोगन देखा अगर खाद्य हानि और खाद्य अपशिष्ट में अंतर देखल जाए तो यह अंतर बा कि खाद्य हानि वो भोजन होला जौन फसल के कटाई से लेके बाजार तक पहुँचेला और बीच में खराब हो जाला। तो जैसे जौन कि कल गल कि खराब कोल्ड स्टोर परिवहन में देरी या नमी और कीड़ा के वजह से अनाज सड़ जाला वो देखा नुकसान होला तो हम लोगन के आर्थिक स्थिति पे असर पड़ेला। और खाद्य अपशिष्ट में वो भोजन होला जौन खुदरा विक्रेता जैसे होटल रेस्टोरेंट और हमन के घर में सीधे तौर पे जो न कि एके जो न कि इस्तेमाल करीला और उकरे बाद जौन बचल ओके जो न कि लोग जो है कि फेंक देलन तो ऐसा ना करे चाहिए। यही लिए इस दिवस के महत्व के समझी और जैसे देखा कहल गलन है कि इनमें तीन बड़ा फायदा हमन के कब मिली जब खाद्य सुरक्षा पोषण आपका जो ना कि ऐसे दुनिया भर में पोषण और ऐसे दुनिया भर में जो ना कि करोड़ों लोग जो ना कि भुखमरी से जो माने सामना करत हैं अगर ऐसे लोगन के हम लोग जो ना कि भोजन करावत ही तो भोजन के बर्बादी रुकी और जरूरतमंद तक जो ना कि पर्याप्त और पौष्टिक भोजन पहुंच सके और संगे संगे जलवायु पर्यावरण संरक्षण भी बनल रही अपन। भोजन बचावे से जो ना कि देखा पानी भूमि और ऊर्जा जैसे संसाधन का भी बचत हुई और हमन के आर्थिक लाभ तो होबे करिए से। और ए लिए हम तो देखा ये कहब कि अगर थाली में उतने खाना लें जितना आपके भोजन करे गए या जितना भूख है और खरीददारी भी जैसे साग सब्जी का तो सोच समझ के करें कि माने कि ले के सब्जी जो ना कि सड़ाई नहीं और खाने का सही उपयोग करें और भोजन का देखा दान जैसे शादी ब्याह में जो ना कि कुछ भोजन बच जाला तो ऐसे लोगन में खाना के पहुंचा दें ताकि जो ना कि लोगन के जो ना कि पेट भी भर जाए और बर्बादी से भी बचल जा सके। और साथ ही साथ जो ना कि देखा ये भारतीय संस्कृति में हम लोगन के देखा यही पुकार वैसे भी आपका स्वच्छता जो माने आपका पखवाड़ा चला थला 2 अक्टूबर तक देखा चली 17 से चला थला तो एमए कहा कि आप जो है कि भारतीय संस्कृति का यही पुकार स्वच्छता आपन सब घर परिवार बहन लोगन देखा अगर हम सब लोग मिलके साफ सफाई पे ध्यान देवल जाए तो निश्चित रूप से जो है कि हमन के घर साफ रहे और हम लोग स्वस्थ भी रहे। वैसे भी शुरू से देखा भारतीय संस्कृति का यही पहचान है कि प्राचीन काल से और यह नारा है कि भारतीय समाज में स्वच्छता और स्वास्थ्य हमार जो है बनल रहे। और एकरे साथ साथ आपके बता दें कि जैसे कि हम लोग शारीरिक क्रिया अपन करीला वही तरह से भारतीय संस्कृति में स्वच्छता के भी देखें और देखा शारीरिक क्रिया एक केवल आपका जो ना कि परंपरा ही मान नहीं है बल्कि ओकरे साथे साथे जो ना कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का आधार भी मानल गया। तो हम तक कहब लेना कि अभी देखा हम लोग जो बातचीत हला
वो आगे करल जाई, लेकिन आज अपने कार्यक्रम में जोन हम जानकारी के बात बोली है विश्व हृदय दिवस वाली, ओकरे बारे में देखा हृदय के स्वस्थ कैसे रखे, एकरे बारे में डॉक्टर राहुल कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय मेडिकल कॉलेज सोनभद्र से हन, इनसे सचिन कुमार वर्मा जो है कि बातचीत कैले हन, एके सुनल जाई। लेकिन ओसे पहले

0: बहन लोगन दिखाई रहा लई ना श्रीमती उमा सिंह, और कितना बढ़िया लांगुरिया गीत सुनौली ना। गीत सुन के एकदम मन फरार हो गल, और जब मन फरार हो जाला ना तो जानकारी में भी मन लगेला। तो आज देखा जोन जानकारी अब हम लोग सुनल जाए, हृदय के माने स्वास्थ्य कैसे रखें, इसके बारे में डॉक्टर राहुल कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय मेडिकल कॉलेज सोनभद्र से हैं। इनसे अपन सचिन कुमार वर्मा जी बात कर ले उन, तो चला सब लोग मिलके के सुनल जाए।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वस्थ शरीर के लिए हृदय का स्वस्थ रहना बेहद आवश्यक है। हमारा हृदय दिन रात बिना रुके काम करता है और शरीर के प्रत्येक अंग तक रक्त पहुंचाता है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित दिनचर्या, खान पान में लापरवाही, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता तनाव हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करें, खान पान का किस प्रकार ध्यान रखें और हृदय रोगों से बचाव के लिए किन बातों को अपनाएं। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राहुल सिंह। आप मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आकाशवाणी ओबरा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है सर।
2: धन्यवाद।
1: तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हम अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
2: नमस्कार सभी श्रोताओं को। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है हमारी जीवन शैली सक्रिय और संतुलित हो। रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करें मीडियम गति का, और चलने फिरने की आदत बनाएं। अगर आप कोई बैठकर काम करने वाला हो तो उसमें हर आधे घंटे 45 मिनट में थोड़ा 1-2 मिनट के लिए खड़े होकर चलने फिरने का कोशिश करें, उसमें फिर से आके बैठ के काम करें अपना। मतलब कभी भी 45 मिनट से ज्यादा लगातार एक ही जगह पर न बैठें। और दूसरा है, हमारे चलने फिरने से जो है हमारे रक्त कोशिकाओं को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तीसरा, किसी भी प्रकार का, जैसे आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं या किसी और नशे का सेवन कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल रोकने की जरूरत है, क्योंकि इससे हृदय की जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, जो रक्त कोशिकाएं रहती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है और उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो जमा होता है, जिससे

0: से कि हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हमें 45 मिनट लगभग
0: जी
1: वॉक करना चाहिए, चलना चाहिए।
0: हाँ।
1: लोगों में ये होता है कि सुबह ही टहलने का टाइम
0: नहीं,
1: होता
0: जब
1: है।
0: जब भी आपको मिले टाइम आप टहल सकते हैं। ऑफिस के काम में है तो ऑफिस में कर सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: शाम को भी टहल सकते हैं। अगर आप कहीं बड़े शहरों में हैं जहां आपके पास जगह ही नहीं है तो आप अपने टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर टहल सकते हैं। अगर आपके पास पार्क है, ये सब है, तो आप बिना चप्पल के टहलना है नंगे पांव से। लेकिन तो ये सबके लिए जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, उनको नंगे पांव नहीं चलना है, नहीं तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो वो मतलब बदल सकता है। लेकिन सबको टहलना चाहिए, ये है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने जीवन शैली को संयमित और सक्रिय रखें।
1: बिल्कुल।
0: संयमित का मतलब है कि हम कोई भी चीज, जैसे कोई नशा कर रहे हो, इन सब चीजों से दूर रहें। और सक्रिय का मतलब है कि हम डेली अपने शरीर से ऐसी कोई भी एक्सरसाइज करें जिससे कि हमारे शरीर से पसीना जरूर निकले। आप सवेरे टहल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन तो ऐसा नहीं है कि केवल सवेरे टहलेंगे तभी बेनिफिट आएगा। आप शाम को टहल सकते हैं, आपको कभी टाइम नहीं मिल रहा है, आप ऑफिस में हैं, ऑफिस के टाइम में भी है, आपको कॉरिडोर है, आपके यहाँ गार्डन है, तो कभी भी टहल सकते हैं।
1: बिल्कुल। मतलब हमें कुछ न कुछ एक्सरसाइज
0: हाँ,
1: या टहलना
0: सक्रिय
1: है कि पसीना आए,
0: पसीना आना चाहिए
1: तो
0: उसमें।
1: कुछ न कुछ मदद मिलेगी
0: जी
1: स्वस्थ रखने के लिए,
0: जी
1: शरीर को और हृदय को भी।
0: जी
1: अच्छा डॉक्टर साहब, खान पान का हृदय के स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है और किन खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल या सीमित करना चाहिए?
0: खाद्य पदार्थों का हमारे शरीर पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, खासकर हृदय पे।
1: जी
0: अगर हम अपने भोजन में हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां शामिल करेंगे तो ये हमारे हृदय के लिए अच्छा रहेगा। साथ में आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि मोटे अनाज को खाएं। जैसे मोटे अनाज में आ जाते हैं जौ, बाजरा, मक्का, तो ये सबको हम लोग को अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ हमें सीमित करना चाहिए या कम करना चाहिए, वो जैसे पैकेट फूड्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, चीनी वाले हो गए, मैदा वाले हो गए पदार्थ, चिप्स, ये सब जो बाहर से मिलते हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर अवॉइड नहीं हो पा रहा है तो कम से कम रखना
1: कम
0: चाहिए।
1: से कम सेवन करें
0: जी
1: उसका। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बताया जाता है कि रिफाइन और एक सरसों के तेल, तो इसमें हमें किसका चुनाव किस लेवल तक कैसे करना चाहिए?
0: हमारे हिसाब से जो सरसों का तेल, जो भी आपके आसपास के एरिया में जो भी तेल उग रहा है उसका सेवन करना चाहिए। रिफाइंड तो ऑलरेडी वो प्रोसेस्ड है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे प्रोसेस्ड करते हैं, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। उसके जो नेचर्स होता है वो तेल का पूरा चेंज ही हो जाता है। जो हमारे पास नेचुरल तेल है, सरसों का तेल बेस्ट है कि वो अगर हम लोग घर के आसपास अपने से खुद से सरसों को, मतलब जो हमारे पास उगता है उसको
1: पेरवा
0: पेरवा
1: लें।
0: लें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा मार्केट से खरीदने के बजाय। तो जो भी हमारे पास सरसों का तेल हो या तीसी का तेल हो या और कोई जो मूंगफली का तेल या कोई भी जो आपके आसपास तेल उग रहा है तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपके
1: उसका
0: लिए,
1: सेवन करें तो
0: सेवन
1: ज्यादा
0: करना
1: अच्छा
0: चाहिए।
1: है। अच्छा डॉक्टर साहब, हृदय से ही संबंधित जो मुख्य बीमारियां हैं जिनसे लगभग हर दूसरा व्यक्ति ग्रसित होता है, तो ये उच्च रक्तचाप, मधुमेह और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हृदय को किस तरह प्रभावित करते हैं?
0: ये सब हमारी जो बीमारियां, इनको हम लोग बड़े एक ब्रॉड टर्म में जो क्लासिफाई करते हैं, इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल मतलब ये एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, आपस
1: एक
0: में
1: व्यक्ति से दूसरे
0: दूसरे
1: व्यक्ति
0: में
1: में नहीं
0: नहीं फैलते।
1: फैलता है।
0: जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या और कोई डायरिया हो गया, वो एक दूसरे से फैलते हैं, लेकिन ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल भी हो गया, हाइपरटेंशन बोलते हैं, मधुमेह जिसको कि हम लोग शुगर या डायबिटीज बोलते हैं, और कुछ प्रकार के जो कैंसर भी होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। उच्च रक्तचाप जिसको कि हम हाइपरटेंशन या बीपी बोलते हैं, डायबिटीज जिसको कि हम शुगर या मधुमेह बोलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो कि एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है वो हमारे शरीर में बहुत हानिकारक है। लंबे समय तक बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे हृदय को भी इफेक्ट करता है, किडनी को भी इफेक्ट करता है, आईज को भी इफेक्ट करता है सर। तो उस पे क्या, अधिक प्रेशर की वजह से वो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो पतली पतली जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं, उनको डैमेज करता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो वो एक के ऊपर एक, जैसे कहीं भी ब्लड वेसल्स के अंदर चोट लगा तो उस पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। तो डिपॉजिट होने से क्या होता है कि वो ब्लड वेसल्स का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देता है, उसके वो जैसे आगे के पार्ट में ब्लड का प्रवाह नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमको की दिक्कत होती है।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग सेवन तो करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं किस हद तक सेवन करना है, जो खाद्य पदार्थ जो हृदय को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हृदय रोग से ग्रसित है
0: जी
1: तो हृदय रोग के शुरुआती लक्षण कौन कौन से हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और वो व्यक्ति पहचान सके कि हमारे हार्ट में कुछ दिक्कत हो
0: जैसे
1: रही है।
0: किसी को सीने में दर्द हो रहा है, पर चलने फिरने पे पसीना हो रहा है, या बैठे बैठे पसीना हो रहा है, या आपका सांस फूलने लग रहा है बैठे बैठे, या फिर आप 100-150 मीटर चल रहे हो तब आपका सांस फूलने लगा, पसीना होने लगा, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, थकावट महसूस हो रहा है, या अचानक से आप रात को सो रहे हैं और नींद खुल जा रहा है और उसके बाद आपको सांस फूलने लग रहा है, तो ये सब शुरुआती हृदय रोग के लक्षण हैं जो कि आपको आगे जाके अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किए तो परेशानी के कारण बढ़ सकते हैं। और एक होता है जिसमें कि हम लोग हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अचानक से पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होगा चेस्ट में, अचानक से पसीना आएगा, सांस फूलने लगेगा, एकदम सडन होगा ये सब,
1: तो उसमें तुरंत
0: तो उसमें
1: डॉक्टर
0: तुरंत
1: से
0: डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
1: करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हृदय रोग से ग्रसित जब कोई भी व्यक्ति होता है तो नो डाउट इसके इलाज में काफी पैसे लगते हैं,
0: जी
1: तो क्या सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना है जिसमें हमें हृदय से संबंधित इलाज के लिए सहायता मिल सके?
0: जी जी आजकल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि प्रोग्राम का नाम है हृदय सेतु। जैसे आजकल आपके जो भी पास का अस्पताल होगा, PHC होगा, CHC होगा, या कोई मेडिकल कॉलेज है, या कोई भी सरकारी अस्पताल है, वहां पे ये व्यवस्था होगी ECG के लिए। जैसे भी किसी को भी हृदय का जो बीमारी पहचाना है, उसमें हमको बहुत
1: सबसे
0: बेसिक चीज है कि हमको ECG चाहिए, वो कन्फर्म होगा ही ECG से, किसी को दिल का दौरा पड़ा है कि नहीं, या इनको दिल की बीमारी है कि नहीं, तो वो सुविधा आजकल आपके नजदीकी जो भी सेंटर होगा, प्राथमिक हेल्थ केयर जिसको हम लोग की प्राइमरी हेल्थ केयर PHC बोलते हैं, वहां पे भी आजकल ये सुविधा है। आप वहां जाओगे तो वहां पे ECG होगा, और ECG को फिर पढ़ने के लिए भी व्यवस्था है, उसको पढ़ के तुरंत अगर होगा तो आपका 5-10 मिनट में ही क्लियर हो जाएगा कि आपको दिल का दौरा पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अगर आपको दिल का दौरा पड़ा है तो वहां पे जो हम लोग के पास एक टेनेक्टिव प्लेज करके दवाई होती है, जो कॉस्टली है, 40 से 50 हजार की आती है, आज की डेट में ये सरकार के तरफ से सभी मरीजों के लिए निःशुल्क है और हर जगह उपलब्ध है ये, 12 घंटे के अंदर वो दवाई लग जाती है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हृदय हो जाएगा उसका, और फिर इलाज के लिए आपको लंबा टाइम मिल जाएगा, फिर आप अच्छे से इलाज करा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हों, अगर ऐसे कंडीशंस ना चाहते हुए भी अगर परिवार में आए तो
0: हाँ, अगर
1: नजदीकी
0: दिल के
1: CHC
0: मतलब
1: में
0: अगर कोई दर्द का बोल रहा है, तो उसकी हम
1: अवॉइड
0: लोग
1: ना करें।
0: नजरअंदाज करते हैं कि ये गैस होगा या कुछ होगा, ऐसे ही होगा। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको कि रात को 12 बजे से दर्द होता रहता है, तो वो रात भर अवॉइड करते हैं कि हम सवेरे जाएंगे, सवेरे दिखाएंगे, तो इसमें हमारा जो विंडो पीरियड है, जो हम आपको टेनेक्टिव प्लेज लगाने के लिए 12 घंटे का बोले हैं, वो विंडो पीरियड खत्म हो जाता है चाहिए
1: बिल्कुल।
0: उसको।
1: तो ऐसे लोग जरूर जाएं पास के अस्पताल में और वहां जरूर वहां डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे और सहायता मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन हृदय को स्वस्थ रखने में किस प्रकार मदद करते हैं और सामान्य व्यक्ति को कितनी शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए?
0: नियमित व्यायाम हम सबको करना चाहिए, सबका लिमिट अलग अलग हो सकता है, टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, व्यायाम का हृदय पे या पूरे शरीर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, उसको करना चाहिए। तनाव भी आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे मधुमेह हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया और कोलेस्ट्रॉल हो गया, या कुछ हद तक कैंसर और जो मानसिक बीमारियां हैं जैसे डिप्रेशन हो गया, ये सब के लिए, तो तनाव प्रबंधन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो अपने आप को बिजी रखना है, दूसरा आपको योगा एक्सरसाइज ये सब करना चाहिए, और वजन को नियंत्रित करना चाहिए
1: जो
0: तो
1: डॉक्टर की
0: उसमें।
1: सलाह है उस रेंज तक रखनी चाहिए अपने वजन को अपने लंबाई के
0: जी,
1: अनुसार।
0: लंबाई के अनुसार एक 6 से 8 घंटे का हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर नींद होना चाहिए, वो नींद प्रबंधन बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे बहुत अच्छी जानकारियां मिल रही हैं हमारे श्रोताओं को। तो चलते चलते डॉक्टर साहब, आपका संदेश श्रोताओं के लिए?
0: हृदय एक हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो उसके लिए आज से अभी से हम लोग को अपना तनाव प्रबंधन करना है, पर्याप्त नींद लेना है, योगा एक्सरसाइज जितना आपसे संभव है उसको करने का कोशिश करना चाहिए, और उसके बाद प्रिवेंशन के लिए आगे बढ़ना है, उसमें आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। नियमित आपके घर में कोई 45 से ऊपर का है तो उसका ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब नियमित चेक कराना चाहिए, और जो लोग दवाइयां ले रहे हैं इन सब बीमारियों का, उनका तो आपको डॉक्टर से फॉलो अप करते ही रहना चाहिए, लेकिन जो कोई बीमार नहीं है, जिसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, फिर भी आपको अपना वर्ष में एक बार जरूर बीपी शुगर ये सब चेक कराना चाहिए, और युवाओं के लिए खासकर कि नशे से दूर रहना है।
1: बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो श्रोताओं, आज की बातचीत से हमें यह समझने का अवसर मिला कि हृदय को स्वस्थ रखना केवल बीमारी से बचना ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की दिशा में

0: एक महत्वपूर्ण कदम है। संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद, तनाव पर नियंत्रण, समय समय पर स्वास्थ्य की जांच हृदय के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक हो सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने श्रोताओं को उपयोगी जानकारी दी और हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक सावधानियों एवं जीवन शैली में सुधार के बारे में विस्तार से बताया। इसके लिए आकाशवाणी ओबरा की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा कितना बढ़िया जानकारी रहल, हृदय को स्वस्थ कैसे रखें। डॉक्टर राहुल कुमार सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय मेडिकल इंटर कॉलेज से रहल ना, और सचिन कुमार भैया जो है कि जैसे जैसे पूछल ना उस तरीके से निश्चित रूप से अगर हम लोग जो है कि समय समय पे जांच करावल जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों के जो है कि बीमारी से दूर रह सकीला। और जैसे कह लेने कि व्यायाम करना है, टहलना है, इन सब चीज़न के लिए अच्छे से विस्तार में जानकारी मिलल। और हम भी अगर अच्छे से रहे चाहत हुई या आप लोग भी अच्छे से रहे चाहते हो तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखें कि हम लोगों के हमेशा जो है कि एक प्रति सतर्क रहे के पड़ी। तो देखा इनके झूरे झूरे धन्यवाद न देके श्रीमती उमा सिंह के गावल एक और गीत पूर्वी ओके चला सुन लेवल जाए।

बहन लोगन दिखाई रहल मन मनसायन। मन मनसायन सुन के मन तो बड़ा खुश हो गल। और हम जो है कि चलते चलाते आप लोगन से जो ना कि एक बात जरूर कहे चाहबला कि अपने खान पान में हम लोगन के पोषण और विटामिन का ध्यान देवे के चाहिए। और जिनमें जो ना कि ज़्यादातर करके अगर अपने भोजन में हम लोग हरी पत्तेदार सब्जी का इस्तेमाल करल जाए तो निश्चित रूप से हम लोगन का स्वास्थ्य अच्छा रही। और साग तरकारी जो ना कि हम लोगन के ताज़ा ही खाए के चाहिए, ना कि बासी खाना भी देखा इस समय ना खाए के चाहिए। कैसे कि ये समय का बासी खाना जो है कि सवेरे आपके नुकसान करला। तो अब यही अपन जो ना कि कार्यक्रम समेटे का देखा समय हो गल। अगले कार्यक्रम में आप लोगन से फिर भेंट मुलाकात हुई। तो चलिए सब बहन लोगन के राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे घरनी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी उपरा से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने को है। आपसे बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। समाचारन के साथ है नमस्कार
1: विवेक प्रकाश पाठक।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर जिला के बाढ़ प्रभावित इलाकन का दौरा कैले। ए दौरान वहां के बाढ़ प्रभावित परिवारन से मुलाकात कैली आ उनके बिच्चे राहत का सामान बटली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहने कि बाढ़ प्रभावित इलाकन में राहत आ बचाव का कार्य जारी बा।
2: सामान्य दिनों में नारणी नदी में 3 लाख से लेकर के 4 लाख क्यूसिक वाटर जल यहाँ से प्रभावित होता था, लेकिन अचानक यह 5.5 लाख क्यूसिक वाटर तक पहुंचा है, जिसके कारण इसी तटबंध का यहाँ पर टूटा है और कई गांवों में पानी आया है। मौसम साफ है, हम लोग कल से ही उस पर नजर रखे हुए थे। बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ की 2 टीम, एसडीआरएफ की 2 टीम और पीएसी की फ्लड यूनिट को भी हम लोगों ने यहाँ पे तैनात किया है। पूरा जिला प्रशासन कल से ही और सिंचाई विभाग के सभी इंजीनियर कल से ही यहाँ पर राहत और बचाव के कार्य के साथ जुटे हैं।
0: पछिला कई दिनन के बरखा बैराजन से पानी छोड़े लेके नाते प्रदेश के कई जिलन में बाढ़ जैसा हालत बन गई बा। एगो रिपोर्ट।
3: शाहजहांपुर में रामगंगा, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा, गोंडा में कुआनो और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कुशीनगर जिले के तमकुही राज तहसील से होकर बहने वाली नारायणी नदी का तटबंध बिरवट कुनवलिया के पास देर रात पानी के भारी दबाव के चलते लगभग 25 मीटर तक टूट गया। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तटबंध टूटने से जिले के करीब 2 दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: एह बिच्चे गोरखपुर के साथ ही कई गो पूर्वी जिलन में आज दिन में मौसम साफ रहल आ तेज घाम के साथ ही हल्का है उमस भरल गर्मियो महसूस कैल गईल। अपने गोरखपुर दौरा के दूसरका दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में आज जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगिन के समस्या सुनले। करीब 150 लोगिन के समस्या सुनले के बादे मुख्यमंत्री अधिकारियन के निर्देश देले कि जन समस्या का समाधान तत्परता आ संवेदनशील तरीका से कैल जाए। निर्वाचन आयोग राज्यसभा के 11 सीटिन बदे आज द्विवार्षिक चुनाव के बारे में अधिसूचना जारी कर दिलस। एमे उत्तर प्रदेश का 10 गो सीट शामिल हैं। भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी का नेता राम गोपाल यादव, बसपा का रामजी आ प्रदेश का 6 गो और यो नेता लोगिन का कार्यकाल यही साल 25 नवंबर के पूरा हो रहल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 बरिस पूरा कर रहल हमें। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र आ लगतारे प्रतिबद्धता सुशासन से प्रेरित होके सरकार 2047 ले विकसित भारत बनावे बदे लगतारे कार्य कर रहल हो। समावेशी विकास आ सामाजिक सशक्तिकरण से लोगिन के जिंदगी में बदलाव आ रहल हो। आज उहे खास श्रृंखला में हमनी के जानब कि कैसे जल जीवन मिशन ग्रामीण घरन में साफ पानी पहुंचा के जिंदगी के सुगम बना देले हो।
4: ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित नल का जल पहुंचाने के उद्देश्य से 2019 में शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना ने व्यापक अंतर ला दिया है। जहां योजना के शुरुआत में केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन थे, वो जून 2026 तक बढ़कर करीब 16 करोड़ से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को ग्रामीण सशक्तिकरण का बड़ा अभियान बताया है।
5: साथियों, जल जीवन मिशन गाँव और गरीब के घर तक पानी पहुँचाने का तो अभियान है ही। ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गांव के सशक्तिकरण को, उसके लिए भी एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभियान।
4: योजना के तहत 7 वर्षों में 12 करोड़ 60 लाख से अधिक घर जोड़े गए हैं। अभय निगम, आकाशवाणी समाचार, बांदा।
0: सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के कक्षा 7 के विद्यार्थियों के तरियन त्रिभाषा नीति से छूट देहले पर विचार करे के कहले हो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ केंद्र सरकार आ CBI के CBSE के ई निर्देश देहले बा। आज विश्व हृदय दिवस हवे। हर साल 29 सितंबर के हृदय रोग ओकर रोकथाम आ वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ावे बदे ई दिवस मनावल जाला। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं, समय है सूचना और कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये सूचना।
6: विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 से संबंधित एक विशेष सूचना। वाराणसी खंड स्नातक और वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता कृपया ध्यान दें। कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सोनभद्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। कृपया मुख्य तिथियों पर विशेष ध्यान दें। चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख मंगलवार 29 सितंबर 2026, नामांकन की आखिरी तारीख मंगलवार 6 अक्टूबर 2026, नामों की वापसी की अंतिम तारीख शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026, मतदान का दिन शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026, मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक, मतगणना का दिन मंगलवार 27 अक्टूबर 2026। वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्माननीय मतदाताओं, याद रखें, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और सही समय पर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सोनभद्र द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, इस सूचना के बाद अब आपको बताते हैं कार्यक्रम विवरण। हिंदी पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत माध्यम कोई भी, भाव अपना, प्रसार भारती और हिंदी, इस विषय पर आयोजित संगोष्ठी के संपादित अंश हम आपको सुनवाएंगे आज रात्रि 8:30 से। राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण का समय रहेगा रात्रि 10 बजे का। इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे से। हमारी सभा में फिल्मी गीत इस प्रकार से होंगे। सबरस कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। भूले बिसरे गीत का समय रहेगा रात्रि 9:15 का। आपकी बात यह कार्यक्रम का होगा रात्रि 10:30 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:15 से। और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए का समय रहेगा रात्रि 9:30 का। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, हिंदी पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत माध्यम कोई भी, भाव अपना, प्रसार भारती और हिंदी, इस विषय पर आयोजित संगोष्ठी के संपादित अंश आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:30 से।
7: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
8: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
9: हेलो,
7: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
8: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
7: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
8: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
7: ओनली ऑन AIR ओबरा।
1: हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हो रहे हैं। समय है कार्यक्रम ग्राम जगत का।

0: सब पंचम के राम राम।
1: राम। गौरी भौजी तो के भी राम राम।
0: आ जग्गू भैया आपके भी राम राम। और हमारे लोगों ने सही समय से जुट के नहीं जा तो अब आप सुनावे कि का हाल समाचार बा, सब कुशल मंगल बा ना।
1: एकदम कुशल मंगल बाय। खेत में हरियाली बाय। गोरु चौवा सही भी फिट फाट बाटा। तो सब मंगल ही मंगल है। लेकिन
0: लेकिन हाँ
1: जो मौसम में, जैसे एक मौसम के बाद दूसरा मौसम का भैया, एक मौसम जात बा और दूसर ही आवत बा, यानी बरसात जात बा या जाड़ा आवत बा।
0: बिल्कुल जग्गू भैया एकदम सही बात कहना है कि मौसम के मिजाज में रह रह के बदलाव हो रहल बा। अब धीरे धीरे गर्मी जाई और सर्दी आवे वाली बा। आ देखा तनी तनी असर भी दिखाई देवे लगल है।
1: तो इसने में देवन है मच्छर माछी मौस ई कुल देखा सक्रिय हो जाना। जब सक्रिय हो जाना तो एकरे बदे भैया कहल जाला ना कि इलाज से बेहतर बचाओ।
0: हाँ
1: पहले भैया अपने घर के आसपास के साफ सफाई हो, गांव मोहल्ला साफ सफाई हो।
0: बिल्कुल
1: अपने आशीष भैया के देखा लू ना कि भैया हो घरवा तो घरवा सड़कियों अपन झाड़ बटोर के एक किनारे जवन है कूड़ा लगाए देना।
0: जहाँ झाड़ झंखाड़ रही तहाँ काट के किनारे कर देना ताकि सूख
1: हा।
0: जाए और मच्छर मक्खी ना पनपे।
1: बिल्कुल सही बात कहलू गौरी। तो देखा सबसे पहले एक बात, एक के बात कहली कि इलाज से बेहतर बचाओ। अब
0: बचाओ।
1: मवेशी रखल हुआ तो जहाँ गाय गुरु अपन दुधारू पशु बाटा, वही जा भी जवन है खुर उर गोबर के वजह से जवन है फंगस फैलाना, कीटाणु फैलाना, खुरपका मुहपका तमाम तरह के बीमारी होले। तो भैया सही सही समय पे सुई लगवावा और वहां सबसे पहले जवन है साफ सफाई का बेहतर प्रबंधन कायल जाए।
0: बिल्कुल सही कहना है कि अनबोलता हम पशु हम लोग तो अपन परेशानी जैसे सर्दी भइल जुकाम भइल बुखार भइल या मतलब पेटे का कोनो भी तरह का बड़ बीमारी भइल उतार चढ़ाव भइल खनगी में या मौसम का तक बात हम लोग बता सकल जाई और अपने डॉक्टर भैया से डॉक्टर बहन लोगों से हम लोग अपन दर दवाई करा सकल। लेकिन अनबोलता जो पशु होना उनके खाली ऐसे खिया के पिया के बहरे दूध दुह के ना भेज दें बल्कि जहाँ रहें उनका रख रखाव के बेहतर जैसे आप कहना है कि ध्यान रखें कि सूखल है ना जहाँ बैठी है ठंडा से बचे हैं सर्दी से बचे हैं खानगी का मतलब ध्यान रखें कि साफ सुथरा उनके जो है जवन भी होके खियावे पियावे।
1: तो
0: अब ये
1: गौरी
0: देखा
1: भौजी
0: जब
1: एक
0: तर
1: बात और कहल चाहती कि
0: हाँ
1: देखा
0: हाँ
1: खाली झाड़ झंखाड़ सफाई से नहीं मतलब बा।
0: हाँ हाँ हाँ
1: अब जैसे पोखरा बा, पोखरा के भीती पर लोग जवन है गांव घर के कूड़ा कचरा जो ना झाड़ पटोर के लेके चल जाना, वो पानी में जाला, पानी सड़ेला गलेला। तो देखा अपन पानी का भी साफ सफाई होवे के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आज जब हम लोग जितना भी स्वच्छता अपनावल जाए जितना भी हम लोग ख्याल रखल जग्गू भैया साफ सफाई का उतना हम लोग का स्वास्थ्य बेहतर रही।
1: और जब
0: और
1: स्वास्थ्य
0: आज
1: बढ़िया रही
0: हाँ
1: तो समझ ला कि मन प्रसन्न रही। ये बदे
0: बिल्कुल
1: के देखा सबसे बड़ चीज ना कि हमन किसान है जा, खेती किसानी या खूब मगन हो के देखा वही नीबी के पेड़ के नीचे बैठ के बतकही खुश मिजाज है जा। कभो कभो देखा शहरन में का होला हो
0: हाँ
1: कि का भैया तो फलाने भैया के देखा शुगर हो गल बा, तो
0: हाँ
1: फलाने के का भैया
0: बीपी
1: तो
0: भैल बा
1: बीपी बढ़ल बा। तो भैया
0: हाँ
1: तरह तरह का बीमारी होत बा। लेकिन भैया अगर कोनो तरह के केहू के भी बीमारी हो सकेला,
0: हाँ
1: अगर ऐसा कुछ होए तो भैया डॉक्टर भैया के यहाँ तुरंत उनका चिकित्सकीय सलाह लेवल जाए।
0: जरूरी है। और आज देखें विश्व हृदय दिवस है जो हर साल 29 सितंबर के मनावल जा रहा है। आ ए दिन हृदय से संबंधित कुछ खास बात के जानल बहुत जरूरी है जग्गू भैया कि देखा मानव हृदय जो हार्ट कहा जाला एक पेशी अंग है जो पूरे शरीर में रक्त ऑक्सीजन पंप करेला। आई हमारे छाती के बीच में दोनों फेफड़ा के थोड़ा बाई और स्थित होला और एकर आकार लगभग मानल गई है कि हमारे बंद मुट्ठी के आकार को होला। और एकर हिफाजत कईल बहुत जरूरी है। और जौन भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाइल जाला ना तो ऐसा खाइल जा कि उसे अपने मतलब हृदय का रक्षा सुरक्षा हो सके। और प्रतिदिन देखा सुबह सैर करे के चाहिए योग करे के चाहिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेवे के चाहिए जौन से हमारे शरीर के ऑक्सीजन मिलत रहे। और जो आजकल लोग का है जो भी आप देखते हुए हैं कि घरे का खाना बढ़िया ताजा दाल चावल रोटी सब्जी सलाद दही पसंदे नहीं आवता खास करके हमारे नवधा पीढ़ी के। और उनके फास्ट फूड जंक फूड जैसे मान लें कि जो डब्बा बंद खाना बा तरह तरह का पिज्जा बर्गर कुल बनावल है ना मैदा चीनी वाला, तो ई कुल से जब भोजन करी है तो उनके हार्ट पर माने हृदय पे असर पड़ी।
1: कुल मिला के गौरी भौजी एक बात कह दे कि गांव घर में शुद्ध आबो हवा है,
0: हाँ
1: शुद्ध कोल्हू का पेरल तेल सरसों का बाय,
0: हाँ
1: चावल गेहूं जवन है अपन उपजावल बाय, और प्रयास कयल जाला भैया की देखा किसान भैया लोग भी क्या करत हुआ कि भैया रासायनिक से दूरी करके धीरे धीरे जवन है देसी के तरफ आवत हुआ। तो कहीं न कहीं भैया और सबसे बड़ चीज है गौरी भौजी
0: हाँ
1: कि हम हन चाप के करत है जा मेहनत, आ जब मेहनत करत है जा ना बोझा उठावे के बाय, डाने पर चले के बाय, भैया 1 किलोमीटर खेतवैया करे के बाय,
0: मेड़ बनावे के बाद फरसा
1: उठावे के बाय, तब मेहनत जब करत हो तो चाप के लंबा लंबा सांस खींचत हो, फेफड़ा अपने जगह एकदम फिट फाट रहत है,
0: दुरुस्त बा,
1: और फेफड़ा तो फेफड़ा जोन हार्ट बाय
0: उहो
1: एकदम धड़कत रहेला सही एकदम काम फिट करेला। काहे से कि भैया देखा न काम करे वालन का, भैया कम काम करे वालन का, ढेर तेल मसाला खाए वालन
0: खाए
1: के
0: वालन का,
1: ये तरह के समस्या होले। अब भैया यहाँ तो जवन है रूखा सूखा खाए के
0: ठंडा पानी पी,
1: ठंडा पानी पी, तो यहाँ जवन मिलल वो टाइम समय से भोजन
0: हाँ।
1: समय से नाश्ता, चाप के मेहनत
0: और
1: खेती गृहस्थी के आगे बढ़ावा।
0: और जग्गू भैया जब ज्यादा हम लोग मेहनत कर जाला ना तो भूख भी लगेला
1: बिल्कुल,
0: और जवन खाई जाला वो पच भी जाला
1: बिल्कुल,
0: काहे कि घरे के रसोईया में बना रहेला ना सार सफाई करके अपने तेल घी मसाले के साथ प्रेम पूर्वक भोजन बना रहेला सुबह के शाम का, और जब खूब मेहनत करके आप आई है भूख लगी खाई है तो पची।
1: अच्छा एक चीज बताबा,

0: गैसे पर के पतिल की रोटी
1: हाँ
0: आ घरे के समझला कि चूल्हानी में जो चूल्हा जरत बा
1: मकई की लिट्टी
0: भैया
1: बजरी की
0: मकई के
1: लिट्टी
0: मोटका अनाज के लिट्टी या चाहे रोटिया के भैया मोटका जवन है
1: मोटी लिट्टी।
0: लिट्टी। आ देखा गांव में मेरवन कभी रोटी होले चना
1: हाँ।
0: या गेहूं और
1: पांच गो अनाज,
0: बाजरा के
1: पांच
0: मिलाई के
1: अनाज
0: जो
1: मिलाई
0: है
1: के। हाँ
0: तो समझला गुड़ घी चौचक अपन गाय गोरु तू रख ले तो घी के खाई। ओकरे
1: हाँ
0: बाद भी जवन है भैया करेजा एकदम मजबूत फिट फाट ए बदे कि संयमित भोजन संयमित नींद अब कस के मेहनत। तो अब एक जानकारी भी तोरे पजरे बाय
1: हाँ।
0: तो जानकारी कौन चाहे तन पुटरी खोल के बतावा।
1: तो जग्गू भैया, जब हम लोग इतना बढ़िया बातचीत कैली है जा कि कैसे हम लोग का हृदय मजबूत रहे, कैसे हम लोग स्वस्थ रह लिए, डॉक्टरी से बचल जाए तो और इलाज से, तो देखें आज जानकारी वो यही से संबंधित बा कि डॉक्टर संजय कुमार सिंह जन होम्यो चिकित्सक हम अपन जन मुन्ना भैया के बात बत कही तन पुरान बा पहले का। तो हृदय रोग से बचाव हेतु चिकित्सीय सलाह, तो हम लोग देर न कर जानकारी सुनल जाए।
0: सुन लिया
2: श्रोताओं, हम सभी स्वस्थ रहने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं और अपनी दिनचर्या को इस तरह रखते हैं कि हम स्वस्थ रहें। अपने खान पान रख रखाव पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वे सही ढंग से कार्य करते रहें, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है। कभी कभी हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो खान पान है, सही न होने की वजह से, कहीं पर लापरवाही होने की वजह से हम कई तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और अंततः फिर हम लोगों को झेलना पड़ता है और इलाज के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। इधर बीच हम लोगों ने ये देखा, ये अनुभव किया कि हृदय रोग से बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं और काफ़ी लोग इससे जब ग्रसित हो जा रहे हैं तो उनकी मौत भी हो जा रही है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि वे सही समय पर चिकित्सक के पास ना पहुंचने की वजह से जो है उनकी मौतें हो जा रही हैं। तो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन कौन से ऐसे एहतियात हैं जो हम शुरू से ही बरतें जिससे कि हमें एक तो हृदय रोग हो ही ना हो, और अगर हमें हृदय रोग होने की संभावना है या हमारे अंदर है तो हम उसके लक्षणों उसकी जांच प्रक्रिया से गुजर करके पता कर लें और समय पर चिकित्सक की सलाह लेकर के इलाज अगर करें तो हम हृदय रोग से बच सकते हैं। इसी जागरूकता अभियान के तहत आज हम लोग इसी विषय पर बातचीत करेंगे और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, होम्योपैथ चिकित्सक, और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपने स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: सर। इधर बीच ये देखा जा रहा है कि जो हृदय रोग से जो प्रभावित लोग हैं वे अस्पताल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या तो वे जागरूकता के कमी के वजह से या किसी लक्षणों को वो दबाए रहते हैं या फिर जो है उन्हें पता ही नहीं चलता है, और जब काफ़ी स्थिति विकट हो जाती है तब डॉक्टर साहब लोगों के पास जाते हैं तब पता चलता है कि अब तो इलाज इसका बहुत जटिल है या फिर बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले सर, जैसे मान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे हमारे शरीर में लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिसे कि हम ये सोचें या इसके लिए हम डॉक्टर साहब के पास जाएं कि हमें हृदय रोग हो सकता है।
3: देखिए, आपके आकाशवाणी के माध्यम से बहुत ही एक अच्छा सुंदर विषय उठाया गया है हृदय रोग के ऊपर जो है, और विश्व हृदय दिवस भी लोग मनाते हैं विश्व में
2: जी जी जागरूकता के लिए,
3: जागरूकता के लिए।
2: हुँ.
3: और सबसे हास्यास्पद स्थिति तो ये होती है कि आदमी को अवेयर करने के लिए दिवस बनाने पड़े हमें।
2: जी जी जी
3: मानव शरीर अनमोल है,
2: हुँ.
3: ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे रहन सहन, खान पान, हमारी जो दिनचर्या है इतनी गड़बड़ हो गई है, और गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि हम आधुनिक बनने की चाह में अपने शरीर के साथ में हम बहुत जाते जाती कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें हम पहले समझ लें तो हो सकता है कि हृदय रोग हमें हो ही ना। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सांस फूलने लगता है, एक सांस फूलना शरीर की इम्यून पावर कमजोर होने की वजह से होता है, एक होता है कि सीढ़ियाँ जब आप चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो आपके सीने में एक हल्का सा भारी दबाव महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, और ये दर्द धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपके बाएं साइड में, बाएं हाथ में होते हुए आपके बाएं हाथ की उंगलियों तक झंझनाहट शुरू हो जाती है। तो लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसा ही हो रहा है, खान पान नहीं हुआ है, मैं सो नहीं पाया था, दबा लिया। नहीं, यदि आपके बाएं तरफ चेस्ट में पेन हो रहा है और झंझनाहट हाथ में की उंगलियों तक आ गया, तो इसे आप हल्के में मत लें, क्योंकि यह आपके हृदय रोग की शुरुआत, वो आपको बता रहा है हृदय कि हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको देखो आप। दूसरी चीज, जब आपके सीने में दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है सांस लेने में तकलीफ होगी, जब सांस लेने में तकलीफ होगी तो उसे आप नजरअंदाज न करें। पैरों में क्या होता है, आप जूता पहन रहे हैं, आपके पैरों में सूजन आ गई, अब आप कहते हैं अरे ये तो हो गया पैर लटकाने से हो जाता है, नहीं, पैर लटकाने से होता है, लेकिन आप इसको अपने हृदय से भी जोड़ करके देखें कि हमारे पैरों में जूता पहनने से यदि सूजन आ रही है, मेरे पैरों में सूजन है, जूता पहनने का मतलब कि हमारे तंग जब वो लगने लगे तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, थकान हो रही है, मन नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है, पसीना हो रहा है, तो आप तुरंत इमीडिएट अलर्ट हो जाइए कि आपके हृदय के साथ में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है और गड़बड़ होने वाला है।
2: जी, यानी कहने का मतलब कि जो हमारा हृदय है ये संकेत देने लगता है और उस संकेत को हमें समझने की जरूरत है। तो कौन कौन से ऐसे वजह हैं जिनकी कारण हम लोग हृदय रोग की तरफ बढ़ने लगते हैं, कौन कौन से ऐसा वजह देखते हैं आप लोग?
3: देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हृदय, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका हृदय एकदम बढ़िया होता है, फर्स्ट क्लास का होता है, और हृदय ही एक ऐसा मानव शरीर का अंग है जो जीवन पर्यंत काम करता है। जब सृष्टि में आता है और सृष्टि से जाता है तब तक वो हृदय काम करता है, जब अंत समय आता है तो लोग लिखते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो ऐसा नहीं है, हृदय जो आपका काम कर रहा है, जो पंप कर रहा है, और पंप करने के दौरान उसे स्वस्थ रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपको एक उदाहरण दे दें, आधुनिक बनने की चाह में हम धूम्रपान करने लगते हैं। धूम्रपान करने की वजह से क्या होता है, हमारा लंग्स प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं हमारे हृदय को भी वो प्रभावित करता है।
2: जी।
3: दूसरी चीज, हमारे खान पान, जीवन शैली, खान पान क्या है, यदि आपको सात्विक भोजन, सही ढंग का भोजन करना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम खाने में कुछ ऐसी ज्यादती कर देते हैं चीजों की, जिससे हमारे शरीर की जो हमारी जो धमनियां हैं, धमनियों में रक्त का प्रवाह धीरे धीरे धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमने लगती है। अब उसको आप एक उदाहरण के रूप में आपको बता दें, जैसे पाइप है, पानी बह रहा है, नया पाइप है, फर्स्ट क्लास का पानी बह रहा है, फ्लो बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसमें तलछट जमने लगता है, धीरे धीरे उसमें काई जमने लगती है, तो पानी का फ्लो कम हो जाता है। वही हाल हमारे हृदय का होता है, पंप तो करता है, लेकिन हमारे गलत जीवन शैली, आचार विचार, खान पान की वजह से क्या होता है, हमारे उस धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से रक्त का प्रवाह सही ढंग से नहीं हो पाता है। जब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हमारे जो हृदय के मसल्स है, मांसपेशी है, उसे उतनी ताकत नहीं मिल पाती, उसके अंदर एक विकार पैदा होता है, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो जो है डिस्टर्ब होने लगते हैं, और डिस्टर्ब होने का परिणाम ये होता है कि आदमी हृदय रोग की तरफ बढ़ने लगता है जो है।
2: जी जी, अभी शुरू में आपने कुछ लक्षण बताए, फिर ये जो वजह है, अभी सर आपने शुरू में कहा कि जो संकेत मिलते हैं और जो हृदय रोग के लक्षण प्रतीत होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाथ होता है हमारी दिनचर्या का, हमारे खान पान का, हमारे रहन सहन का। तो सर, हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो हमारे ग्रामीण श्रोता हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, इन चीज़ों पर वो कैसे ध्यान रखें?
3: देखिए, ग्रामीण जगत में, ग्रामीण में रहने वाले लोगों को तो मैं तारीफ करूंगा कि उनकी दिनचर्या बहुत ही अच्छी होती
2: जी,
3: है।
2: जी, जी।
3: वो शहर के आधुनिकीकरण को देख करके अपने आप को शहरीपन में ले आ दिए तो रोग का कारण बनता चला जा रहा है। गांव के लोगों की एक दिनचर्या है, सुबह सूर्योदय के पहले उठना, खान पान उनका संतुलित होना, अनावश्यक नशा नशीले पदार्थों से दूर रहना। तो मैं तो यही कहूंगा कि हृदय रोग से यदि बचना है तो आपको पहले अपने जीवनचर्या को दुरुस्त करना होगा। जीवनशैली को दुरुस्त करने में क्या है कि आपको टहलना होगा, आपको घूमना होगा, स्वस्थ जो प्रकृति ने आपको मुफ्त में उपहार दिया है, स्वच्छ वातावरण और शुद्ध हवा, उसको आपको लेना होगा। और इसके बाद अपने खान पान में हरी सब्जियों को आप रखिए, तैलीय पदार्थों को आप हटाइए, और कोशिश करिए कि जैसे कहते हैं ना कि अलसी है, अलसी के खाद्य पदार्थों को भी अपने खाद्य पदार्थ में रखिए, जिससे कि हार्ट को मजबूती मिले, क्योंकि हमारे दिनचर्या हमारे खान पान से ही निर्भर करती है, और धूम्रपान से और नशीले द्रव्यों से आप दूर रहिए।
2: जी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि धूम्रपान से हम सभी लोगों को बचना चाहिए और अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सर, चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन?
3: मैं आपके आकाशवाणी के माध्यम से जन मानस को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अभी कोरोना का जो समय है, अभी पूरा जो है अभी चल रहा है, और ऐसे में हमें 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और हाथ धोने की तो बात सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं जनपद के सभी छोटे छोटे बच्चों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने घरों के आसपास एक ऐसी सूची बनाएं जो उनके अंकल, चाचा, चाची, काका, काकी जो भी वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं टीकाकरण, वो उनको लिस्ट बना करके और जो है अपने जो है डीएम कार्यालय में जो कंट्रोल रूम है और जो टीकाकरण जो केंद्र है वहां पे वो फोन करके बताएं कि हमारे अगल बगल में इन इन लोगों ने टीकाकरण नहीं कराया है, और उन्हें प्रेरित करें जिससे कि 100% जो है टीकाकरण करके अपने जनपद को हम लोग जो है संतृप्त कर सकें, और खान पान जीवन शैली सही रखें जिससे अपना जनपद हृदय रोग से मुक्त रहे।
2: जी, तो श्रोताओं देखें, आज हमारे साथ थे होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार सिंह, और हम अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखें, क्योंकि हृदय रोग से बचने के लिए जो खान पान, दिनचर्या और जो रहन सहन है, इस पे हम सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा, धूम्रपान से बचना होगा, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: पंच भैया लोग देखा है, हम लोग खेती बाड़ी से जुड़ल है और अगले चार दिन अपन कैसन मौसम रही, मौसम का जानकारी हम लोगों के जरूर हासिल करे के चाहिए। तो आज देखें हमारे संपर्क जौन बा डॉक्टर शिव मंगल सिंह साहब से, जौन की तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भू भौतिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आप हुआ। और आज आपसे ही हम लोगन जानब कि मौसम का हाल चाल बा। डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में खास तौर से अगर हम बात करें चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर वाराणसी के जिलों में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले एक सप्ताह गरज चमक के साथ मध्यम और कहीं कहीं जो है भारी वर्षा हुई है। और इस दौरान जो है हवा गति आप लोगों ने महसूस किया होगा कि 25 से लेकर 35 किलोमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से चली है, जिसके कारण जो है तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी और अपेक्षित जो है ठंडा बढ़ गया था। लेकिन अगर हम अगले 3-4 दिनों की बात करें तो अब मौसम में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा है और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में जो है मौसम सामान्य रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान में लगभग 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने की संभावना है। और किसान भाइयों, अगले 2-3 दिनों तक क्षेत्र में किसी भी विशेष चेतावनी की कोई संभावना है नहीं। कृषि मौसम विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो हाल में वर्षा हुई है और अब तापमान में जो है वृद्धि होने के कारण खेतों में जो मिट्टी है वो उसमें नमी है और वातावरण में जो है ना आर्द्रता अधिक है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि धान की फसल की बात कर लें तो जो वर्तमान समय में बालियां निकलने से पहले जो पैनिकल इनिशिएशन की अवस्था है
1: जी,
2: उसमें क्या होता है कि खेत में पर्याप्त नमी जो है वो लाभकारी होता है, लेकिन लगातार अधिक नमी और अगर खेत में पानी जमा रहने पर क्या होता है ना कि ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट तथा अन्य विभिन्न प्रकार के रोगों का आगमन हो जाता है। तो इसलिए जो है ना कि पानी की एक संतुलित मात्रा खेत में रहे
1: जी।
2: और बहुत अधिक पानी जो है वो नुकसान का कारण बन सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि बरसात बंद हो गई है, धूप हो रहा है, तो किसान सोचे कि भाई खेती की भराई कर दे, जिसके जिनके पास सुविधा है इतना ना भर दे कि वो फायदा करने की जगह नुकसान करने लगे। और दूसरी बात, आपके क्षेत्र में जैसे कि सोनभद्र अंचल की बात करें तो उसमें मिर्च भी एक मुख्य फसल है और इस समय जो मिर्च की फसल की अवस्था है वो फूल के साथ अब फल भी बनने लगे हैं
1: जी जी।
2: तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि थोड़ा सा दिन में आर्द्रता ज्यादा है और तापमान बढ़ रहा है 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें क्या होता है कि फल सड़ने का और एंथ्रेनोज जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है
1: जी जी जी जी।
2: ये सब होता क्यों है? किसानों को ये सलाह है कि अगर तापमान बढ़ रहा है और ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो जल निकास की उचित व्यवस्था रखें और जो भी फल हो या फिर जो पौधे बरसात के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गए

0: उसको जो है तत्काल रूप से अपने खेत से हटा दें, जिससे कि दूसरा भी फसल आपका नुकसान ना हो और वो
1: जी
0: सुरक्षित पड़ा रहे, ठीक है। और वहीं जो है अगर हम पशुपालन की बात कर लें किसान भाइयों, तो अभी क्या है कि गर्म और नम वातावरण से पशुओं की जो है भूख और दूध उत्पादन में अचानक से जो है कमी आ सकती है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो भाई उसका असर दिख सकता है पशुओं पे भी। तो इसके लिए क्या है कि किसान भाई पशुओं को स्वच्छ पानी की मात्रा जो है बराबर बनाए रखे पीने के लिए,
1: जी
0: और जो दूध देने वाली पशुएं हैं ना उनके थन की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। अगर कुछ भी थन में सूजन या फिर अन्य कोई असामान्य लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत जो है चिकित्सक से संपर्क करें और उनके बताए गए निर्देशों के अनुसार ही जो है सही करवाएं। अगर बिना जांच किए अगर कुछ करते हैं तो उसका जो है दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है पशु के ऊपर। किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों जय जवान जय किसान।
2: जग्गू भैया भैया हम लोग जानकारी सुन ली है जो शिव मंगल सिंह जो मौसम वैज्ञानिक भी अच्छू कराना है, और हम लोग हमेशा जो कहा जलाना कि हम मौसम पर हम लोग को नजर हमेशा रहे के चाहिए
1: बिल्कुल
2: ताकि खेती किसानी के काम हम लोग का आगे बढ़त रहे। और आज देखें समन्वित कृषि प्रणाली जोत का सही इस्तेमाल ये बारे में देखा हम लोग बात बात कही भी कही जाए, और कृषि सह व्यवसाय पशुपालन ये बारे में हम लोग जानकारी भी रख रहे हैं, सुनल जी सुनवावल जी सब लोगों के पंच भैया लोगों के।
1: तो एक बात बता दें, देखा अपन देश जवन है कृषि प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है, संस्कृति धरोहर है यहाँ का। तो ऐसा स्थिति में आज अपने पजरे जवन है एक प्रगतिशील किसान हुआ रमेश कुमार भैया, जगत नारायण भैया बातचीत कई लोग उनका का कुछ अनुभव बा पशुपालन पे। भैया बिना गाय गोरु के तो खेती बढ़ नहीं सकत, हो नहीं सकत, तो ओके हमन पहले सुनल जाए फिर आगे हमन के बातचीत।
2: सुनल जाए।
3: श्रोताओं, हम लोग खेती किसानी में बहुत रुचि लेते हैं, लेकिन कृषि सह व्यवसाय के लिए तरह तरह की युक्तियाँ भी अपनाते हैं। यदि पशुपालन की बात करें तो पशुपालन कृषि की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं का रख रखाव, प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल और उनका आर्थिक उपयोग कैसे किया जाता है, इन विषयों पर महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ता है। पशुपालन की यदि बात करें तो दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी फार्मिंग जैसे गाय भैंस बकरी इत्यादि का पालन, और कुक्कुट पालन की बात करें तो पोल्ट्री और भेड़ और बकरी पालन इत्यादि हम लोग अपने अंचल में इसका अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। आज सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के घीवी से रमेश कुमार स्टूडियो में आए हैं। आपका पशुपालन संबंधी क्या कुछ अनुभव है, बातचीत होगी। तो रमेश कुमार जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, आप स्टूडियो में आए। और हम चाहेंगे पशुपालन के बारे में कि हम पशुपालन करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखें।
4: जी, सबसे पहले किसान भाइयों को प्रणाम। खेती में पशुपालन एक प्रमुख अंग है, पशुपालन के बगैर खेती संभव नहीं है।
3: बिल्कुल।
4: और पशुपालन में पशुओं की अच्छी सेहत और उसके बेहतर दूध उत्पादन के लिए और संतुलित आहार, साफ सफाई, समय पर टीकाकरण, बहुत सारी बातों को एक साथ ध्यान दे करके तब वो पशुपालन एक अच्छे लाभ की ओर जा सकती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि इनका देख रेख, और सबसे बड़ी बात तो एक यदि नस्ल की बात की जाए कि अपने अंचल में किस नस्ल के पशु पालन करें कि अच्छा उसका जो मौसम के या भौगोलिक स्थिति के अनुसार वो अच्छा से चले, तो आप कौन सा पशु पालन किए हैं?
4: जी, सबसे पहले है कि पशु पालन में सबसे पहले पशुओं के नस्ल का चयन
3: जी,
4: कि कौन से नस्ल हमारे यहाँ अच्छा दूध उत्पादन और उसके स्वास्थ्य भी अच्छा हो। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ जो हम किए हैं साहिवाल नस्ल की गाय है।
3: अच्छा अच्छा गाय
4: जो
3: पाल रहे हैं।
4: देसी गाय के में आती है, मूल भारत के ही रहने वाली है, तो देसी गाय के रूप में, और अच्छे उसमें दूध की भी क्वालिटी सही रहेगी और उससे जो बछिया होंगे तब भी और बछड़े होंगे तब भी वो दोनों काम में, खेती के काम में आ जाती है।
3: सबसे महत्वपूर्ण तो बात आती है, चाहे मनुष्य हो या पशु हो या जीव जंतु कोई भी हैं, सभी लोग के लिए एक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान साफ सफाई पर रखना होता है
4: जी।
3: तो ये गाय जो हैं इनके देखरेख में साफ सफाई क्या ध्यान रखते हैं आप?
4: इनका देखरेख में सबसे पहले इनका आवास का प्रबंधन।
3: अच्छा,
4: कि आवास किस तरह का है, आवास हवादार होनी चाहिए और सूखा भी रहे।

0: सूखा भूसे के रूप में, चाहे पुआल का भूसा हो और या तो गेहूं का भूसा हो, और कुछ दलहनी की फसलें के भी भूसे का प्रयोग कर सकते हैं।
1: कुछ चुनी खुदी भी होना
0: इसके
1: चाहिए।
0: साथ साथ जो पशु दूध देती है या गाभिन है, उनके विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है,
1: जी
0: तो उसमें दाने का मिश्रण, अगर जो गाय 5 लीटर दूध दे रही है तो उसको 1.5 किलो
1: अच्छा,
0: राशन अतिरिक्त देना पड़ेगा दूध उत्पादन के लिए,
1: अगर 5 किलो दूध दे रही है तो 1.5 किलो अनाज उसको देना पड़ेगा, चाहे
0: दूध
1: जिसे
0: दूध उत्पादन के
1: दूध
0: लिए,
1: उत्पादन के।
0: और
1: हाँ
0: जीवन निर्वाह के लिए भी 1 से 1.5 किलो,
1: अच्छा
0: वो
1: अच्छा
0: कि वो
1: अच्छा
0: जीवित रहे, उसका शरीर बरकरार रहे,
1: हाँ, नहीं तो
0: उसके लिए
1: अगला
0: भी
1: अगले बार
0: जीवन
1: दूध कैसे
0: निर्वाह के लिए
1: लेंगे।
0: भी देते रहनी है, और दूध उत्पादन अगर दूध दे रही है तो दूध के लिए, या जो पशु अथी जुताई में या और काम में ले रहे हैं प्रयोग, तो उसको भी अलग से
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: चारे
1: बिल्कुल
0: दाने की व्यवस्था देने पड़ेगी।
1: बिल्कुल, तो निश्चित रूप से तो इसका रख रखाव तो इस प्रकार करना चाहिए,
0: जी,
1: और खान पान के भी आपने बताया, सफाई की का ध्यान देना होगा।
0: सफाई क्या है कि उनके अथी आवास जब बनाए तो ढालूदार रहे,
1: हाँ,
0: कि जो भी गोबर या गोमूत्र, और सबसे सफाई में इन पशुपालन में एक ये बात है कि सबसे इनका बेहतर इस समय अपशिष्ट है, जैसे गोमूत्र की चर्चा होती है, गोबर की बात होती है, तो गोमूत्र भी इकट्ठा हो और साफ सफाई भी हो जाए और गोमूत्र
1: वो
0: कलेक्ट
1: भी
0: भी हो जाए,
1: इकट्ठा हो जाए, बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: एक अथी ढालूदार नुमा फर्श बने कि उस पर उनसे निकलने वाले गोमूत्र और गोबर अलग अलग इकट्ठा हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये धुलाई भी करते हैं, नहलाते होंगे पशुओं को।
0: जी, प्रतिदिन सुबह साफ सफाई में साफ कर करके और धुल करके नहला देते हैं, फर्श की भी सफाई हो जाती है और जानवर की भी सफाई हो जाती है।
1: प्रत्येक जीवधारी के लिए साफ सफाई कितना आवश्यक है।
0: जी, बिल्कुल आवश्यक है। जैसे अगर पहचान करनी होगी कि कितना आवश्यक है, तो हम जो देखे अपने अनुभव किए कि गाय में अगर 2-4 दिन अगर हम नहीं नहलाए और फिर अगले दिन पानी गिराए, तो जिस तरह से हम लोग का शरीर पर पसीना आता है, कलर बदल
1: हाँ,
0: जाता है पसीने का, उस तरह से वो कलर पानी का दिखाई देने लगता है कि हाँ ये
1: गंदा गंदा
0: देखिए
1: गिरने लगेगा।
0: इनका पसीना हुआ था और ये शरीर में था, उससे उनके जू किलनी कुटकी ये सब और उसमें पनपने लगते
1: पनपने
0: हैं।
1: लगेगा अगर साफ सफाई ना रखा
0: जी
1: जाए, नहलाना या ना जाए, तो निश्चित रूप से अब इसमें जो है कि जितने साफ सफाई रखेंगे उतने जो है कि स्वस्थ रहेंगे,
0: जी जी
1: और जब स्वस्थ रहेंगे तो भरपूर दूध भी देंगे। तो चूंकि इसमें इसके अवशेष की बात आप कर रहे थे, जैसे गोबर हो गया, मूत्र हो गया,
0: जी
1: तो इसका प्रयोग फिर क्या करेंगे।
0: इसका फिर देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम के आम गुठली के दाम।
1: बिल्कुल।
0: गोबर में एक और तत्व है, गैस, जो वो अपने आप वायुमंडल में चला जाता है, मीथेन गैस, जो कि ये जानवर के अथी गोबर से ही प्राप्त होते हैं, तो उसमें मीथेन गैस होता है, उसके लिए पहले खाद के रूप में तो प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बीच में जो गैस है उस गैस को कलेक्ट करने के लिए गोबर गैस के माध्यम से गोबर गैस के माध्यम से वो गैस का प्रयोग कर लेंगे, और जो उसके बाद जब निकलेगा तो उसको सलरी, तो उस सलरी से अगले फसल में
1: उसको डाल
0: प्रयोग
1: दें,
0: करेंगे।
1: खेत खेत में डाल देंगे,
0: जी,
1: अब वो जो है कि
0: पोषक
1: अच्छा।
0: तत्व तो भी बरकरार रह जाएंगे गोबर की खाद की।
1: मतलब ये अगर ये कह दिया जाए कि कृषि के चक्र में अगर लिया जाए, तो जिस तरह के कि गौ के गोबर से मूत्र से फसल उत्पादन होंगे, और
0: जी
1: फसल के फिर अवशेष को गाय को या तो जो है कि जो भी पशुपालन है उसको खिला सकते हैं,
0: जी जी
1: और एक दूसरे के पूरक होंगे, और सीधे दूध बेच करके इससे मुनाफा ले लेंगे।
0: नहीं, पशुपालन से 2-3 तरह के लाभ हैं। गोमूत्र प्राप्त हो जाएगी, उसको या तो आप छान करके साफ कर कर उसको भी बेच करके आय का स्रोत बना सकते
1: कीटनाशक
0: हैं।
1: बना सकते हैं अभी।
0: आय का स्रोत, अगर अपने प्रयोग नहीं करना है तो आय का स्रोत में वो भी एक आपको उससे पैसा प्राप्त हो जाएगा,
1: क्या बात।
0: या तो फिर अगर गोबर है तो उसको भी बेच करके उसके आय के स्रोत में जोड़ा जा, मतलब उसको प्राप्त हो जाएगा। अगर किसान है तो अपने फसल पर गोमूत्र का प्रयोग करें, खेत में उर्वरक के रूप में गोबर का प्रयोग करें, तो उससे भी लाभ हो।
1: तो इसके प्रजनन के लिए क्या युक्ति अपनाते हैं।
0: प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधान। प्रजनन में कृत्रिम गर्भाधान से क्या होता है कि उन्नत नस्ल की सांड, जो नर जो अधिक दूध उत्पादन देने वाले गाय से उनके सीमन कलेक्शन से होता है, तो उसमें जब कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो जो आने वाली संतति है उसमें दूध बरकरार रहता है, यहाँ तक कि दूध की क्षमता बढ़ने की भी उम्मीद।

0: रहती है। तो इस प्रकार से उन्नत नस्ल की गाय भी अपने यहाँ प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं देखें, बातचीत कितना महत्वपूर्ण है और अभी और भी शेष है, तो लेकिन जो है कि हम लोग को ध्यान इतने देना है कि पशु के यदि हम लोग साफ सफाई रखें, खान पान में ध्यान दें, प्रजनन गर्भाधान के लिए जो है कि अगर हम लोग ध्यान दें तो निश्चित रूप से अच्छे नस्ल के पशुपालन करके अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। और ज़रूर पशुपालन करनी चाहिए, खासकर अगर गाय के जो है कि पालन हो तो बहुत महत्वपूर्ण। एक कहावत भी है कि घर घर में बीमारी आई है जब से गौ माता बिसराई है, अर्थात जब से गौ पालन समाप्त हुए हैं तब से जो है कि तरह तरह की बीमारियां भी घर पर आई हैं। ये बातचीत हो रही थी रमेश कुमार जिससे, जो सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी बला के घीवी से आज स्टूडियो में आए और इतने अच्छे जानकारी दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी दिया जा गजगुरु भैया रमेश कुमार भैया जो एक प्रगतिशील किसान हवा और जो भोला भैया से बातचीत भैया कि कृषि सह व्यवसाय पशुपालन के बारे में।
3: भाई देखा गौरी भाऊ जी, खेती बाड़ी गोरुवारी का बात हमेशा अपने कार्यक्रम के माध्यम से करी ला जा, लेकिन भैया जब अगर रमेश कुमार भैया का बातचीत सुन लू
2: हाँ
3: तो भैया एक आंख खेते पहुला दूसरा आंख बाजारी में, तो कहाँ के पाती है अपने पजरे तनियो के फरियाई के बच्चा।
2: भैया आज देखा मधुपुर का पाती हाथ लगा ला पुनवासी चौहान में भेज ले हम आ कुंतल में है। हम बता दें कि लाल आलू है 1300 रुपया कुंतल, सफेद आलू है 1100 रुपया कुंतल, प्याज है 4500 रुपया, लहसुन है 10000 रुपया, गोल बैगन है 4000 रुपया कुंतल और पतला वाला है 2500 रुपया, और टमाटर है 3500 रुपया, परवल है 6000 रुपया, बोड़ा है 2500 रुपया, भिंडी है 1500 रुपया, कुद्रुन है 1800 रुपया, करेला है 3000, सूरन है 4000, फूल गोभी है 2500 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 2200 रुपया सैकड़ा, नींबू है 500 रुपया सैकड़ा, धनिया है 10000 रुपया कुंतल, हरी मिर्च है 3500 रुपया, अदरक है 10000 रुपया, शिमला है 5000 रुपया, लौकी है 2000 रुपया।
3: तो देखा ई रहल है पाती के माध्यम से ताती भैया भेजना, राम लक्षण और संगाती भैया के एक विकास गीत उनके सुनावल जाए भैया।
2: सुनिए

पूरी भौजी राम लक्षण संघाती भैया का विकास गीत सुनत अली है जा, लेकिन एक बात कही कि स्वच्छ भारत का जोन अभियान जो मिशन है जोन हमन के दिल और मन में है कि भैया अपन गांव घर के अगल बगल का साफ सफाई रहे के चाहिए, गोरु चौवा जहाँ हो वहाँ सफाई रहे के चाहिए, आबो हवा साफ सुथरा शुद्ध होवे के चाहिए, आ जवन पानी है ओके भी बहुत साफ सुथरा होवे के चाहिए। घड़ी के सुई इशारा करत बा यही बात के

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत कार्यक्रम। हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: पंचो जय
1: हिंद।
0: हिंद। राजेश भैया
1: हाँ विनय भैया,
0: देखो, हम पंच अपनी खेती पाती में मेहनत करी थन और कोशिश करी थन कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होए, फसल मुनाफे के होए, जिससे अपन काम बढ़िया से चलत रहा है।
1: बिल्कुल विनय भैया सही कहे हो। कहे थे देखो, अपन जो खेती पाती रहा थे ना, वो अपने परिवार का जीवन अपन तो चलते हैं, साथ में तमाम जो जरूरतें होती हैं उनका भी पूर्ति होते हैं।
0: तो भैया देखो, हम पंचन का ये ध्यान रखे के चाहिए कि अगर हम एक फसल के भरोसे रहे, एक काम के भरोसे रहे, तो वहाँ नुकसान या जोखिम के संभावना ज्यादा है। इसके खातिर हमका कृषि विविधीकरण की तरफ जाएगा चाहिए।
1: देखो भैया, आप बिल्कुल सही कहे हो। कहे थे अपन जब कृषि विविधीकरण किया जाते हैं, तमाम तरह के जो लाभ हैं उसके तरीके से लीन जा सकते हैं।
0: देखो भैया, खेती में हाँ आप तो काम करते हैं कि खेती के सहायक जैसे है मधुमक्खी पालन है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, औषधि खेती है। अगर ई प्रकार के हम पंच काम करते रहे थे तो इससे होते है कि अगर एक फसल में हमारा कोनो नुकसान होगा, घाटा होगा, तो दूसर से वो जोखिम पूरा हो जाते हैं। और भैया इसके साथ साथ जो अपन बचे वाला समय होते उनका भी सदुपयोग हो जाते हैं, तो समय जो है पैसा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भैया देखो, अपन कृषि विविधीकरण बढ़िया से हो, चीजें अच्छी हो, इसके लिए जरूरत है कि हम सबका जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो भैया आज के खबरों के माध्यम से जाना जाए कि कृषि जगत के कुछ खास हलचल का है।
2: सनई के कृषि अवशेष से तैयार रेशा अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया पहुंचेगा। सनई की खेती से निकलने वाले कृषि अवशेष, जिन्हें पहले कचरा समझकर जला दिया जाता था, अब उपयोगी उत्पाद तैयार करने में काम आ रहे हैं। करीब 100 टन सनई के कृषि अवशेष से उच्च गुणवत्ता वाला कपड़ा रेशा तैयार किया गया है। इस रेशे

0: में प्राकृतिक रूप से जीवाणु रोधी और फफूंद रोधी गुण पाए गए हैं। इसके उत्पादन में कपास की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तैयार रेशे को अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बाजारों में पहुंचाने की तैयारी है। दोनों देशों में निर्यात के लिए समझौते भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के माध्यम से वैश्विक खरीदारों से जुड़ने का अवसर भी मिला है। वर्ष 2021 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य कृषि अवशेष का उपयोग कर किसानों के लिए आय के नए अवसर तैयार करना है। इससे करीब 1000 किसानों की आय दोगुनी होने का दावा किया गया है। इस पहल से कृषि अवशेष के उपयोग के साथ किसानों की आय और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
1: राजेश भैया।
2: हाँ विनय भैया।
1: कृषि विविधीकरण में पशुपालन एक बहुत प्रमुख कार्य है जिसका लगभग सब किसान भाई करते हैं।
2: बिल्कुल सही क्यों भैया, कहे से अपने पंच करत हैं, चाहे दूध उत्पादन ले रहे हम देखे थे ठीक है, और दूध उत्पादन साथ में उसके बाद जो अपने जो अपशिष्ट पदार्थ निकले थे वो भैया खेत का पहुँचा देते हैं।
1: बहुत सही कहो भैया, देखो इससे दोहरा लाभ है कि अपन सेहत भी ठीक रहत, खेत की भी सेहत ठीक रहत है, लेकिन इसके साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो अपन पशुधन है वो की सेहत ठीक रहे।
2: बिल्कुल भैया सही कहो।
1: तो भैया जैसे कि हम पंचजन अपन हरा गोरु पाले हैं, उमा लंपी चर्म रोग का है, इसका कारण का है, इसका कैसे निवारण किया जा सकते है, इस बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर संगीता तिवारी बहनी।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश, जहां निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डॉक्टर संगीता तिवारी साहिबा टेलीफोन लाइन पर है। डॉक्टर साहब नमस्कार।
4: मेरा सुनने वाले किसान पशुपालक भाइयों बहनों को सादर नमस्कार।
3: डॉक्टर साहब, आजकल लंपी चर्म रोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पशुओं में दिख रहे हैं लक्षण, तो क्या कहना चाहेंगी?
4: हाँ, बताना चाहती हूँ कि सरल भाषा में लंपी स्किन डिजीज या लंपी चर्म रोग जिसको कहते हैं, ये एक विषाणु जनित संक्रामक बीमारी है। ये वायरस कैप्री पॉक्स समूह का हिस्सा है। ये रोग सामान्यतः गायों और बैलों में सबसे तेजी और गंभीर रूप से फैलता है, और ये जो बरसात का सीजन है और ये जो तापमान है इस वायरस के लिए बड़ा बेहतरीन होता है, इसलिए ये रोग प्रकट हो जाता है बरसात से पहले।
3: तो डॉक्टर साहब, एक पशु से दूसरे पशु में कैसे पहुंचता है?
4: देखिए, ऐसा है, जो ये लंपी स्किन डिजीज वायरस है ये हवा के द्वारा ही फैल जाता है, और दूसरा लंपी वायरस के जो वैक्टर्स होते हैं, वैक्टर का मतलब ये होता है, सामान्य और सरल भाषा में बताना चाहती हूँ, कीड़े मकोड़े एक पशु से दूसरे पशु में पहुँचाते हैं। मच्छर, मक्खियाँ, किल्ली, जब कोई खून चूसने वाला कीट किसी संक्रमित पशु को या गौवंश को काटता है तो वह सिर्फ स्वस्थ पशु को काट लेता है, तो ये वायरस अस्वस्थ पशु से स्वस्थ पशु के बीच में पहुंच जाता है।
3: तो शुरुआती लक्षण क्या देखते हैं पशुओं में लगता?
4: देखिए, ऐसा होता है कि अगर संक्रमण हो जाता है तो उस केस में हमारे गौवंश में तेज बुखार 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तेज बुखार हो सकता है। पशु सुस्त हो जाता है, चारण कम खाता है और या फिर बिल्कुल बंद भी कर सकता है। आंख और नाक से पानी आता है, मुंह से लार टपकने लगता है, और जो सबसे ज्यादा प्रकट होने वाला लक्षण है वह है शरीर पे काठे, गांठदार दाने बन जाते हैं। बुखार आने के 2-3 दिन के बाद पशु के पूरे शरीर पर गर्दन, सिर, थन, पैरों के बीच में 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास की कड़ी और उभरी हुई गांठे बन जाती हैं। छूने से गांठे काफी सख्त महसूस होती हैं, और इसके कारण पैरों में सूजन और लंगड़ापन, और ये सब चलने में पशु को बहुत कठिनाई आती है, गौवंश को, वो तो लंगड़ाने लगते हैं और दूध उत्पादन में अचानक बहुत कमी आ जाती है। अगर ये इलाज समय पे ना प्राप्त करें तो इन परिस्थितियों में ये गांठे फट भी सकती हैं और गहरे घाव का रूप ले लेती हैं।
3: डॉक्टर साहब, शुरुआती लक्षण अगर दिखे लंपी चर्म रोग की, जैसा आपने बताया कि तेज बुखार, आंख और नाक से पानी, शरीर पर गांठदार दाने, पैरों में सूजन और लंगड़ापन, या दूध उत्पादन में भारी गिरावट के लक्षण दिख रहे हैं, तो पशुपालक भाई बहन करें क्या?
4: देखिए, सबसे पहला काम जो मतलब तकनीकी रूप से होना चाहिए वो है अलग करना, यानी कि आइसोलेशन, या प्रभावित है इस लंपी स्किन दिखने से उसको सबसे पहले गाँठे या बुखार दिखने पे उसको पूरा स्वस्थ पशुओं से अलग कर दिया जाए, उसको लेकिन हवा

0: दार छायादार ऐसे स्थान पर बांधा जाए तो उसको कहाँ आराम मिलेगा। हवादार छायादार स्थान पर उसको बांधे, उसका चारा और पानी का बर्तन बिल्कुल अलग कर दिया जाए ताकि अन्य पशु या गौवंश उसका प्रयोग ना करें और हमारे बीमारी का प्रभाव वहीं रुक जाए। और दूसरा काम जो सजेस्टेड है वो ये है, पशु चिकित्सा केंद्र या पशु चिकित्सा अस्पताल से संपर्क किया जाए और कोई भी दवा जिसे कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन अपने द्वारा नहीं देना चाहिए। इसका बड़ा खास और टिपिकल ट्रीटमेंट है और वही ट्रीटमेंट मिलने पे ये अपने आप ही सही होना शुरू हो जाता है। करीब करीब 8 से 9 दिन इसकी रिकवरी में लगते हैं। नीम के पानी से सफाई करनी चाहिए त्वचा,
1: यानी नीम की पत्तियों को उबाल करके।
0: जी जी, उबालना चाहिए। जब पानी गुनगुना रह जाए तो उससे पशु के शरीर और घावों को साफ कर सकते हैं। और यदि गांठें फूट गई हैं, नारियल के तेल में कपूर मिला के या हल्दी मिला के या नीम का लेप मिला के अगर घावों पे लगाया जाए तो मक्खियां भी नहीं बैठेंगी। और मक्खियां ही, जैसे मैंने आपको बताया, कि इसको प्रभाव को आगे बढ़ाती है और कीड़े नहीं पड़ेंगे घाव के अंदर।
1: पोषक और सुपाच्य चारा भी देना पड़ेगा।
0: जरूर, पोषक और सुपाच्य चारा ही आहार जब हम देंगे तो कड़ा चारा नहीं देना, मुलायम चारा दें, क्योंकि पशु उस वक्त बीमार होता है। चोकर, दलिया, गुड़ और खनिज मिश्रण देने चाहिए ताकि पशु की रोग प्रतिरोध क्षमता बनी रहे। और पानी में थोड़ा गुड़ और नमक मिला के अगर देंगे तो शरीर में पानी की कमी और डिहाइड्रेशन पैदा नहीं होगा।
1: डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ये बीमारी पूरे उत्तर प्रदेश में न फैले, इसके लिए पशुपालन निदेशालय क्या कृत संकल्पित है?
0: देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और पशुपालन विभाग इस बीमारी को रोकने के लिए बहुत सारा कदम उठाए हैं कि जिस स्थान पे ये बीमारी पाई जाती है उसको हम रिंग वैक्सीनेशन किया जाता है और लाखों पशुओं को प्रतिरक्षित किया गया है इस रिंग वैक्सीनेशन से। अन्य राज्यों से जहां हमारी सीमा लगती है वहां पर जो है हम बेल्ट वैक्सीनेशन करते हुए वहां से भी अपनी रोक लगाते हैं ताकि बीमारी यहां की उधर ना जाए और उधर की इधर ना आवे, उसको रोक लगाया जाता है। वह सरकार के द्वारा पशु व्यापार और पशु मेलों के बीच तत्काल 8 स्थायी रूप से रोक लगाई जाती है ताकि संक्रमित पशु दूसरे क्षेत्रों में ना पहुंचे। और ब्लॉक स्तर पे रैपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन सरकार द्वारा जिले और विकास खंड स्तर पे टीमें गठित की गई हैं। सूचना मिलते ही ये टीमें अपने काम से लग जाती हैं, दवा वितरण और छिड़काव कराती हैं और टीकाकरण कराती हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा भी चालू कर रखी है, जो कि किसान भाई बहन सीधे 1962 पशु एम्बुलेंस सेवा को अपने जिला पशु चिकित्सालय के कंट्रोल रूम को फोन करके मोबाइल वेटरनरी यूनिट को अपने गांव में अपने द्वार पे बुला सकते हैं। और इसके अलावा प्रदेश स्तर पे भी हमने अपना कंट्रोल रूम का नंबर 1800-121-5141 जारी किया हुआ है। गौशालाओं की विशेष निगरानी की जा रही है, नियमित सैनिटाइजेशन और सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया जा रहा है।
1: डॉक्टर साहब, जो लंपी चर्म रोग से प्रभावित जानवर हैं, क्या उनको एलएसडी का टीका लग सकता है?
0: कभी भी बीमार पशु को जो बुखार है और गांठें पड़ गई हैं उसको टीका कदापि न लगवाएं, कभी भी नहीं लगाया जाता है। हाँ, अन्य पशुओं को टीका लगाया जा सकता है, प्रभावित पशु को टीका नहीं लगेगा, उसका इलाज किया जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जो स्वस्थ जानवर हैं वो लंपी चर्म रोग से प्रभावित न हो, उनसे संक्रमित न हो, इसके बचाव के कौन कौन से उपाय पशुपालक भाई बहन कर सकते हैं?
0: सबसे बड़ा बचाव तो यही है कि टीकाकरण सुनिश्चित हो। और नंबर 2 ये है कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया बनी रहे पशु की, तो उसको आहार बहुत अच्छा दिया जाए ताकि वो स्वस्थ और उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बड़ी रहे। यही एक थंब रूल या गोल्डन रूल होता है किसी भी पशु का, कि नेचुरली वो अपनी बीमारियों से लड़ ले, और टीकाकरण इसमें सबसे ज्यादा महत्व रखता है।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं में लंपी चर्म रोग कारण और निवारण के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मैं आपको कंट्रोल रूम का नंबर बताना चाहती हूँ। एक तो हमारा 1962 पशु एम्बुलेंस सेवा नंबर है और इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम का नंबर जो है 1800-121-5141 नंबर है, जिस पर वे बिल्कुल निसंकोच कभी भी कंट्रोल रूम को कॉल कर सकते हैं।
1: डॉक्टर संगीता तिवारी साहिबा, आज आपसे बात हुई पश्चिमी

0: उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों में पशुओं में लंपी चर्म रोग के लक्षण दिख रहे हैं, तो पूरे प्रदेश के पशुपालक भाई बहन कैसे सतर्क रहे, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: तो राजेश भैया।
2: हाँ विनय भैया।
4: बात देखो कुछ हो जाए बहुत महत्वपूर्ण बड़ी खास, वह होते अपने कार्यक्रम में बात गीत गोने के।
2: बिल्कुल भैया, कहा है जब मनोरंजन हो जाते अपने पंच माचा पर बैठे होते हैं और सुनते हैं गीत गोने तो और नीक लागत है।
4: तो भैया देखो, पंचन के स्वस्थ मनोरंजन के खातिर आज सतीश चंद्र श्रीवास्तव और उनके साथी एक गोने गाए रहे हैं, तो एक आनंद लीन जाए।

0: तो राजेश भैया,
1: हाँ भी
0: गौना ही सुनकर भाई हमार मन तो प्रफुल्लित हो।
1: अरे भैया हम झूम गए अपने पंचों भी झूमत हुई हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और देखो राजेश भैया, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो अपन पंच भाई हैं, कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ नवाचार कर रहे हैं खेती में, कुछ नई चीज ला रहे हैं। तो हम सबकी कोशिश रहा था कि इस पंच बहन के यहाँ अपने माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से ने और तमाम श्रोता पंचन तक का उनकी बात पहुंचाई, जिसे लोग प्रेरणा लें और आगे बढ़े। तो आज के किसान हैं रामभजन राय भैया, और ये जल ब्राह्मी और मंडूक पर्णी जो औषधीय फसलें हैं उनका उत्पादन करते हैं। तो जाना जाए इनके बारे में है और इनके अनुभव के बारे में है।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं गाजीपुर जनपद के बाराचौर ब्लॉक के करीमुद्दीनपुर गांव, जहां औषधि खेती से जुड़े राम भजन राय भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। राम भजन भैया नमस्कार।
3: प्रणाम डॉक्टर साहब।
2: भैया आप औषधि फसलों की खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कब से शुरुआत हुई?
3: डॉक्टर साहब, पहले तो हम लोग अपने परिवार के साथ धान गेहूं या ट्रेडिशनल खेती करते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद से ये हम खेती करने लगे। इसमें प्रॉफिट थोड़ा उससे अधिक होता है, इसलिए खेती करने लगे डॉक्टर साहब।
2: तो कहीं से आपको प्रेरणा मिली होगी कि आप पारंपरिक खेती के अलावा औषधि खेती की ओर मुड़े?
3: डॉक्टर साहब, मैंने अध्ययन किया कि दो ही चीजें पैसा मिलता है अधिक, पलन में चिकित्सा है, उसके बाद शिक्षा है। तो हमने सोचा कि जड़ी बूटियों से ही ये सब दवा बनती है, इनसे क्यों न खेती किया जाए। तो हमने पत्रिकाओं का अध्ययन किया, अन्य सब यूट्यूब पर देखा, सब अध्ययन किया, पीडीएफ फाइल अध्ययन किया, पढ़ा। तो उसके बाद हमें ज्ञान हुआ कि नहीं, इन सब फसलों की खेती किया जाए तो धान गेहूं चना मटर इससे अधिक फायदा होगा।
2: तो रकबा कितना है औषधि फसलों की खेती का आपका?
3: 2 एकड़ है डॉक्टर साहब वर्तमान समय में, इसे आगे बढ़ेगा। और
2: कौन कौन सी फसल इस समय आपके खेत में है?
3: इसमें मंडू पानी है, और मंडू पानी जिसे ग्रामीण प्रयास किए है, लेकिन असली ब्राह्मी इसे नहीं कहते हैं। एक जल ब्राह्मी है जो असली ब्राह्मी कही जाती है, और एक कृष्ण पर्णी है।
2: यानी ये दोनों मंडूक पर्णी की वेरायटी है?
3: बकुबा मुनरी जिसे ब्राह्मी कहते हैं, जल ब्राह्मी और मंडूक पर्णी, दोनों एक ही परिवार की है।
2: अच्छा।
3: लेकिन इनकी इनकी अलग अलग उपयोगिता है।
2: जैसे
3: अधिक डिमांड होती है जल ब्राह्मी की, जिसे उपयोगिता होती है, इसे न्यूरो में काम करती है, इसकी जड़ी बूटी से बनती है, टॉनिक बनता है, ब्रेन टॉनिक बनता है, या अन्य सब चर्म रोग में भी आती है, बीपी भी की दवा बनती है इसे।
2: और मंडूक पानी?
3: मंडूक पानी से भी आती है, लेकिन उतनी काम नहीं करती है जितनी जल ग्रामी करती है।
2: ये बताएं कि इसकी बुआई या रोपाई से पहले खेत की तैयारी से लेकर के फसल की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
3: पहले गहरी जुताई करवाते हैं, गहरी जुताई करवाने के बाद इसमें पाटा भी लगवाते हैं, 2-3 बार जो जुताई करवाने के बाद इसमें घास उस न रह जाए, तब इसमें किसी कार्य किया जाता है, लगाया जाता है पौधों को।
2: तो किस महीने में शुरुआत करते हैं, जल ब्राह्मी यानी बकोपा की और मंडूक पर्णी की?
3: तो इसके जून से अगस्त तक है लगाने का समय है, जब भी किसान भाइयों को इस समय मिले तो जून से अगस्त के बीच में लगा सकते हैं इसको।
2: आपने कब लगाया?
3: हम तो जुलाई के लास्ट में लगाया था डॉक्टर साहब।
2: इस साल?
3: जी।
2: तो लगाने में कुछ खास बारीकी करते होंगे?
3: नहीं डॉक्टर साहब, इसको रोपाई करवाई जाती है इन फसलों की, और जिसको कृष्ण पानी कहते हैं, कृष्ण पानी ब्रकाशिंग में फसल छिड़कवा जिसे किया जाता है, तो उसकी फसल इसके बाद वाली सीजन में लगाई जाती है जो नवम्बर दिसम्बर के करीब।
2: अच्छा, तो अभी क्या वृक्ष पड़ने की तैयारी में है आप?
3: अभी उसमें कुछ हमारे धान वन लगाया गया है, उसमें कटिंग हो, जो कटाई हो जाएगी तो उसमें लगाएंगे।
2: लेकिन इस समय आपके खेत में 2 एकड़ जल ब्राह्मी यानी बकोपा और मंडूक पानी तो है ही है।
3: जी जी।
2: फसल कैसी चल रही है?
3: फसल तो अच्छी चल रही है साहब।
2: खड़ी फसल में कौन कौन सी खास देखभाल करते हैं?
3: इसमें निराई गुड़ाई ज्यादा करना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है, अगर पानी बरसात ना हो तो पानी की मात्रा अधिक लगती है इसमें दोनों फसलों में, तो पानी जल प्रबंधन हमको करना पड़ता है, निराई गुड़ाई करना पड़ती है, खाद भी देना पड़ती है, ये सब करना पड़ता है।
2: क्योंकि औषधि फसलें हैं, आपकी कोशिश होती होगी कि अधिक से अधिक कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करें?
3: बर्मी कम्पोस्ट या जो और डंप खादें होती हैं उनका उपयोग किया जाता है डॉक्टर साहब।
2: अच्छा, ये बताएं कि इनकी कटाई कब से चालू होती है?
3: पाई के करीबन पहली तो होता है 6 महीने बाद, बकोपा जिसे हम जल ब्राह्मी कहते हैं, उसके 6 महीने बाद कटाई होती है, और मंडू पाणी जिसे सिंड्रेला सिटिका कहते हैं, इसका भी 6 महीने बाद होता है। लेकिन 6 महीने के बाद जैसे मंडू पाणी कहते हैं, हर 2-3 महीने के बाद कटिंग हो सकती है, लेकिन जलग्रामी की कटिंग हर 6 महीने के बाद करनी पड़ती है।
2: यानी हर 6-6 महीना पे बकोपा की कटिंग होती है, और पहली कटिंग मंडू पाणी में 6 महीना और उसके बाद 2-3 महीने के अंतराल पर।
3: हाँ जी जी डॉक्टर साहब, इसका कटिंग होता है।
2: और कोई महत्वपूर्ण बात जो औषधि फसलों में बकोपा और मंडूक पड़नी के साथ आप महसूस कर रहे हो?
3: और इस साल हमने यहाँ टेस्ट किया था ये कैमोमाइल का। कैमोमाइल भी हमारे धरती पर अच्छी होती है, और इसलिए इसका भी विचार बना रहे हैं कि कैमोमाइल भी कुछ लगाया जाए,
2: यानी आगे रकबा बढ़ाएंगे।
3: जी जी।
2: ये कितने सालों से आप जल ब्राह्मी और मंडूक पड़नी कर रहे हैं?
3: मंडूक पड़नी तो अगले 2 सालों से कर रहे हैं, लेकिन ये कोरोना काल जो 2020 में आया था उसमें उसी साल से इसका कर रहे हैं।
2: जल ब्राह्मी?
3: जी, जल ब्राह्मी 2020 से कर रहे हैं, और इसको 2 साल पहले से कर रहे हैं, इसको
2: मंडू पाणी को।
3: जी जी।
2: तो एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है बकोपा यानी जल ब्राह्मी की और मंडू पाणी की? उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा साल में होता कितना है?
3: डॉक्टर साहब, इस मंडू पाणी में लगभग 40-50 हजार रूपए खर्च आता है और 1-1.5 लाख रूपये बच जाता है पूरे साल में।
2: और मंडू पाणी में?
3: मंडू पाणी की बात कर रहा था, और ब्राह्मी की बात है, ब्राह्मी वो उसमें भी 40-50 हजार रूपया खर्च आता है, तो इसमें 1 लाख से कम कुछ बचता है, 90-85 हजार ऐसे कुछ बचता है सर।
2: तो कुल मिला जुला करके आप औषधि फसलों में जल ब्राह्मी और मंडू पाणी की खेती करके खुशहाल है?
3: जी जी जी डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए ठीक है करने में, और अन्य किसान भी इसके कर सकते हैं।
2: जो अब तक आपका तजुर्बा है औषधि फसलों की खेती का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
3: डॉक्टर साहब, एक बात इसमें रुकावट बनेगी, पहले इसकी मार्केटिंग देखा जाए, मार्केटिंग अगर सही नहीं कर पाएंगे, बाजार नहीं पहुंच पाएंगे, तो सारी किया हुआ बेकार चला जाएगा। इस
2: जो औषधि फसलें आप तैयार करते हैं उसको बेचते कहाँ हैं?
3: हमारा तो करने से पहले हम 7-8 साल तो इस बारे में गहन अध्ययन किया कि कहाँ कहाँ दीजिएगी, तो जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं इनसे हमारा संपर्क हो गया है, और इनसे अपना माल हम बेच लेते हैं सर।
2: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
3: 72-75-46-76-30 72-75-46-76-30 72-75-46-76-30
2: पूरे साल में कितनी आमदनी हो जाती है आपकी 2 एकड़ औषधि फसलों की खेती से?
3: लगभग 2 लाख के आसपास हो जाता है सर।
2: कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं?
3: जी, हमने ट्रेडिशनल परंपरागत खेती से लागत और खर्च की अपेक्षा ये फसलें हमारे हैं अच्छी हैं।
2: राम भजन राय भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप 2 एकड़ में जल ब्राह्मी यानी बकोपा और मंडू पाणी की खेती कर रहे हैं, कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं, और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे जी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: देखो राजेश भैया, समय जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है कार्यक्रम का, तो पंच बहन क्या बता रहे थे मौसम का अनुमान। तो देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी भारी बारिश के कोई चेतावनी नहीं है, मौसम आमतौर पर सूखा रही है। और इसके साथ साथ अपने पंच बहन के यहाँ अपन पता जरूर बता दो, कहे सुन की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कुछ और सुना चाहते हो तो उसके खातिर उनका पता बताना बहुत जरूरी है, जिससे अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचा सके।
7: बिल्कुल भैया सही कहो, कहे से अपने पंच कार्यक्रम तो सुना ही करते हैं, लेकिन अगर कोई प्रतिक्रियाएं दे देते हैं तो और भी अच्छा लगता है हम लोगों का, अपने पंचन का भी। तो पंच कार्यक्रम का पता नोट करें, कार्यक्रम का पता है किसानवाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ, पिन कोड है 226001।
6: और भैया के साथ जो अपन पंच भाई डिजिटल माध्यम से अपन बात हम तक पहुंचावा चाहते हैं, खास करके ईमेल के तरीके से अपन बात पहुंचावा चाहते हैं, तो उनके लिए ईमेल क्या पता है, farmandhomeairlko@gmail.com। तो राजेश भैया,
7: हाँ भी नहीं
6: देखो अब समय का इशारा है कि पंच बहन से लीन जाए आज्ञा।
7: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, कहा आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है सरकार। प्रदेश की 10 राज्यसभा और 11 विधान परिषद सीटों के लिए आज से शुरू हुआ नामांकन, भाजपा ने जारी की 6 एमएलसी उम्मीदवारों की सूची। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के समापन समारोह को किया संबोधित, कहा बेहतर कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास ने उत्तर प्रदेश को दी नई पहचान। और रेल मंत्रालय ने मेरठ को खुर्जा और सहारनपुर से जोड़ने वाली 2 मेमू ट्रेनों को दी स्वीकृति। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। कल देर रात तमकुहीराज में नारायणी नदी के एपी तटबंध का कुछ हिस्सा टूटने के बाद जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि से कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए थे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी और भरोसा दिलाया कि आपदा की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2-2 टीमें और पीएसी की 4 यूनिट तैनात की गई हैं। पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
3: सरकार ने यह भी तय किया है कि हर पीड़ित परिवार को सहायता भी देंगे। अगर कहीं जनहानि हुई है आपदा की श्रेणी में, उसको लेकर के उस परिवार को भी तत्काल धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। जनहानि पर 4 लाख रुपए की सहायता, अगर किसी परिवार का मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है, पूरी तरह नष्ट हो गया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास उपलब्ध करवाने के लिए भी मैंने आदेश दिया कि तत्काल उस परिवार को एक नया आवास उपलब्ध करवाएं।
2: मुख्यमंत्री ने फसलों के नुकसान का सर्वे कर पीड़ित किसानों को 10 दिनों के भीतर मुआवजा देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बाढ़ से प्रभावित सड़कों और तटबंध की मरम्मत कराने को भी कहा है। उधर पीलीभीत में पानी घटने के बाद शारदा और देवहा नदियों से कई जगह कटान हो रहा है। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने आज देवहा नदी के कटान का जायजा लिया। उन्होंने अभियंताओं को बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में दोनों आचार्यों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों की योजनाएं और कार्य भविष्य के लिए एक मजबूत नींव के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ ने संसाधनों के अभाव के बावजूद शिक्षा को बढ़ावा दिया और गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों और विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 एवं खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। दोनों चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है। राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर जबकि विधान परिषद के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। उधर भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें वाराणसी स्नातक क्षेत्र से केदारनाथ सिंह, वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रमोद कुमार मिश्र को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं प्रयागराज झांसी से अशोक कुमार राठौर, मेरठ स्नातक क्षेत्र से दिनेश गोयल, आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इंजीनियर हरि किशोर तिवारी और गोरखपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ध्रुव कुमार त्रिपाठी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने पर पश्चिमी लखनऊ के डीसीपी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नामांकन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
4: मंडलायुक्त कार्यालय पर जो स्नातक और शिक्षक एमएलसी का नामांकन आज आरंभ हो चुका है, इस नामांकन को दृष्टिगत रखते हुए कोर्स की व्यवस्था की गई है और इसका मेन गेट है, न्यायालय कक्ष है या और जो पेरिफेरियल है या ट्रैफिक का अरेंजमेंट है, सब पे ड्यूटी लगा दी है। महिला पुलिस भी लगाई है, ट्रैफिक वाले भी लगाए हैं ताकि किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न न होने पावे, निर्विघ्न रूप से कार्य होता है।
2: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेसवे, हवाई संपर्क और औद्योगिक विकास में हुए बदलावों ने उत्तर प्रदेश को नई आर्थिक पहचान दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस आयोजन ने प्रदेश के उद्यमियों, निर्यातकों, कारीगरों, प्रदर्शकों और देश विदेश के खरीदारों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने ट्रेड शो की सफलता के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा।
5: किसी मेले में 10 लाख 15 लाख लोग आते हों 5 दिन में, ये अभूतपूर्व सफलता बताएगा। लगभग 20,000 करोड़ का B2B हुआ और आज एक्सपोर्ट 2 लाख से ऊपर करोड़ का चला गया उत्तर प्रदेश का, ये भी इस ट्रेड की सफलता है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रेल मंत्रालय ने मेरठ को खुर्जा और सहारनपुर से जोड़ने वाली 2 मेमू सेवा शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। खुर्जा मेरठ सिटी मेमू ट्रेन खुर्जा से दोपहर 1:15 पर चलेगी और शाम 5:20 पर मेरठ सिटी पहुंचेगी। वहीं सहारनपुर मेरठ सिटी मेमू ट्रेन सहारनपुर से सुबह 5:50 पर चलेगी और 8:10 पर मेरठ सिटी पहुंचेगी। ये दोनों सेवाएं मेरठ शहर के आसपास रीजनल रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेंगी। प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज महाराजगंज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सेवा सेतु शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
6: 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बदल दिया। इस पहल ने स्वच्छता को एक बुनियादी आवश्यकता बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
7: स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया।

0: सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए। सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
1: पीलीभीत के निवासी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि अभियान के तहत सभी घरों में शौचालय बनने के बाद स्वच्छता के स्तर में काफी सुधार हुआ है।
2: मेरे सहित समूचे गांव में पहले किसी के घर शौचालय नहीं थे, लगभग सभी लोग खुले में शौच जाते थे, इससे कई बीमारियां भी साथ आ जाती थी। स्वच्छ भारत मिशन आने के बाद हम सभी के घरों में शौचालय बन गए हैं, अब हम सब उन्हीं शौचालय का उपयोग करते हैं।
1: स्वच्छता की इस नई चेतना ने लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है और स्वच्छता से समृद्ध के संकल्प को साकार किया है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत।
3: झांसी के मऊरानीपुर की सुखनई नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को जल तर्पण करने के लिए नदी के किनारे गए थे। गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी लोगों को अस्पताल भेजा गया, जहां सभी को मृत घोषित कर दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, कहा आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है सरकार। प्रदेश की 10 राज्यसभा और 11 विधान परिषद सीटों के लिए आज से शुरू हुआ नामांकन, भाजपा ने जारी की 6 MLC उम्मीदवारों की सूची। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के समापन समारोह को किया संबोधित, कहा बेहतर कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास ने उत्तर प्रदेश को दी नई पहचान। और रेल मंत्रालय ने मेरठ को खुर्जा और सहारनपुर से जोड़ने वाली 2 मेमू ट्रेनों को दी स्वीकृति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का पहला गीत सोनी महिवाल फिल्म से, आवाज अनुपमा देशपांडे की।

आकाशवाणी उबरा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गाना है लाल दुपट्टा मलमल का इस फिल्म से।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
2: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
0: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
2: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: अरे भाई
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: अब सुनिए आंचल फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

दिल से मिले दिल। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, और अब सुनिए सबरस कार्यक्रम का ये आखिरी गाना। ये आखिरी गाना है लैला फिल्म से। लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजें हैं।

0: तुम ना रहना दो ओ सनम, मर जाएंगे हम अपनी कसम।
1: तो इस गाने के साथ ही सबरस का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी ओपरा से बोल रहे हैं, रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम की पहली रचना अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

रानू मुखर्जी के गाए इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में अक्सर टू फिल्म का ये गीत।

0: चमेली फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत माध्यम कोई भी भाव अपना, प्रसार भारती और हिंदी, इस विषय पर आयोजित संगोष्ठी के संपादित अंश। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग रानी राजश्री का, प्रस्तुत करता है सचिन कुमार वर्मा।
1: प्रस्तुत है आकाशवाणी ओबरा सभागार में हिंदी पखवाड़ा समापन के अवसर पर आयोजित गोष्ठी की रेडियो रिपोर्ट। हिंदी केवल भाषा नहीं, यह हमारी संस्कृति, पहचान और आत्मा है। श्रोताओं, आज 29 सितंबर 2026 को आकाशवाणी ओबरा के सभागार में हिंदी पखवाड़ा के समापन के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था माध्यम कोई भी भाव अपना, प्रसार भारती और हिंदी। इस अवसर पर आकाशवाणी परिवार के साथ आम जन भी उपस्थित थे। सर्वप्रथम संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश त्रिपाठी।
2: माध्यम कोई भी हो, भाव अपने की भावना को चरितार्थ करते हुए हिंदी भाषा को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने में प्रसार भारती ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो रेडियो तरंगों के माध्यम से हो, टीवी से हो, टीवी स्क्रीन से हो, या जो भी माध्यम हो, या वर्तमान का जो डिजिटल या सोशल मीडिया का माध्यम हो, मूल भाव सदैव भारतीय और निज भाषा के जुड़ाव का रहा है। और भारतेंदु जी की भावना थी और उनकी एक दो पंक्तियों में कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। यानि हमारे अंदर जो भाव है, जो भाषा है, जो अभिव्यक्ति हमारी है, वह हिंदी हो और हिंदी के माध्यम से हम एक ऐसी तरंग छोड़ें, एक ऐसा भाव निकालें कि वो पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व क्षितिज पर वह छिटके और वहाँ तक हमारी हिंदी का सम्मान हो। और 14 सितंबर 1949 को संविधान में इस हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया और तब से हम सारे कार्यों को हिंदी के माध्यम से आगे बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। और इसकी सुरभि, इसकी छटा, इसका प्रभाव हमारे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने में, विश्व के अन्य देशों में भी इसकी बहुत बड़ी अभिलाषा है और सभी अभिलषित हैं कि हम हिंदी को जानें। हिंदी के प्रति सबका अनुराग है, हिंदी के प्रति सबका लगाव है, हिंदी को सभी अच्छा समझते हैं क्योंकि यही एक ऐसी भाषा है जिसमें माधुर्य है, प्रेम है, अलंकार है, रस है, छंद है, सारी चीज़ें हैं, जिसमें आकर्षण भी है। और हिंदी को में जो प्रध्वनित होती है हिंदी, वह हमारे मन और हृदय को उद्वेलित करती है, हमें तमाम कार्यों की ओर उत्साहित करती है, कार्यों के प्रति हमें सचेष्ट भी करती है। सदैव माध्यम बदले पर जुड़ाव सदा वही रहा, जो भी माध्यम रहे वह बदलते रहे, लेकिन आकाशवाणी को देखिए, आकाशवाणी और रेडियो, जब देश में साक्षरता की दरें बहुत कम थी, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, बहुत कम लोगों को अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, वहाँ भी उस समय भी रेडियो ने पूरे जंगलों के कोने कोने में ये आपकी भाषा के माध्यम से, आपके संचार के माध्यम से, आपके तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हिंदी को आपने समर्थन दिया। आकाशवाणी ने हिंदी को या भोजपुरी को जन जन की भाषा बनाया। समाचार, नाटक, जैसे हवा महल वगैरह पहले जो आते थे, आपके जितने कार्यक्रम आते थे, पहले के लोगों में एक बात थी कि दो चीज़ों के प्रति बहुत लोग सचेत होते थे। एक तो हर घर में छोटा मोटा वो रेडियो रहता था और गांव में जो अनपढ़ भी है वह भी सुन लेता था, वो समझ लेता था और आपके माध्यम से हिंदी के प्रति उसके मन में एक भाव पैदा होता था। तो हिंदी को वहाँ से भी बहुत बल मिलना शुरू हुआ और बाद में तमाम ऐसे प्रोग्राम चले, जैसे मैं यहाँ इस स्टेशन पर बाल गोपाल कार्यक्रम में कम से कम 200-300 मेरी वार्ताएं प्रसारित हुई होंगी। तो तो बाल गोपाल यानी बच्चों को भी हमने हिंदी से जोड़ने की कोशिश किया। यद्यपि माँ की गोदी से उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन अब उसमें कुछ परिमार्जन हो, उसका संशोधन हो, उसके उनके अंदर कुछ और भाव पैदा हो, इसके लिए हमने हिंदी पढ़ना भी जरूरी समझा। और हिंदी को पढ़ना लिखना समझना बहुत आसान भी है, और अगर समझा जाए तो हिंदी हमारी जो सामान्य सी भाषा है, जिसको हम ठेठ भाषा में भोजपुरी कह सकते हैं, तो भोजपुरी को ही हमने जब संशोधित किया ताकि हमारा एक स्तर बने और भारत का एक उच्च व्यापक हमारा सम्मान हो, इस क्रम में हमने बहुत कुछ आगे बढ़ने की कोशिश किया। और प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक सबसे बड़ा सेवा प्रसारक रहा है। वर्तमान में लेखन और पठन गौड़ हो चुका है, सारे काम सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर प्रगति पर हैं। हिंदी के प्रति संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में प्रसार भारती ने बराबर मानवता, समाज और राष्ट्रोन्नत में अपनी सेवाएं निरंतर गतिमान बनाया है। सांस्कृतिक विविधता और भाषाओं, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान आकर्षित कराकर प्रसार भारती देश की अभूतपूर्व सेवा कर रहा है। युवाओं की विशेष आवश्यकता, महिलाओं की स्थिति और समस्याओं के समाधान, सामाजिक न्याय, घरेलू हिंसा, मजदूरों, कामकाजी वर्गों, अल्पसंख्यकों, आदिवासी जनजातियों, अनुसूचित जातियों आदि, उनके बाल प्रसूनों या समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सस्ता और प्रभावकारी इंतजाम प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा ये पूरे देश को प्रसारित किए जा रहे हैं। आशा है और विश्वास भी है कि चाहे जो भी हो, माध्यम जो भी रहे, भाव सबके, आत्मोन्नति और आत्मरक्षा और संस्कृत सुरक्षा, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सदा हितकारी भूमिका में निरंतर बराते रहेंगे। अनेक माध्यमों की तुलना में प्रसार भारती सर्वोत्कृष्ट सेवा प्रदाता के रूप में सदा अपनी भूमिका प्रस्तुत करता रहेगा, और आप सब इसके संवाहक बन करके पूरे भारत के माध्यम से विश्व को एक चेतना जगाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
1: हिंदी गोष्ठी को संबोधित करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार व असुविधा पत्रिका के संपादक रामनाथ शिवेंद्र जी,
3: देश कोई भी हो, समाज कोई भी हो, वर्ग कोई भी हो, सबके पास एक भाषा होनी ही होनी चाहिए। और वह भाषा कहाँ से शुरू होती है? भाषा शुरू होती है वाणी से। अब क्या बोलते हैं, वाणी के विज्ञान तक जब आप नहीं पहुंचेंगे तो आप भाषा तक नहीं पहुंचेंगे। सीधी सी बात है, भाव इतना जटिल शब्द है कि भाव को अगर आप देखें, हमारे पास कई तरह के भाव होते हैं, उसी के हिसाब से हमारा मन होता है। मन को देखें आप कि हमारा मन किस तरीके से होता है। भाव तब आएंगे जब आपका मन होगा, जब आपका चेतना होगी, आपका अपना चित्त होगा, आप उसके बारे में कुछ सोचेंगे तो आपका मन बनेगा। तो पहली फीलिंग होती है परपेचुअल फीलिंग, परपेचुअल माइंड, जो आप देखते हैं, दृश्यमयता जो आपके सामने है, दृश्य खुद आपको विवश कर देगी कि आप देख रहे हैं तो कैसा देख रहे हैं, वाणी निकल आएगी। फिर अनुभव जो आप कर रहे हैं, कहीं आप गए, कुछ आप अनुभव कर रहे हैं, तो फिर वाणी वहां निकल पड़ेगी। बिना इसके नहीं होगा, दृश्यमयता न हो, अनुभव न हो, इमोशन न हो, तो वाणी के निकलने का कोई सवाल ही नहीं। आप वाणी निकलेगी ही नहीं, फिर एक्सप्रेशन जन्म ही नहीं लेगा। और हमें एक्सप्रेशन जो हमारा होता है वो कहाँ से आता है? हमारी जो मातृभाषा है, मातृबोली है, चाहे हमारी भोजपुरी हो, चाहे हमारी खड़ी बोली हो, चाहे कोई भी बोली हो, हम मारेंगे भी, गाली भी देंगे तो उसी बोली में देंगे, प्रार्थना करेंगे तो उसी बोली में करेंगे, जो स्वतः होगी, स्वस्फूर्त होगी, उसमें बनावट ना हो। मिलाइए मत कुछ, मिक्स मत कीजिए। अगर बनावट नहीं है तो गाली से भद्दी बात तो कुछ होती नहीं। आप गुस्से में भी हैं, क्रोध में हैं, आवेश आपका रुक नहीं रहा है, तो उस समय जो आप गाली देंगे वह भाषा कौन सी होगी? वह वाणी क्या होगी? वह वाणी आपकी वही होगी जो आपने बचपन से सीखा है, बचपन से आपने जाना है, रोटी कैसे मांगना है, खाना कैसे मांगना है, क्या मांगना है, कपड़ा कैसे मांगना है, फीस कैसे मांगनी है, सारी चीजें आपने सीखा है बचपन से। तो भाव जो आप लोगों ने विषय दिया है आज की गोष्ठी का, ये बहुत बड़ी बात है। भाव बोध ही हमारे पास घट रहे हैं। मातृभाषा से जो एलिनिएशन है आपका, जिस बिंदु पर मातृभाषा से आप खुद को एलिनिएट कर रहे हैं, ये होता क्या है, पढ़ने लिखने के बाद आदमी लगता है एलिनिएट करने, मातृभाषा को छोड़ देता है, मातृबोली को छोड़ देता है, वहाँ से एलिनिएशन, अलगाव शुरू होता है। थोड़ा सा जान गया, थोड़ा अंग्रेजी जान गया, खड़ी बोली जान गया,

0: है जिसके लिए अब मंच मिल रहे हैं और इसके कलाकार जो हैं देश स्तर पर राष्ट्र स्तर पर सम्मानित हो रहे हैं। कजरी को किसने बढ़ाया? आकाशवाणी ने बढ़ाया। और मजेदार बात यह है कि यह केवल एक श्रव्य माध्यम है, अभी मैं इसमें दृश्य नहीं जोड़ रहा हूँ, अभी इसमें मैं दूरदर्शन नहीं जोड़ रहा हूँ, ये श्रव्यता की ताकत है। आकाशवाणी के पास कौन सी पूंजी है? सबसे बड़ी पूंजी है श्रव्यता। श्रव्य आपको पहुंचाना, अभिव्यक्त करना, बताना, वाणी है, दृश्य नहीं है। और थोड़ी सी बात अगर इसके साथ दृश्य जुड़ जाए तो वो चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दृश्य को अलग कर दीजिए, श्रव्य को अलग कर दीजिए, तो श्रव्य की जब बात आएगी, श्रव्यता की बात आएगी, इसके इम्पोर्टेंस की जब बात आएगी, तो आकाशवाणी का नाम आएगा। मैं तो नहीं जानता कि लोक गीत, लोक संगीत, लोक कला जिस रूप में आज जाना जा रहा है, समझा जा रहा है, चाहे आला हो, कजरी हो, लोरकी हो, बिरहा हो, कुछ भी हो, ये इस रूप में प्रचार प्रसार इसको तो कतई नहीं मिला होता। एकदम सीधी सीधी सी बात है। किसने किया? जिसके पास केवल श्रव्य माध्यम है, बोलने का माध्यम है, आप सुनेंगे, एक बोलेगा आप सुनेंगे, प्रसारण होगा, और इस प्रसारण की भी कलात्मकता है। दृश्य मूलकता वहां नहीं है, श्रव्य मूलकता है, केवल आप सुनते हैं, सुनने की ताकत है। अब तो दृश्य भी जुड़ गया उसी के साथ, तो बहुत बड़ी ताकत मिल गई। माध्यम डिजिटल हो गया दोनों का, जिसको दूरदर्शन आप कह सकते हैं, चैनल कह सकते हैं, दोनों में आ रहे हैं। दोनों के अपने अपने मूल्य, अपने अपने स्थान पर हैं। तमाम संत महात्मा जो हमारे यहाँ हुए हैं वो सभ्य संस्कृति से आगे बढ़े हैं, चले हैं। तो मैं आकाशवाणी की बात कर रहा था, तो आकाशवाणी ने यह काम किया। लोक संस्कृति हमारी विलुप्त हो जाती, लोक साहित्य हमारे विलुप्त हो जाते, लोक गीत की जो शैली है, गायन शैली है, वो विलुप्त हो जाती, लेकिन उसे आकाशवाणी ने जिंदा रखा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि आकाशवाणी को मानता हूँ। तो भाषा के साथ हमें उसको थोड़ा संवारने की ज़रूरत है, उसकी संस्कृति जो बोलचाल की है उसको सुधारने की ज़रूरत है, भाषा को आत्मीय बनाने की ज़रूरत है, भाषा को अपनी संवेदना की भाषा बनाने की ज़रूरत है, अनुभव की भाषा बनाने की ज़रूरत है, अभिव्यक्ति की भाषा बनाने की ज़रूरत है। वो भाषा हमारी हिंदी है, इसमें हम सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम भाषा के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। सरकार जो न्याय नहीं कर पा रही है तो एक अलग मामला है। व्यक्तिगत स्तर पर मैं वर्मा जी को कहना चाहूँगा कि हम खुद उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मैं आग्रह करूँगा हम सभी लोग अपनी भाषा के प्रति सतर्क रहें और इसे इसके प्रति न्याय करें और तलाशें। हम कितना बेहतर दे सकते हैं, अभिव्यक्ति के मुद्दे पर दे सकते हैं, कहानी लिखने के मुद्दे पर दे सकते हैं, कविता लिखने के मुद्दे पर दे सकते हैं, या कोई किताब लिखनी है तो उस किताब लिखने के मुद्दे पर हम दे सकते हैं, लेकिन हमारी अभिव्यक्ति ऊपर हो। आप लोग जानते होंगे शायद कि अभिज्ञान शाकुंतलम 70 देशों में इसका प्ले हुआ, संस्कृत में, लेकिन प्ले हुआ, सभी लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में इसे अनुवादित किया, वहाँ इसका प्ले किया। मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा नाटक है, अब वो गौरव है भारत को। यहीं का अभिज्ञान शाकुंतलम है, यहीं के कालिदास हैं। 70 देशों में इसका प्ले किया गया और 130 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। हमें वहाँ तक जाना ही होगा। हमारे मन में जब तक एक कालिदास नहीं बैठेंगे, बताओ साहित्यकार ओम प्रकाश जी कह रहा हूँ कि जब तक हमारे मन में कालिदास अगर नहीं बैठेंगे तो हम नहीं जा पाएंगे।
1: अंत में कार्यक्रम अधिशासी आकाशवाणी ओबरा सचिन कुमार वर्मा ने अतिथियों और श्रोताओं के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे थे सुनील कुमार तिवारी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी ओबरा सभागार में हिंदी पखवाड़ा समापन के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी के संपादित अंश। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग रानी राजश्री, प्रस्तुतकर्ता सचिन कुमार वर्मा।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत माध्यम कोई भी भाव अपना, प्रसार भारती और हिंदी, इस विषय पर आयोजित संगोष्ठी के संपादित अंश। आकाशवाणी के हम उबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में, उसके बाद रात 9 बजे से अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटका, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
2: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं

0: अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: And no external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
4: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
1: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जलसंधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
5: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुँच रहा है।
6: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं।
7: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें डीबीटी के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपए मिलता है।
5: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
9: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटका केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9.

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में रेड रोज फिल्म के इस गाने को। और अब सुनिए कार्यक्रम के आखिर में साजन मेरे मैं साजन की इस फिल्म का गीत हेमलता और यशुदास की आवाज में।

सुबह इस गाने के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म यादगार।

दूजे के लिए। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। आपके लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। कार्यक्रम में आप शामिल कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत। फिल्म है एक धुन प्यार की।

अनुराधा पौडवाल के गाए दिल है कि मानता नहीं फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 से। हम आकाशवाणी ओपरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं, हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

एशियन गेम्स 2018 में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक पाया तो उसने भी सोचा अब ये मौका है गेम को सीरियसली लेने का। ट्रेनिंग में लग गई और 5-6 साल में ही गोली की स्पीड से शिखर पे जा पहुंची और आज उसने स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों की किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन

0: एम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूं अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैक में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में चार कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शाम से फाइनल्स में एंट्री की तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी तीन तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज। शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी। निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड, और यही नहीं उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
1: शूटिंग में भारत ने एक स्वर्ण और एक रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोन से वो दो शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके पहले 2025 में नीरू ने वुमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में वुमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशीर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
2: And she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days. And something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressful condition. Pulled her out of there. We got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we didn't manage all that support. Got her back in the academy. Today she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most strongest shooter in the final in the present group of shooters.
0: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही एक पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई। पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़, जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया, और उसके बाद विशाल थिंगारसु की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी। भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया और आज वो बलवीर सिंह पिछले एक दो सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपने पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने

0: वाले खिलाड़ी बने। वो ऊंची कूद में पूजा ने अपने पांचवें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की, जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में सातवां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप दसवें स्थान पर रहे। तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया, 65.35 मीटर दूर तारगोला फेंका, लेकिन चौथा स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा सातवें तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा। पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
1: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेज, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन्स 65 kg सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शू 5-0 टू स्टॉर्म इन टू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a master class, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazluddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ibek Orelbey. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation, his second consecutive Asian Games bronze. 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a master class, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazluddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ibek Orelbey. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation, his second consecutive Asian Games bronze. 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
0: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी 3 धनुर्धर चिड़िया की आंख, यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज़्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याई यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
0: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रौ में दिख रही है। नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनुहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
2: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गई। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4

0: 4-11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1-11-3-11-9 से जीत कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। मिल्सी ने टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
2: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5-7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4-6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1-7-5 से मैच अपने नाम किया, जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2-6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के यूडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
1: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले 2-0 हार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
3: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर प्रोवाइडेड अ मच टफर चैलेंज। दे एज द ओपनिंग सेट 28-26 आफ्टर इंडिया मिस टू सेट पॉइंट्स एंड देन टुक द सेकंड 27-25 डिस्पाइट इंडिया बिल्डिंग अ 4-point लीड मिडवे थ्रू द सेट। टू सेट्स डाउन इंडिया शोड ट्रेमेंडस कंपोजर टू टर्न द मैच अराउंड। दे केप्ट देयर होप्स अलाइव बाय taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tie break to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With 3 wins from 3 matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
1: कैनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। कैनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। कैनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। कैनो और कयाक में आज क्या हुआ बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
2: कैनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 127.70 सेकंड के साथ 10वां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में, तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था, जहां पल्लवी जगताप ने 7वां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने 9वां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
1: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समुद्र की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगु कैसी रही जानते हैं अभिनव से।
3: back at the earlier action from Pacific Long Beach, in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.5.

0: Ipswich, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarter-final appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: आसी साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गई। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
2: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोहित सिंह यांगलेन, डेविड बेकहम, एल्का टोचोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम्स से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं की इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में यानी पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने सातवें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा भवन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया। किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।
1: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या, बता रही है मुदिता।
3: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी वल्हारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप। आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
2: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगापूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ 9वां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
0: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
1: कल कुश्ती आरंभ होगी, जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
4: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
5: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं देश का अंत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशकान, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सितारों की महफिल आज के मेहमान।
2: हम आकाशवाणी उबरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात। की बात कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर और कुमार सानू की आवाज में। फिल्म है बेताबी।

ऑली जिप्सन ये रेखा भारद्वाज की आवाज में चाची 420 फिल्म के इस गाने को। आपकी बात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उपरा से।

लता मंगेशकर की आवाज में यह था सत्या फिल्म का गाना। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं सुर फिल्म का यह गीत, आवाज लकी अली की है।

0: लगे लेके गए सुर फिल्म के इस गाने के साथ ही आपकी बात कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: And no external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
4: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि यह खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं, एफएम 102.7 पर। इस समय रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल सुबह 5:50 पर हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।